माध्यम से इसे औषधि की ओर कैसे ले जाते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सर्वप्रथम अभी हमने बताया कि सवेरे उठ करके आपको नित्य क्रिया करने के बाद में एकांत चित कहीं स्थान पर बैठ जाना है और आपको 3 प्राणायाम मुख्य रूप से शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए करना है। सबसे पहला प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम इसलिए क्योंकि अभी हमने लक्षणों के बीच में एक बात बताई थी कि तनाव और खराब खानपान, तो तनाव के कारण हम अपने आप को असंतुलित कर पाते हैं, यानी कि असंतुलित हम हो जाते हैं। तनाव को कम करने के लिए प्रणव प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है, एक ऐसी औषधि है जिसे करने के बाद में हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं। और साथ ही साथ जब हम एकांचित होकर के इस योग मुद्रा में बैठते हैं तो हमें अपने आप को भी एक शांति और एक सुदृढ़ होने की कला मिलती है। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वैसे तो श्वास से निर्मित प्राणायाम है। आती जाती श्वास को किस तरीके से नियंत्रित करना है अनुलोम विलोम में बेहतर बताया जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम करने से हमें पेट के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी ठीक करने के लिए कई ऐसे उपचार और लक्षण भी बनते हैं। अनुलोम विलोम को करने के बाद में हम तीसरा प्राणायाम और मुख्य प्राणायाम करते हैं अग्निसार। वो इसलिए क्योंकि शुगर लेवल जब हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो हमारी पेट की अग्नि भी उस समय हाई लेवल पर बढ़ी रहती है। सवेरे जब आप उठें और नित्य क्रिया करने के बाद में ये तीसरा प्राणायाम लगातार 1 से 1.5 महीने आप करते रहें तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी या आपका शुगर ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से, पर आपको आने वाली छोटी छोटी तकलीफें जो शुगर से संबंधित होती हैं, डायबिटिक से संबंधित होती हैं, वह आपके रोजमर्रा के जीवन में नहीं होंगी। मैंने कई सीरीज में प्रणव प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अग्निसार बारी बारी कई बार इसकी प्रक्रियाओं को बताया है, लेकिन हम फिर से आज हम जब डायबिटिक पेशेंट को लेकर के बात कर रहे हैं तो हम तीनों का एक संक्षिप्त परिचय भी देते जा रहे हैं। सबसे पहला प्रणव प्राणायाम, जो कि आती जाती श्वास को महसूस करना है और बिल्कुल शांत चित होकर के बैठ जाना है। यह हमारा पहला प्राणायाम जो कि प्रणव प्राणायाम। इससे हमारा मानसिक तनाव और हमारी आंतरिक सभी शक्तियों को शांत कर देता है। दूसरा अनुलोम विलोम। दाई नौसिका को बंद करके बाई नौसिका से सांस छोड़ना और बाई नौसिका से सांस लेते हुए दाई नौसिका से सांस को छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। इसमें हमें श्वासों की गति को नियंत्रित करते हुए अपने आप को एकाग्रचित होकर के श्वास की तरफ ध्यान देते हुए पेट की गतिविधियों को भी मध्यम गति से चलाते रहना है। तीसरा प्राणायाम जो कि बहुत मुख्य है वो है अग्निसार। अभी अभी हमने बताया कि अग्निसार यानी कि पेट की अग्नि को शाना। आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि जब हमें तेजी से भूख लगती है तो हमारे पेट के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं। हमें ये महसूस होता है कि इस समय हमें जो भी मिले हम उसे खा लें। इसका साफ साफ कारण ये होता है कि उस समय हमारी पेट की अग्नि जो है वह ज्वलनशील होकर के तेजी से हो जाती है, जिसके कारण से हमारा शुगर लेवल भी उस समय बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम कुछ न कुछ खाने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी जो पेट की अग्नि है वह शांत होने लगती है। सवेरे उठ करके अग्निसार करने से यह अग्नि पूर्ण रूप से इतनी तीव्र गति से कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। भूख जो कि समय पे लगती है, समय पर भूख लगने के बाद में आप आराम से खाना खाएंगे और फिर आपको इतनी ज्यादा बेचैनी उलझन नहीं होगी। अग्निसार कैसे करना है आइए अब हम बताते हैं। शांत चित होकर के हाथों की मुद्रा को बनाते हुए हम श्वास को एक साथ यानी कि तीव्र गति से श्वास को लेते हुए श्वास को रोक लेंगे और उसके बाद पेट को अंदर बाहर चलाते हुए इस गति को 1 से 1.5 मिनट तक करते रहेंगे। यह है अग्निसार। अग्निसार प्रक्रिया को हम 1 से 1.5 मिनट तक प्रारंभिक अवस्था में करेंगे और धीरे धीरे हम

की गति को बढ़ाते जाएंगे। तो ये था दोस्तों, आज शुगर लेवल को अगर बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करने के 3 औषधि रूप में प्राणायाम। अगर हम इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो बेचैनी और बहुत ज्यादा जो उलझन होती है वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वह सामान्य रूप से होने लगेगी। तो आइए दोस्तों, फिर से हम मिलेंगे एक नई औषधि के साथ में। तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है, जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठे और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुके और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सब के भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीर दास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुकड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल

की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहरतारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनके भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं, उसका ज्ञान देखना चाहिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीर दास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे, यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके 2 शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़िया गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीरदास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेर कर कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हायो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25

0: जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: सूरज की बाहों में अब है ये।
2: हां जी, सो भाई डायरिया को हराना है और हम इंडिया वालों ने फिलहाल ये ठान लिया है। अभी आपने क्या ठाना है, चलिए आप ठानते रहिए। फिलहाल एक बार वर्कपस से वेलकम करते हैं मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। गुड मॉर्निंग गोंडा हो चुका है गोंडा का और साथ ही साथ इस 89.6 FM को सुनने वाले सभी श्रोताओं का। तो चलिए भाई इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे आखिर क्या होने वाला है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान।

0: हाँ जी बिल्कुल, सूरज की बाहों में तो है ये जिंदगी। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और अब वक्त हो गया है ये बताने का कि आज का आसमां कैसा है। बेहद लाजवाब है, काफ़ी अच्छे से घिरे हुए हैं। सो अगर आप भी उठ करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है आज का मौसम, क्योंकि मौसम से ही तो अपना अंदर का मौसम बनता है। यानी जैसा मौसम होता है शुरुआत वैसी होती है, वैसे ही जहन में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब भाई सूरज को देख करके, बहुत सारी धूप देख करके एक अजीब सा आलस होता है, एक अजीब सी समस्या आ जाती है कि भाई कैसे निकलना है, क्या करना है। लेकिन आज का अगर आप देखेंगे मौसम तो कहेंगे वाओ क्या बात है, ये एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है आज के दिन को शुरू करने के लिए। तो चलिए भाई, जब शुरुआत परफेक्ट हो ही रही है तो क्यों ना परफेक्ट शुरुआत के साथ आगे बढ़ लिया जाए। और साथ ही साथ आपको बताया जाए कि आज का आपका थॉट ऑफ द डे क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट्स जो रोज़ आते हैं वो हमारे रोज़ के लिए इतना बड़ा बैंक बना रहे हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना रहे हैं कि जब जब हम किसी भी तरह की सिचुएशंस में आते हैं बीच में, तो हमको लगता है ये थॉट जो हमने सुना था एक बार वो था क्या, उसमें मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है। ऐसा होता भी है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी बैंक करके रखते हैं हम लोग जमा करके, उसके बाद जब कहीं ऐसा लगता है कि अब उस थॉट की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वह एक छोटे से दिए की तरह काम ज़रूर आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई बार आपने खुद ही कहा है और आज भी यही होता है कि कुछ भी ऐसा हो तो हमको याद आ जाता है और हम उससे ही चीज़ों को सीखने जानने लग जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सो फिलहाल चलिए, वक्त हो गया है कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे जो है वो आप तक पहुंचा देने का। वैसे आपको बता दें कि आज जो है वो आपको याद हो ना हो, लेकिन सैटरडे है, यानी कि वीकेंड वाली मॉर्निंग है। सो वीकेंड वाली मॉर्निंग का जो माहौल होता है वो आम सा नहीं होता है, काफ़ी अलग सा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे पूछने हैं, क्योंकि जहन में चलते रहते हैं और मुझे लगता है आप बहुत बढ़िया बताते हैं, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोचते रहने की क्षमता है, ये जो सोचते रहना होता है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम सोचना बंद कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं इंसानों की कैटेगरी से बाहर हो रहे होते हैं, यानी बस जो मिलता रहा वो करते रहे, जो मिलता रहा वो करते रहे, और हम अपने लिए बेहतर नहीं सोच पाए, हम अपने लिए रुक नहीं पाए, हम अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाए, तो ये हमें बाद में बड़ा ही पछतावा देने का मौका देता है। और हमको फ़िलहाल ये ऐसा लेना नहीं है, हमको पछतावे में तो नहीं जीना है, हमको जो लगेगा, हमको जैसे लगेगा, हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश हमेशा जारी रखने वाले हैं। यही तो एक अच्छाई बात है कि भाई हम अगर ये सोच ले कि जो भी हो, जैसा भी हो, हालात हमारे ज़िंदगी के जैसे भी हो, हमको तो बस अब अपने को आगे बेहतर बनाना है ना। तो चलिए भाई, बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और साथ ही साथ बताते हैं आज सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए आरजे अदनान क्या लेकर आए हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो भैया आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो दरअसल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है आज के सैटरडे से, और दो लाइन में बड़ी प्यारी बात कहता है। आज का थॉट कहता है कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। वाह, बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा आज का थॉट ऑफ द डे। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हम तो बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं। हमने तो हर उस जगह को इमेजिन कर रहा है जहाँ पे हम हों तो हमारे होने से हमारे आसपास के लोग मुस्कुरा रहे हो, हम जो जोक क्रैक कर रहे हों, उल्टे पुल्टे जो भी, उस पे लोग हंस रहे हो, और आसपास का माहौल जो है वो बहुत अपनापन सा लगे। या हम जिस सन्नाटे में बैठे हों, जिस तन्हाई में बैठे हो, वो काटे ना, वो उलझन ना दे, बल्कि बहुत सारा सुकून लेकर के आए, इस तरह की हो मॉर्निंग। सो ऐसे बहुत कुछ हमने देखा है जो हमको करना है और हम करते जा रहे हैं, और ऐसे कई सारी जिंदगियां जिसमें हम एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एक अच्छा असर डाल सकते हैं। कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं, कुछ ऐसा हम कर रहे हैं, इसीलिए शायद हमको अपना जो मन है वो छोटा नहीं रखना होगा। वजह सिंपल सी यही बात है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इन सब में उलझ गए तो हमने जो चीज़ें जानी हैं या जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि यार, अगर हमको भी अपनी उन मंजिलों की तरफ जाना है जिनका ख्वाब हमने पहले से ही देखा है, तो डेफिनेटली हमको अपना मन छोटा नहीं करना है, हमको उससे आगे निकलना है ताकि हम चीज़ों को बेहतर कर पाए, और वहाँ ना उलझे जहाँ हमारा कोई काम ही नहीं है, बल्कि हम वहाँ जूझे जहाँ पे सच में हमको जूझना है, जहाँ से जूझने से हम अपनी उन चीज़ों को निकाल पाएंगे जिसके लिए हम बेताब हैं, परेशान हैं, और कहीं ना कहीं लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। इसलिए सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत सा थॉट ऑफ द डे है, क्योंकि हम अक्सर ही होता है, हम जाते कहीं और सोच कर निकलते हैं और हम कहीं और ही फंसने लग जाते हैं। देखिए, कहीं और जाना गलत नहीं है, यानी अगर आपको राहें नहीं पता और आप बस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप एक्सप्लोर करिए, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है कि जब कोई लाइफ में या बीच में रास्ते में कोई हर्डल आ जाती है और हम उसमें फंसे से रह जाते हैं, हम उसके ही बारे में सोचते रह जाते हैं, जबकि हम ये सोचते हैं यार ज़िंदगी के बारे में सोचना, क्योंकि वो आगे बढ़ती जा रही है, हर पल बढ़ रही है। सो मुश्किलों के बारे में इतना नहीं हम सोच सकते हैं, क्योंकि उससे आगे तो निकल ही जाना है, है ना। तो इसलिए हमको इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में हमको अपना मन छोटा नहीं करना है, हमको आगे जाना है, और हम जो हैं बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, और हमारा जो ठिकाना है वो वहीं है। तो आइंदा से जब कोई छोटी मोटी बात हो, कोई बुरा भला कह दे, जहन से निकाल दिएगा, क्योंकि सोच सोच के आप अपने को परेशान करने वाले हैं। अगर कोई आपका काम बिगाड़ दे तो भी आप उससे आगे निकल जाइए, क्योंकि वो बहुत छोटा सा काम था, अब आपको आगे निकल जाना, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि रोकने वाले भी तभी तक रोक पाते हैं जब तक उनकी हद होती है। जब करते करते आप इतना तटस्थ हो जाते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर आप आगे निकलते ही जाते हैं, डेफिनेटली निकल जाते हैं। इसलिए हमने कहा है कि आज का थॉट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इतनी अच्छी बात बोलता है कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। सो आप खुद डिसाइड करिए इसी वक्त कि आप कौन सी मंजिल के मुसाफिर हैं। किसी के कह देने से, किसी के भड़का देने से, किसी के सुना देने से, किसी को आपके ज़रिए कुछ भी ऐसा हो जाने पे क्या आप उस पर सोच में फंसे रहने वालों में से हैं, या खुद का ख्याल रखते हुए इस बात का कि मंजिल आपकी बड़ी और आप भी आगे निकलने वालों में से हैं। अब ये ज़रा सोच लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा, क्योंकि उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये असर जब आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं आपकी, यार इन चीज़ों ने रोकना मुझे छोड़ दिया और मैं आगे निकलना सीख गया, है यही तो ख्वाब था मेरा, है ना। चलिए ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय करिए आपकी मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: ऐसे शोज ऐसे गानों को सुनेंगे तो इश्क तो होना लाजिम है जनाब। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आइए देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने चैट बॉक्स पर।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

आप इस वक्त हमको सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड यस, इसके अलावा वो लोग जो सुन रहे हैं 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, क्योंकि उसी एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन मिलता है और उसमें आप जो कुछ लिखते हैं वो लाइव शोज में पहुंच जाता है, यानी हम तक मिल जाता है। सो क्या क्या लिखा है, किसने किसने लिखा है, आइए आपको बताते हैं। सो मॉर्निंग विशेष से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैसेज आया है वो आशु मिश्र जी का आया है लखनऊ से। आप लिखती हैं, सुप्रभात सर जी, बचा लो जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। क्या बात है, आपका भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। अनोखी मौजूद है, गुड मॉर्निंग सर, और क्या हाल है, बढ़िया एकदम मस्त, गुड मॉर्निंग। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। और साथ ही साथ आपने लिखा भी है कि मैं छोटी मोटी बात दिल पर नहीं लेती, आज का सुविचार बहुत ही खूबसूरत बात कही, थैंक यू सो मच। यानी आप भी मानते हैं कि आप भी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, इसीलिए छोटी मोटी परेशानियों में आप उलझने वाले तो नहीं हैं, ये तो लगा आपकी बात से, दैट्स वेरी नाइस। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। एंड आशु जी लिखती हैं कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट पसंद आया। और हमारे धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं आवास विकास गोंडा से, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा नमस्कार, अदनान से गुड मॉर्निंग सुबह सुबह के सफ़र में, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह के सफ़र में झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां अपने अंदर ताके कौन, दुनिया सुधर सब चिल्लाते, खुद को आज सुधरे कौन, पर उपदेश सकल बहुते, खुद पर आज विचारे कौन। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। और आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। वैसे आज जो आप चाय पिए हैं या जो पी रहे हैं उसमें चीनी कितनी है, बताइए बताइए चीनी कितनी है। अच्छा, सोच कर बताएंगे या पता करके, ठीक है पता करके भी बता सकते हैं। चीनी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा, क्यों, अरे भाई आपको तो पता है चीनी से क्या क्या होता है ना। डोंट वरी, हम कोई ऐसा लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देने वाले ना कुछ बताने वाले, बस ये कि हाँ चीनी थोड़ा सा कम रखेंगे तो प्यार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। होता है ना कि जब कोई चीज़ ऑलरेडी इतनी जगह ले लेती दूसरा नहीं आ पाता, इसलिए चीनी की मिठास को कम करके जिंदगी में थोड़ा सा और मिठास अपने तरफ से घोलना तो बनता है बॉस। आइए फिलहाल सुनते हैं इस बेहतरीन से सॉन्ग को आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

लहजा लहजा में आखिर ले ही गई ऐसी बातें, और ऐसी बातें तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं दोबारा से आ जाती है। वैसे ये बताइए कि भाई, चूंकि हम मॉर्निंग सॉन्ग तो सुनते हैं और ये मॉर्निंग सॉन्ग काफ़ी हैप्पी हैप्पी से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी को बयां कर रहा है। क्या कोई ऐसा गाना भी है आपके पास या आपको सुनने को मिलता है जो कहीं ना कहीं ये आपको एहसास दिलाता है कि यार ये गाना मेरी लाइफ पर होना है? ऐसा लगता है कि मैं खुद को कहीं इसमें पाती हूँ, खुद में कहीं पाता हूँ, ऐसा कोई फीलिंग आती है क्या? अगर आती है तो फिर आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा सॉन्ग लगता है कि ये आपके लिए बचता है और आपकी कहानी पर बना है, और वो आपने सुना है अपने 89.6 FM के मॉर्निंग वाले शो में। यस, सो मॉर्निंग वाले शो में कई सारे ऐसे सॉन्ग्स प्ले होते हैं जो आपको बेहतर फील कराते हैं। सो कहीं ना कहीं एक कोई सॉन्ग ऐसा हो जो आपको लगे ये तो मेरे लिए ही प्ले हुआ है और साथ ही साथ ये स्टोरी मेरी बयां कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल वापस से आने वाले हैं और आपको ले चलने वाले हैं आपके सिटी की अपडेट की तरफ, यानी क्या कुछ चल रहा है गोंडा में, ये हम आपको बताते हैं सिटी अपडेट में।

तो सविता जी लिखती हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई। वाओ, परफेक्ट, बहुत ही उम्दा गाना। इवन मुझे खुद जब इस सॉन्ग को सुनता हूँ ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ लाइफ का इस गाने ने समेट लिया है, और इतनी बढ़िया लिरिक्स है कि क्या कहें। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डीप। और ये साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा था, और आज भी इसीलिए उनके लिखे हुए नगमों को, उनकी लिखी हुई गज़लों को शदीद तौर पर याद किया जाता है। और आपने बताया कि आपने गाना भी लिखा है सविता जी, सो जो गाना लिखा है आप ज़रूर उस गाने को हम तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमको भी अच्छा लगेगा भाई, हम भी जानें कि आखिर कौन सा ऐसा गाना है जो आपकी लाइफ को बयां कर रहा है। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं और इसके जस्ट पार आ करके बताते हैं क्या कुछ चल रहा है गोंडा में।

0: दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग सॉन्ग। वाओ क्या बात है। सो इस खूबसूरत से जावेदा सॉन्ग के बाद आइए वक्त है आपको ले चलने का सिटी अपडेट यानी गोंडा अपडेट की तरफ। और क्या कुछ है आज के आपके शहर की अपडेट में, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अब वक्त है ये जानने का कि शहर में क्या कुछ चल रहा है और उसमें से कौन कौन सी चीज डायरेक्ट हमारे काम की है।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए बताते हैं दरअसल क्या क्या अपडेट्स हैं गोंडा से आपके लिए। सबसे पहले हम बता दें कि अब ओपीडी में ही हो जाएगी एक्सरे की जांच। जी हाँ, सो मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में ओपीडी में अब मरीजों को एक्सरे जांच की सुविधा जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल ने शुक्रवार को यानी कल को अचानक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सरे की सुविधा जो है वो ओपीडी के पास ही अवेलेबल कराई जाए ताकि मरीजों और जो तीमारदार हैं उनको जांच के लिए भटकना ना पड़े। सो मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के उनके निर्देश पर निरीक्षण में सीएमओ ने ओपीडी, इमरजेंसी वार्डों और बाकी जो प्रमुख विभाग हैं उनका जायज़ा लिया और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में साफ सफाई, दवाओं की अवेलेबिलिटी, मरीजों को दी जा रही फैसिलिटी, ये सब कुछ देखा। सीएमओ ने जो भर्ती मरीज थे उनके तीमारदारों से बातचीत करके वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लिया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि सीएमओ ने क्षेत्रीय निदान केंद्र के सामने जल भराव की जो समस्या है उससे निपटने के लिए कराए जा रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों ने बताया कि ये काम जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर कराया जा रहा है जिससे बरसात के दौरान मरीजों और तीमारदारों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। चूँकि इस दौरान सीएमएस डॉक्टर अनिल तिवारी, डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर अनिल वर्मा, रंजीत सिंह राठौर सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल ठगी का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, सो भारतीय सेना के एक जवान ने अपने ही साथी सैनिक और बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों पर फर्जीवाड़ा करके 8 लाख रुपए का लोन एक्सेप्ट कराकर निकाल लेने का जो है वो आरोप लगाया है। इस मामले में अदालत के आदेश पर नगर कोतवाली में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। सो इसके अलावा हम बता दें आपको कि सरयू जो है वो लाल निशान के करीब है और जो आसपास के तटवर्ती गांव हैं वहां पर अलर्ट दे दिया गया है क्योंकि गिरिजा, शारदा और सरयू बैराजों से लगातार जो छोड़े जा रहे पानी हैं उसकी वजह से सरयू नदी का जो वाटर लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और कल शाम को एल्गिन ब्रिज पर नदी जो है वो खतरे के निशान से महज 28 सेंटीमीटर दूर थी। सो प्रशासन ने जो तटवर्ती गांव हैं उसमें अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसे भी उपाय करने की कोशिश की है कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो फिर किस तरह से उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो है टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं 5 ट्रेनर्स। जी हाँ, सो प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की FLN और NCERT बुक्स पर बेस्ड 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाना। इसके लिए जो नियुक्त किए गए हैं सभी ट्रेनर्स ने दर्जी कुआं डायट में जो है वह प्रशिक्षण पूरा भी कर लिया है। सो BEO ने बताया भी है कि ARP जितने भी हैं और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं प्रशिक्षकों की टीम बनाई गई है और जल्द ही ये BRC बनगाई में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले हैं, यानी ये अभी रुपईडीह में फ़िलहाल किया गया था, अब इसी तरह से कई फेजेस में ट्रेनिंग दे दी जाती रहेगी। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो भर्ती परीक्षा की आ रही। सुबह 8 बजे से बिलसर में मौजूद महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज में NCC भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा आज सुबह 10 बजे से मनकापुर तहसील के जो सभागार है वहाँ संपूर्ण समाधान दिवस किया जाएगा और अधिकारियों के जरिए जन समस्याओं को सुना जाएगा। आज सुबह 10 बजे से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आज सुबह 11 बजे नगर के वेंकटाचार्य क्लब में बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो शपथ ग्रहण समारोह का ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सो ये जो थी ज़रूरी कुछ बातें वो हमने बता दिया। साथ ही इसके अलावा आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग से भी एक खबर आ रही जिसको सुनकर थोड़ा सा आप चौंकने वाले हैं। दरअसल
90 पैसे की चूक की वजह से 92,000 का बिल जो है वो बन गया। सो बिजली विभाग की लापरवाही का एक मामला जो है वो सामने आया, जिसमें महज 90 पैसे की कमी की वजह से एक कंज्यूमर को एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS का लाभ नहीं मिल सका। इसके बाद विभाग ने 92,594.50 रुपये का बिजली बिल जारी कर दिया। सो मनकापुर द्वितीय विद्युत वितरण खंड के जो ग्राम तिरुखा बुजुर्ग निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार हैं, उन्होंने मुख्य अभियंता को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने 8 दिसंबर 2025 को OTS में पंजीकरण कराते हुए 2,000 रुपये जमा किए थे। विभाग के हिसाब से 25 दिसंबर को 30,612.90 जमा करने थे। उन्होंने कैशियर को 30,615 दिए थे, लेकिन लेटर्स और कागज़ों में सिर्फ 30,612 ही दर्ज किए गए, जिसमें 90 पैसे बकाया दिखाया गया और OTS का फ़ायदा जो है वो निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 3,520 और मार्च में 6,062 और जून में 90,594.50 का बिल जारी कर दिया। सो फिलहाल बताया गया है कि मामले की जांच के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं और जांच की रिपोर्ट के हिसाब से जो कुछ भी होगा उसको बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताया कि CDO ने बोला है कि भाई कोई भी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे पात्र जो भी हैं। सो जिला पंचायत सभागार में कल जो हुआ माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों के जो प्रिंसिपल्स की बैठक हुई और CDO दयानंद प्रसाद ने साफ जो है निर्देश दिया है कि कोई भी जो पात्र स्टूडेंट है छात्र छात्रा वो छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। सभी संस्थान शासन की जो समय सारणी है इसके हिसाब से आवेदन सत्यापन और अग्रसारण की जो प्रक्रिया है वो वक्त से पूरी कर ले और किसी भी लेवल पर लापरवाही मिलने पर जो है वो जवाबदेही तय की जाएगी। सो जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 9 और 10 इसके अलावा 11 और 12 इसकी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की जानकारी दी और बैठक में DIOS डॉक्टर रामचंद्र, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयनाथ गुप्ता और विनोद तिवारी, ये सभी लोग जो है वो मौजूद थे। सो फिलहाल ये कुछ ऑफकोर्स अपडेट रही जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। आई होप कि ये अपडेट्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रही होगी। अब इसी के साथ ही साथ चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि अगले म्यूज़िकल ब्रेक का वक्त हो गया आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

कैन यू इमेजिन कि एक पुराना जूता, जी हाँ, एक पुराना जूता जो है वो लाखों कदमों को एक नई पहचान दे दे, ऐसा मुमकिन है? अब आप सोच रहे हैं ऐसी क्या हम बात कर रहे हैं, एक पुराने

0: जूते की और लाखों की जिंदगी बदल जाने की, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ है। आखिर दो दोस्तों के आइडियाज ने लाखों लोगों की जिंदगी पर बहुत असर डाला है, वो भी पुराने जूते के चलते। तो चलिए भाई हम बताते हैं कि ये जूता आखिर कितना ज्यादा काम का बन जाता है अगर इसको लगा दिया जाए सही कॉज के लिए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई एक पुराना जूता जो है वो दो दोस्तों का एक आइडिया बन गया और आज लाखों कदमों को नई मंजिलें मिली हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये सच्चाई कह रही है। दरअसल आपको बता दें, 2013 में एथलीट श्रियंश भंडारी और रमेश धामी ने देखा कि उनके पुराने जूतों के सोल अभी भी अच्छे हैं और ये देखने से ही जन्म हुआ एक अनोखे से आइडिया का, जिसका नाम हुआ ग्रीन सोल फाउंडेशन। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा आइडिया था जो बन गया ग्रीन सोल फाउंडेशन, आखिर इसके मायने क्या है। देखिए, पुराने जूते साफ किए जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में खोले जाते हैं, फिर उनसे नई चप्पलें, बैग और स्टडी मैट बनाए जाते हैं ताकि कोई बच्चा नंगे पैर स्कूल ना जाए। सो आज ग्रीन सोल फाउंडेशन जो है वो 23 से ज्यादा राज्यों में 8 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। सिर्फ जूते ही नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा की उम्मीद भी ये पहुंचा ही रही है। सो इनकी सोच सिर्फ रिसाइकलिंग की नहीं बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी की है, जहां कचरा कम होता है और बच्चों को जरूरी सामान मिलता है और धरती भी हमारी सुरक्षित रहती है। सो कभी कभी दुनिया बदलने के लिए जो है वो नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि पुरानी चीज़ को नया मकसद देना काफ़ी होता है। सो ग्रीन सोल फाउंडेशन ने जो है पुराने जूतों को हज़ारों बच्चों के सपनों की पहली सीढ़ी बना दी है और आज इतने सारे हज़ार बच्चों में उनकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इतने सारे बच्चों को स्कूल के बैग मिल रहे हैं, चप्पलें मिल रही हैं, शूज़ मिल रहे हैं और इस तरह से इनकी लाइफ बदल रही है। यानी ग्रीन सोल फाउंडेशन जो है वो पुराने जूतों को ले लेती हैं जिनके सोल कायदे के होते हैं और उससे उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है और जिनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा बनती है, सारी चीज़ें, उनके पास बैग नहीं है, उनके पास चप्पल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ये फाउंडेशन उन बच्चों तक ये सारी चीज़ें मुहैया कराती है। और जैसा कि हमने बताया, 23 से ज़्यादा पूरे देश में राज्यों में ये पहुँच चुके हैं और 8 लाख तक बच्चों तक इनकी पहुँच हो चुकी है। सो ग्रीन सोल फाउंडेशन लगातार देश के ऐसे राज्यों में ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि वो भी नंगे पैर स्कूल ना जाएं। सो कहते हैं ना, देखिए कुछ हर बार नया बनाने से ही नहीं चीज़ें सॉल्व होती हैं बल्कि कई बार जो है पुरानी चीज़ों को नए मकसद से सोचने से भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और दुनिया में बड़े चेंजेस आने लग जाते हैं। और इसकी मिसाल, इसकी एक बानगी हमने आपको बताई ग्रीन सोल फाउंडेशन का। आई होप कि आपने भी इस बात को समझा है और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, ये सच है, अगर करने पे आया जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो ही जाती हैं, वो भी बहुत आराम से। सो चलिए भाई, ये दो दोस्तों की कहानी आपको कैसी लगी जो बना रहे हैं कई सारे यानी लाखों बच्चों का भविष्य और उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगा रहे हैं, एक सपना जगा रहे हैं शिक्षा का। फिलहाल आपको जानकर कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: हाँ बच्चों, ए नीला झोला, नीली पन्नी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
1: खड़े हो गए मास्टर साहब।
0: गिनती सुनाओ जरा, और नहीं सुना पाए तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास विद पन्नी। सुनाओ।
1: कितने तक सुनाओ मास्टर साहब?
0: अरे 10 तक सुनाते हो।
1: 1 2 3 4 5 7 8 9 10। एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस।
0: अरे छह कहाँ गया है?
1: मास्टर साहब वो तो मर गया।
0: मर गया?
1: हाँ मर गया।
0: कैसे?
1: आज टीवी पर सुबह सुबह रे बता रहे थे कि डेंगू में 6 की मौत हो गई।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: तो चर्चाओं के दौर में मुझे याद आया कि भाई आपको ले चलना मुझे बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ। आप सोचेंगे बॉलीवुड तक तो ठीक था, हॉलीवुड कुछ ज्यादा ही दूर नहीं हो जाएगा। अरे भाई स्पाइडरमैन की बात आई है, सो हॉलीवुड भी जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बॉलीवुड टू हॉलीवुड, ओनली ऑन गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

सो स्पाइडरमैन में रिप्लेस होने वाले हैं टॉम हॉलैंड। जी हाँ, और ये बात किसी और ने नहीं, खुद एक्टर ने बताई है। दरअसल एक तरफ जहां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा ही रही है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं टॉम हॉलैंड, इन्होंने चौंकाने वाली बात कही है। इनका कहना है कि वो स्पाइडरमैन की अगली फिल्म में बतौर स्पाइडरमैन नहीं होंगे, मार्वल अब उन्हें रिप्लेस करने वाला है। जी हाँ, सो बात आती है कि ठीक है, अगर मार्वल रिप्लेस कर रहा है तो फिर मार्वल का प्लान क्या है। सो टॉम हॉलैंड ने बताया कि मार्वल स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स के पास स्पाइडरमैन के फ्यूचर के लिए पहले से ही एक लंबा प्लान है। इसमें ये बात भी शामिल है कि मशहूर सुपर हीरो का रोल जल्द ही किसी नए एक्टर को सौंपा जाएगा। सो एक रिपोर्ट की माने तो टॉम हॉलैंड भी इस बात से खुश हैं कि उनकी जगह अब कोई और स्पाइडरमैन का रोल करने वाला है। सो फिलहाल अभी तक आपने स्पाइडरमैन को जो देखा है वो टॉम हॉलैंड को ही रोल निभाते हुए देखा है, लेकिन अभी जैसा कि बताया, मार्वल स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स ने इसके फ्यूचर को लेकर के कई सारे प्लान्स तैयार करे हैं और आने वाले वक्त में कोई नया एक्टर स्पाइडरमैन का रोल निभाते हुए नज़र आने वाला है। फिलहाल अभी भाई जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है स्पाइडरमैन, उससे तो यही कहा जाएगा कि स्पाइडरमैन ने तो अपना जादू सच में चला ही दिया है। एंड इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें, बॉलीवुड की तरफ अगर हम आएँ तो श्वेता से रिया तक ट्रेटर्स 2 में नज़र आएंगी ये सारी हस्तियाँ। जी हाँ, सो ये करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेटर्स का दूसरा सीज़न जल्द शुरू होने वाले हैं और इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके नाम सामने आ गए हैं। सो इस सीज़न में जो है दर्शकों को मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती, मुनव्वर फारूकी, क्रिस्टल डिसूजा, पारुल गुलाटी, रणवीर बरार, शहनील गिल, दलीप ताहिल, हरमन सिंह, शालिनी पासी, अभिषेक मल्हान, आदित्य कुलश्रेष्ठ, श्वेता तिवारी, रिदा थराना, अंश चोपड़ा, इक्का और तान्यापुरी के बीच मुकाबला होता नज़र आने वाला है। द ट्रेटर्स का नया सीज़न 13 अगस्त से शुरू होगा और दर्शक इसे हर थर्सडे को देख सकेंगे। सो फिलहाल द ट्रेटर्स को लेकर के अगर जो लोग भी एक्साइटेड है वो बता सकते हैं कि हाँ भाई, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है इस रियलिटी शो को देखने को लेकर के। एंड आपको अब ले चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, क्योंकि हम बता दें भाई तेरा सुपरस्टार है। जी हाँ, सो अभिनेता जो है इसके राघव जुयाल, इस पर इनके पर ये फिल्म फिलहाल बनी हुई है और सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ख़त्म हो जाती लेकिन दर्शकों के पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। जी हाँ, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको जो रिव्यू आया हुआ है भाई तेरा स्टार है। सो कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और भाई तेरा स्टार है देखने के बाद लगता है कि झूठ के सहारे पूरी फिल्म भी नहीं बनती है। सो करीब 2 घंटे की फिल्म बार बार भरोसा दिलाती है कि बस अब हंसी आएगी, लेकिन हर बार दर्शकों के हिस्से में सिर्फ निराशा ही आती है। सो कॉमेडी के नाम पर फिल्म में बस शोर ही शोर है। कहानी अगर बताएं सो अजय यानी राघव जुयाल लंदन बेस्ड स्ट्रगलिंग अभिनेता हैं, लेकिन फिलहाल उनका सबसे बड़ा रोल झूठ बोलने का है। बार ओनर जो हैं फैटी यानी संजय कपूर से 10,000 पाउंड उधार लेकर के वो पैसे जुटाने के लिए अपनी बहन के ऑफकोर्स यहाँ जाते हैं और उनके लिए कई सारी कहानियाँ गढ़ते हैं। इधर इनकी पार्टनर निहारिका NM वो भी अपने भाई से पैसे लेने के लिए खुद को प्रेग्नेंट बताती हैं। इसके बाद फिल्म झूठ और गलत फहमी और भाग दौड़ के बीच घूमती रहती है। सो दर्शकों को समझ ही नहीं आता है कि कहानी आगे बढ़ रही है या बस टाइम पास हो रहा है। सो अगर एक्टिंग की बात करें सो किल में अपने अभिनय से चौंकाने वाले राघव जुयाल यहाँ शायद किसी और ही फिल्म की तैयारी करके आए थे और कई ऐसे डायलॉग्स हैं ऐसे हैं जो उनके मुंह के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। सो ओवर एक्टिंग तो खैर बहुत बताया गया है इस मूवी में कि इतनी ज़्यादा है, कॉमेडी के बजाय झुंझलाहट होने लगती है। सो कॉमिक टाइमिंग का हाल ये है कि पंच लाइन ख़त्म हो जाती है लेकिन हंसी शुरू ही नहीं होती। संजय कपूर पूरी ईमानदारी से फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट उन्हें भी डुबा देती है। सो निहारिका, NM, विवान भटेना और बरखा सिंह समेत पूरी सपोर्टिंग कास्ट अपने काम ईमानदारी से करती है लेकिन जब किरदार ही आधे अधूरे लिखे गए हों तो कलाकार भी ज़्यादा असर चुकी छोड़ नहीं पाते हैं। अगर निर्देशन की बात करें इस मूवी के भाई तेरा स्टार है तो इसमें निर्देशक जो हैं विवेक B. अग्रवाल शायद ये मानकर चले थे कि
अगर कलाकार लगातार तेज आवाज में बोलेंगे तो स्क्रीन पर कार्टून उछलेंगे और डायलॉग्स लिख लिख कर आएंगे तो दर्शक हंस पड़ेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ये सब देखकर एक ही बात महसूस होती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खुद अपनी कॉमेडी पर भरोसा नहीं है डायरेक्टर्स को, इसलिए हर मजाक के नीचे फुट नोट लगाने की कोशिश की। ना स्क्रीन प्ले कोई रिदम है और ना ही सीन्स में कोई ठहराव है। सो फिलहाल ये इस मूवी का जो है वो रिव्यू है जो कि हमने बताया भाई तेरा स्टार है, और इसमें राघव जुयाल ने चूँकि काम किया है मुख्य भूमिका में नजर आए हैं, और कहीं ना कहीं फिलहाल ये मूवी रिलीज्ड हो चुकी है, इसीलिए इसके बारे में जो रिव्यू था वो हमने आप तक पहुँचा दिया है। अब भाई अब आप इस मूवी को किस तरह देखते हैं या आप भी क्या देखने वाले थे ये भी आप बता सकते हैं। तो भाई मूवी तो मूवी होती है, और जब स्पेशली कॉमेडी मूवी की बात आती है तो काफ़ी मन करता है कि कोई ऐसी अच्छी सी मूवी आए जिसको सच में देखने में मज़ा आए। यानी काफ़ी वक्त से ऐसी कोई मूवी आए जिसको हम लोग इंतज़ार कर रहे हो, जैसे हमने अपने वक्त में धमाल देखा और इस तरह न जाने कौन कौन सी ऐसी मूवी थी जो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रही होंगी। सो होता है कि भाई ऐसे कई मूवी है जिनके आज भी माना जाता है कि भाई उनका ज़बरदस्त तरीका था लोगों को हंसाने का, लोटपोट करने का। फिलहाल भाई तेरा स्टार है, क्या आप ये मूवी देखने वाले हैं या नहीं?

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यू नो, आपने जो पिछले हफ्ते का प्लान बनाया था ना, याद है कि नहीं? याद है। अरे यार, कितने हफ्ते से आप सोच रहे हो कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बातें जो कि हो नहीं पा रही है। पिछले हफ्ते भी आप यही सोच रहे थे कि यार इस चीज़ को ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। सो अगर जो कुछ भी आपने पिछले हफ्ते प्लान बनाया था और आप रोज़ सोच रहे थे और नहीं हो पाया, तो आपको याद दिला दूं कि आज एक तारीख है, यानी 1st of August है। सो आज जो है वो दिन इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज से हम शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपने जो है अपने फ़ोन गैलरी को साफ़ करने का सोचा होगा, फ़ोन के 5000 फालतू स्क्रीनशॉट्स डिलीट करने का काम आप पिछले एक हफ्ते या हो सकता है पिछले 6 महीने से कल कर लूँगा पर अटका हुआ होगा, या फिर अलमारी साफ़ करना कि भाई कपड़े तह करके अलमारी में सलीके से रखूँगा और आज तो इतवार है भी नहीं, आज भाई ऑफकोर्स सैटरडे है। सो आज लेकिन एक तारीख है, या हो सकता हो आपने कुछ अनरीडेड बहुत सारे मेल्स होंगे वो डिलीट करने का सोचा होगा, यानी कुछ भी छोटा सा होगा और सोचा होगा और अभी तक आप नहीं कर पाए। सो प्लीज़ आज वो तारीख है, आज वो दिन है जब इसको हम कर सकते हैं इनिशिएट। सो आज का दिन अब कल पर नहीं टालना है, आज का मतलब आज ही हो जाना है। सो आज है सैटरडे और ऐसा कोई भी काम अगर आपने पीछे छोड़ दिया है तो फटाफट से आपको कर लें। वैसे आप बता सकते हैं हमसे चैट बॉक्स पे भी आकर के कि क्या आपने भी ऐसा कोई काम जो है फिलहाल टाल के रखा है जो नहीं हो पा रहा है, या आप तो नहीं किसी दोस्त का पैसा बाकी थे जिसका सोच रहे थे यार हम जल्द ही निपटान कर देंगे लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा। सो ऐसा कुछ भी है तो आप भी हमको बता सकते हैं चैट बॉक्स पर आ करके अपने मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ यानी मॉर्निंग वाले जो आकार जो अदनान है संग आपके आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: अरे अरे अरे हिमेश भैया, थोड़ा सा आराम से। सो फिलहाल हमने पूछा था कि ऐसा कौन सा काम है जो पिछले एक हफ्ते या 6 महीने से आप सोच रहे हैं कल कर लेंगे, जिसमें हमने एग्जांपल दिया कि हो सकता है 1,000 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स हो फालतू आपकी गैलरी में, उसको आपको हटाना हो, या इसके अलावा भाई हो सकता हो आपने किसी से उधार लिया, उसको पैसे चुकाना हो। सो इन सारी चीज़ों के बीच में फ़िलहाल हमारी सविता जी ने रिप्लाई किया है। क्या लिखती हैं कि मेरे मोबाइल का सारा नंबर गुम हो गया, उसकी खोज करना, क्या बात है। तो चलिए भाई, अगर मोबाइल नंबर खो गया है तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आज एक तारीख है और आज जो है वो शुरुआत हो गई है अगस्त की। तो सबसे पहले तो आप सभी को अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पहला दिन है अगस्त का, सो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, कल ना करके आज ही करके उन नंबर्स को खोज सकते हैं, स्क्रीन शॉट्स डिलीट कर सकते हैं, सलीके से अपनी अलमारी में अपने कपड़ों को भी रख सकते हैं, यानी जो कुछ भी बहुत दिन से टल रहा है उसे आज कर सकते हैं। क्या ख्याल है, आप क्या करने वाले हैं?

कुछ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से जवाब जो हैं वो आ गए हैं। और देखिए ना, इसके बाद कमल नयन जी लिखते हैं, 5 साल से सोच रहे हैं ससुराल जाने के लिए लेकिन जा नहीं पा रहे। चलिए, आज सैटरडे का दिन है और अगर आप तैयारी करके आज जा सकते हैं तो आज चले जाइए, नहीं तो इस हफ्ते ज़रूर चले जाइए क्योंकि आज दिन की शुरुआत हो गई, अगस्त शुरू हो गया है। सो आई होप कि आपके 5 साल पुरानी जो ख्वाहिश थी, जो आपने मन्नत मांगी थी, वो आज पूरी हो जाए। वैसे ससुराल अच्छी जगह है, हो जा सकते हैं आप, बट हाँ, ऑल दी वेरी बेस्ट।

0: बड़े बड़े तो नहीं लेकिन छोटे छोटे काम हमेशा रह जाते हैं। हो सकता है आपका आधार अपडेट कराना हो आधार पे, फोटो अपडेट करानी हो, या फिर आपको अपनी बाइक की सर्विसिंग करानी हो, या फिर आपको अपने कपड़े तह करके अलमारी में सही से रखना हो। इन सब काम में कई बार स्पेशली हम मेल्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और काफ़ी दिन दिन तक टला करता है। इवन मुझसे भी काफ़ी चीज़ें टला ही करती है। लेकिन फिलहाल चलिए हम अपने किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट में बताने वाले हैं, यानी DAP यूरिया जो आप यूज़ करते हैं वो असली है या नकली, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, आइए हम बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

सो देखिए भाई, हमारे किसान भाई जो है खाद खरीदते वक्त उसकी जो क्वालिटी है उसकी जांच दुकान पर ही आसानी से कर सकते हैं। सो डीएपी के कुछ दाने जो है वो हाथ में लेकर के अंगूठे से आप रगड़ सकते हैं। अगर दाने आसानी से ना टूटे और मजबूत महसूस हों तो ये असली डीएपी होने का संकेत माना जाता है। सो और भी तरीक़ों से खाद को परखा जा सकता है, यानी तंबाकू के साथ रगड़ने पर असली डीएपी से अमोनिया जैसी तीखी गंध आती है। वहीं तवे पर गर्म करें तो दाने फूलने लगते हैं, ये डीएपी की पहचान होती है। एंड ग्लास में पानी लेकर उसमें डीएपी के दाने डाल दें, असली डीएपी तेज़ी से घुल जाती है और घोल हल्का मटमैला रहता है, तली में कोई कचरा नहीं बचता है। और यही कुछ बहुत आसान सी पहचान है जो लोग हमारे किसान भाई हैं या जो खेती किसानी कर रहे हैं जुड़े हुए हैं, और चूँकि वो डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आप तक पहुँच जाए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है और आप लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। साथ ही साथ कुछ और भी हमारे श्रोतागण आ गए हैं 89.6 FM के स्टूडियो में, और साथ ही साथ स्टूडियो मतलब ये है कि चैट बॉक्स पे आप आ गए हैं। सो क्या कुछ लिखा है वो हम बताते चलते हैं। सो महेंद्र देपन राजस्थान से हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल जी आपका स्वागत है। श्रीनाथ पटेल छपिया से हैं, प्रेम ऑटो पार्ट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नगेश्वर मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू नगेश्वर। धर्मेश भी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग धर्मेश, एंड आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। इसके बाद जो है सुजीत भी हमारे साथ में आ गए हैं, गुड मॉर्निंग टू यू सुजीत, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, बड़ा ही वेलकम है। आज तो बहुत सारी हमने बातचीत की और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज़ किया कि आज है एक तारीख यानी 1 अगस्त, और इसी अगस्त में हम उन सारी चीज़ों को कर लें जो बहुत वक्त से सिर्फ सोचते चले आ रहे हैं। तो एक अच्छा दिन है, एक अच्छी सी शुरुआत है शुरुआत करने के लिए, और डेफिनेटली ये शुरुआत हमारी आगे जाकर के हमको बहुत अच्छा फील कराने वाली। वैसे हेल्दी रहें आप, खुश रहें, और बहुत सारी आपकी खुशियां और मनोकामनाएं इस अगस्त में पूरी हो, हम ऐसी कामना करते हैं। एंड अमित सिंह मुंबई से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज का शो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से हमको दीजिए इजाज़त और बने रहिए अपने 89.6 FM पर।

यू, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट समता गांव की गूंज के नए एपिसोड की अपार सफलता के बाद सभी श्रोताओं के लिए फिर से एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे जी के मधुर मधुर आवाज में सभी गीतों की माला फिर से पिरोई गई है और जिनका साथ देने आ रहे हैं अदनान जी, श्वेता जी, जिमी जी और संतोष जी।
1: अरे वाह वाह, आओ आओ, स्वागत है सभी मित्रों का। कहाँ थे आप सभी इतने दिनों तक?
2: क्या बताएं श्वेता, बस इधर उधर जहाँ देखो शादियों का ही सीजन चल रहा है।
0: क्या बातें हो रही हैं दोनों सहेलियों में।
1: अरे आओ आओ।
3: अरे आओ समता, क्या हाल चाल है?
0: मैं तो बिल्कुल चंगी हूँ, तुम दोनों अपना बताओ।
4: अरे हम सभी तो ठीक है।
0: अच्छा ये बताओ, हमारे अदनान कहाँ रह गए आज?
2: अरे अभी तो यहीं थे।
1: और हाँ, उनका बैग भी तो आ गया है।
5: अरे भाई मैं तो यहीं हूँ, आप सबको तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, ये लीजिए मैं आ गया।
3: आइए आइए, वेलकम वेलकम। कहाँ थे, किसकी शादी में मसरूफ थे?
5: अरे पूछो मत, बस शादियों का सीजन तो चल पड़ा है।
1: सीजन तो चल ही रहा है और गांव की महिलाएं गीत भी तो गा रही हैं।
0: हाँ श्वेता, सही कहा तुमने, वो देखो जिम्मी के घर से गानों की आवाज भी आ रही है, तो चलो भाई सब सुन लेते हैं।
5: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।

0: क्या ये किरंदी की आवाज थी?
1: जी हाँ जिमी, ये हमारी गोंडा की स्वर कोकिला किरंदी की ही आवाज थी।
2: वाह वाह, कितना मधुर गीत है।
3: हाँ बिल्कुल, सभी ठीक कह रहे हो। बड़ा आनंद आया ये शादी का गीत सुनकर।
0: भाई विवाह का जो असली मजा है ना, वो तो गीतों को सुनकर ही आता है।
4: हाँ हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना एक और विवाह गीत किरण दीदी की आवाज में और सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल,

0: क्या बात है, सच ही कहा है सभी ने। किरण जी की आवाज में तो जादू है जादू।
1: अच्छा जिम्मी, ये तो बताओ कि आप लोगों ने शहर के ये बड़े बड़े होटल्स और रिसॉर्ट्स को छोड़कर ये गांव में ही क्यों अपने भाई की शादी के लिए सोचा?
0: हाँ पता है, मैं भी यही सोच रहा था। खामखा फ्लाइट का खर्चा बढ़ा दिया जिम्मी ने।
1: हाँ हाँ, ये तो सच है।
2: अच्छा मैं बताऊँ ऐसा क्यों हुआ?
1: नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी।
2: अरे कोई मुझसे भी तो पूछे।
0: हाँ जिम्मी, ये बताओ कि तुमने मेरा खर्चा क्यों बढ़वा दिया?
2: तो सुनिए, हुआ ये कि आजकल सभी अपने रिश्तेदारों से किसी काम की वजह से दूर दराज बैठे हैं, जैसे हमारे अदनान। अब सभी अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे, इसलिए हमारी प्यारी सहेली जिम्मी ने सोचा कि क्यों ना सभी अपनों को और अपने सभी मित्रों को फिर से एक साथ बैठने का मौका दिया जाए। क्यों जिम्मी?
1: एकदम 100% राइट का है। वाकई बड़ा अच्छा सोचा जिम्मी। भाई की शादी के साथ साथ सभी एक साथ मिल भी लेंगे और कई सालों की जो दूरियां थी इसी तरह वो खत्म भी हो जाएंगी।
0: तो चलिए इसी खुशी को दोगुना करके एक गीत और सुन लेते हैं। क्यों भाई?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: वाह वाह, मजा आ गया ये प्यारा सा गीत सुनकर, क्यों दोस्तों?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: अरे जिमी भाई, अपने भाई से नहीं मिलवाओगे क्या, जिनकी शादी में हम सभी एक साथ मिले हैं?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लीजिए। संतोष भैया, संतोष भैया।
4: हाँ जिमी, क्या हुआ?
3: भैया ये हमारे दोस्त हैं जो आपकी शादी में आए हैं और आपसे मिलना चाहते थे।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं।
2: भैया नमस्ते।
5: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते भैया।
4: नमस्ते नमस्ते। अरे जिम्मी, अपने दोस्तों को चाय नाश्ता तो करवाओ।
3: हाँ हाँ भैया, बस वही कराने जा रही थी।
4: जिम्मी जाओ, सभी को अपना गांव तो घुमा लाओ।
3: जी जी भैया बिल्कुल।
2: ये बाहर से कैसे गीत की आवाज आ रही है जिम्मी?
3: ये तेल पूजन हो रहा है समता, जिसमें गीत गाया जाता है।
5: तो चलो हम सब भी वही चाय के साथ साथ इस गीत का लुत्फ उठाते हैं।

0: ये जो गीत गाया गया उसको सुनने में तो बड़ा आनंद आया, पर इसका हिंदी उच्चारण बता सकती हो क्या?
1: सच्ची में मैं भी अभी अभी यही कहने वाली थी कि सुनने में तो बड़ा मजा आया, पर क्या इसका अर्थ होगा ये जिमी बता दो प्लीज।
2: अरे मैं बता देती हूँ, इसके लिए जिमी को क्यों परेशान करना।
3: अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता।
2: हाँ सुनो सभी, जो सभी ने अभी अभी ये गीत सुना है उसमें पहली बात तो अवधि की खुशबू आई, वो इसलिए क्योंकि आज भी कई गांवों में शुद्ध अवधि ही बोली जाती है, जिसके कारण भी आप सभी को ये सुनकर बड़ा आनंद आया होगा।
1: जिमी चलो अब तुम थोड़ा अवधि में कुछ बोल के सुना दो जरा।
3: मैं सुनाऊं? अच्छा चलो आओ, शादी का सबका एक गीत और सुनवाई दी थे।
4: वाह वाह।

0: वाह वाह जिम्मी, क्या गीत था। कसम से यहाँ गांव में तो बड़ा मजा आ रहा है।
1: अच्छा अच्छा चलो, अब हल्दी होने जा रही है। अरे तुम सब अभी सो ही रहे हो, उठो भाई, सब सबको तैयार भी तो होना है।
2: अच्छा जिम्मी, ये क्या होता है और कैसे होता है तेल पूजन और हल्दी रसम?
1: बताती हूँ, पहले सभी तैयार तो हो जाओ।
3: हाँ भाई, जल्दी जल्दी सभी तैयार हो जाओ ताकि हम सभी भी तेल पूजन में शामिल हो सकें। क्यों समता?
0: मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं पहनूं क्या।
1: अरे क्यों भाई, वो पीली वाली ड्रेस पहनो सभी। श्वेता तुम भी, ठीक है? और अदनान कहाँ गए?
2: हाँ जी,
1: क्या पहन रहे हैं आप?
2: मैं भी सोच रहा हूँ जैसा कि सभी लोग कह रहे हो पीला कपड़ा पहनने को, तो मैं भी पीला कुर्ता लाया हूँ भाई।
3: अरे वाह, तो बस यही पहन लूँ।
0: अच्छा सभी को तो बता के गई कि ये पहनो वो पहनो, लेकिन जिम्मी खुद कहाँ गई?
1: मैं अभी आती हूँ, क्योंकि बाहर भैया का तेल पूजन शुरू हो गया है और आप सभी जल्दी जल्दी आ जाओ। लो, गीत और तेल पूजन भी शुरू हो गया है बाहर।
4: जिम्मी, ओ जिम्मी,
1: आई आई।

0: वाह, मतलब हर रस्म पे जो गीतों की माला चल रही है ना, सुन के बड़ा मजा आ रहा है। चलो भाई, तेल पूजन और हल्दी रस्म तो हो गई।
1: अरे आप सब यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ बाहर भैया की मेहंदी शुरू हो गई है।
2: मुझे भी लगवानी है मेहंदी।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाहर सभी तो मेहंदी लगवा रही हैं। आप लोग भी जाओ।
1: ओहो, जाओ का क्या मतलब, अदनान आपको भी लगवानी पड़ेगी।
3: अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ।
0: अरे क्यों नहीं, आजकल तो सभी लगाते हैं।
3: अच्छा चलो जिम्मी, मैं भी लगवा ही लेता हूँ, पर थोड़ी सी। हाँ
2: अच्छा, देखो भैया के हाथों में कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी, है ना।
0: हाँ श्वेता, बिल्कुल सही कह रही हो। काश अभी इस पर, यानी मेहंदी पे भी कोई प्यारा सा गीत हो जाता तो कितना अच्छा होता।
3: मतलब मेहंदी पर भी गीत होंगे अब। वाह भाई वाह।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
3: तो चलो भाई, सुन लेते हैं मेहंदी गीत।

0: अरे भाई कहाँ गई ये श्वेता और समता, मेहंदी तो लगवा ली, ये लो अब नींबू पानी का घोल भी लगवा लो।
1: इससे क्या होगा?
2: इससे मेहंदी में रंग अच्छा होता है श्वेता।
1: ओ तुम मुझे भी दे दो अब।
3: अच्छा अब आप सभी का हो गया हो तो सब लोग घूमने चलोगे कि नहीं?
0: हाँ हाँ चलो सभी जल्दी जल्दी चलते हैं और सभी को गांव घुमा के आते हैं, ठीक है? तो चलो सभी।
3: अरे रुको रुको, ये देखो ये क्या है, शायद ये ट्यूबवेल है। चलो इसमें सभी लोग अपने हाथ पैर धुल लेते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, कितना मजा आ गया ना, बहुत आनंद आया।
2: सच में जो गांव की बात है ना, जो उसकी सादगी की बात है ना, वो भाग दौड़ की लाइफ में कहाँ।
0: अच्छा चलो सभी जल्दी, भैया की बारात निकलने का समय भी हो रहा है।
4: हाँ हाँ चलो चलो, चलो।

0: कितना मजा आ गया ना, बहुत आनंद आया।
1: चलो सभी, वहाँ रस्म शुरू हो गई है। और श्वेता, मेरा झुमका नहीं मिल रहा है यार।
2: अरे आप सभी लोग रेडी हो गए क्या? अरे मैं भी हो ही गया हूँ, बस मेरे जूते नहीं मिल रहे। किसी ने देखे हैं क्या?
3: लो भाई, वहाँ जूते चुराने की रस्म शुरू हो गई है और यहाँ अदनान के जूते चोरी हो गए।
2: अरे नहीं भाई, मैं दुल्हा नहीं हूँ, मेरे जूते दे दो जिसने भी लिए हैं।
0: अरे यही तो थे, कहाँ जाएंगे?
1: तुम सब भी ढूंढ ही नहीं पाते हो, ये क्या रखे हैं? श्वेता, तुम्हारे बैग के नीचे ही तो थे।
2: ओके, थैंक यू सो मच।
3: सब यही बात करते रह जाएंगे या बाहर भी चलेंगे?

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। मैं हूँ आपकी RJ आयुषी और लेकर आई हूँ आज के आपके स्पेशल शो सैटरडे स्पेशल स्वास्थ्य संगिनी को। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज दिन शनिवार और शनिवार के दिन हम आते हैं और बात करते हैं आपके हेल्थ की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि भाई हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन अब हम जिस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज की बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसको बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है। आप बस इसे नॉर्मल ही खांसी समझ लेते हैं, नॉर्मल जुखाम समझ लेते हैं, या फिर हम कहें कि बस खराश समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज TB की। तो भाई, ये TB आखिर होता क्या है? भारत में ये कितना आम है? क्या इसके लक्षण हैं? क्या इसके कॉज है? क्या इसका ट्रीटमेंट है? डाइट कौन सी लेनी चाहिए? और भी कई सारी बातें जो TB के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, TB जिसके बारे में हमने बहुत सारे ऐड सुने, हम वो बात नहीं कर रहे, हम उस TV की बात नहीं कर रहे जिसमें आपने ऐड देखे होंगे, जिसके बारे में आपने ऐड देखा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि TB, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये आखिर में होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपने ट्यूबरक्लोसिस यानी TB का नाम तो सुना ही होगा, कभी किसी पड़ोसी को हुआ होगा, कभी किसी रिश्तेदार को, या शायद आपने TV पर इसका विज्ञापन भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि TB असल में क्या होता है और ये हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है? आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये करते हैं कि आखिर ये TB होता क्या है। TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है, मतलब एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैल सकती है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी होगी और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होगी। ये बीमारी जो होती है ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, इसीलिए TB को आम भाषा में फेफड़ों की बीमारी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि TB सिर्फ फेफड़ों में ही हो, ये बैक्टीरिया शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी जा सकता है, जैसे कि हड्डी में, गुर्दे में, दिमाग में और लिम्फ नोड में भी ये जा सकता है। फेफड़ों की TB जो होती है वो पल्मोनरी TB कहते हैं हम उसको। ये बाकी अंगों की TB से एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है, हमने तो नहीं बुलाया इसे, लेकिन ये आता कहाँ है? देखिए, ये एक ऐसे मेहमान है जो बिन बुलाए आ जाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि आखिर ये आता कहाँ से है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया हवा में फैलता है। जब कोई TB का मरीज खांसता है, छींकता है, थूकता है या ज़ोर से बात करता है तो उसके मुंह से छोटी छोटी बूंदें हवा में जाती हैं और वहाँ पे घुल जाती हैं, जिसमें ये बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। और जब कोई स्वस्थ इंसान उस हवा से सांस लेता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में भी पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, सिर्फ बैक्टीरिया से शरीर में जाने वाला नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया के शरीर में जाने से नहीं होता TB। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वो मजबूत है तो आपका शरीर इस बैक्टीरिया को दबाए रख सकता है। इस अवस्था में लेटेंट इस अवस्था को हम लेटेंट टीबी भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया शरीर में है लेकिन बीमारी कोई लक्षण नहीं दिखाती और दूसरों में फैलती नहीं है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी जैसे कमजोर पड़ती है, ये बैक्टीरिया वापस से एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं हम एक बहुत ही चौंकाने वाले सच की तरफ, यानी कि भारत में टीबी की स्थिति क्या है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कि कम क्षेत्रफल में बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ पे लोग एक दूसरे के करीब ही रहते हैं। करीब का मतलब ये नहीं कि चिपके रहते हैं, करीब का मतलब ये है कि आपस में जो है हमारा जो घर है वो आपस में जुड़े रहते हैं और एक ही छोटे क्षेत्रफल में बहुत लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो बीमारी है ये फैलती भी बड़ी आसानी से होगी। दोस्तों, भारत को दुनिया में टीबी का सबसे बड़ा बोझ उठाने वाला देश भी कहा गया है। और ये सुनकर दिल थोड़ा सा भारी जरूर हो जाता है कि हमारा भारत जहां विकास कर रहा है वहां पे इतनी बड़ी बीमारी से भी जूझ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया में हर साल जितने टीबी के मामले आते हैं उनमें से लगभग 26-28% अकेला भारत में होता है, यानी दुनिया के हर 4 टीबी मरीज एक भारतीय होता है। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 28 लाख नए टीबी के मामले सामने आते हैं और हर साल लगभग 3-4 लाख लोग टीबी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़े बहुत ही बड़े हैं दोस्तों, और ये हमें सोचने पर ये भी मजबूर करते हैं कि क्या ये हमारा वही विकसित भारत है जहाँ पर हम एक टीबी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी टीवी देखते होंगे तो आपने एक इंसान को ज़रूर देखा होगा, जी हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन जी आते हैं और खास खास के टीवी का प्रचार करते हैं कि भाई टीवी से सतर्क रहिए, इसका इलाज कराइए। क्या इलाज है वो भी बताते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं, जस्ट जैसे ऐड आता है हमारे टीवी में हम उसे म्यूट कर देते हैं। बस इसी तरीके से आप जैसे उस ऐड को इग्नोर कर देते हैं, इसी तरीके से ये बीमारी और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। जब आप किसी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं होंगे, इग्नोर कर देंगे, तब ये बीमारी आपको जब होगी तब आप इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते होंगे और यही होती है सबसे बड़ी गलती। देखिए, कोई भी बीमारी बड़ी छोटी होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके बारे में अवेयर कितने हैं। तो आज का शो आप बहुत ही ध्यान से सुने, अपने करीबियों को बिठा के सुनाएं, क्योंकि ये बीमारी कितनी बड़ी है ये तो आपको पता ही लग गया है। टीबी सबसे ज़्यादा दोस्तों उन लोग को होती है जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, जिनके घरों में कम रोशनी और हवा होती है, जिनका खान पान कमज़ोर होता है और जिनकी इम्यूनिटी पहले से किसी कारण से या किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर है, जैसे कि HIV, डायबिटीज़ या फिर कुपोषण। भारत सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए निश्चय पोर्टल और टीवी मुक्त भारत 2025-2026 जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में और आने वाले कुछ सालों में भारत टीबी से मुक्त हो जाए। जी हाँ, टीबी मुक्त भारत, ये भारत सरकार और साथ ही साथ हमारे कई सारे देशवासी ऐसे हैं जो टीबी से जूझ रहे हैं या कभी उन्होंने टीबी को फेस किया होगा, आज वो स्वस्थ हैं। उनका भी यही सपना है कि टीबी से इंसान मुक्त हो जाए। देखिए, जब हम किसी बीमारी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब हम उससे जूझते हैं और जूझ के जब बाहर निकलते हैं, उस परेशानी को फेस करते, तब हमें पता चलता है कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है। इसे हल्के में लेना, भाई भंडारे वाला हलवा चलना समझना ना, इसकी आप बंद करें, क्योंकि ये टीबी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी है। इसे सीरियस लेने का वक्त अब आ चुका है। देखिए दोस्तों, जो ये टीबी है ये लाइलाज नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। बस ज़रूरत है जागरूकता की, सही जानकारी की। तो बने रहिए आज हमारे साथ, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य संगिनी में। आज शनिवार है और आज हम बात कर रहे हैं टीबी पे, और टीबी कैसी बीमारी है, कितनी ज़्यादा ये सक्रिय है और ये क्या होती है, ये चीज़ें अभी तक तो हम समझ चुके, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल से। क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, आप सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, क्योंकि आज बात हो रही है आपकी और आपके अपनों के स्वास्थ्य की।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस,
1: रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

वेलकम बैक लिसनर, वापस से स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे आयुषी और आज हम बात कर रहे हैं टीबी पे, यानी कि टीबी स्पेशल आज का शो चल रहा है। आपने ट्यून किया हुआ है रेडियो 89.6 FM और आप आज के इस बहुत ही गंभीर विषय को समझ रहे हैं। देखिए, पिछले लिंक में हमने जाना कि टीबी क्या होता है और भारत में ये कितना आम है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिन्हें जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, टीबी को कभी कभी साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे आते हैं और शुरुआत में इतने साधारण लगते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलिए एक एक करके इन लक्षणों को ध्यान से समझते हैं। पहला और सबसे अहम लक्षण है लगातार खांसी। दोस्तों, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये सामान्य में मत लीजिए, ये कोई जनरल बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव होने की एक संकेत आपकी बॉडी आपको दे रही है। ये टीबी का सबसे बड़ा और सबसे पहला संकेत होता है। शुरुआत में ये सूखी खांसी होती है लेकिन धीरे धीरे इसके साथ साथ बलगम भी आने लगता है और अगर बलगम में खून के धब्बे दिखें तो बिना एक पल गवाए डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। दूसरा लक्षण दोस्तों इसका है बुखार। जी हाँ, वही बुखार जिसे हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं कि अरे बुखार ही तो है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। देखिए, ये कोई आम बुखार नहीं है, ये टीबी का बुखार है। टीबी का बुखार बहुत ही अलग किस्म का होता है। ये बहुत तेज़ नहीं होता बल्कि हल्का हल्का लगातार बना रहने वाला बुखार होता है। अक्सर ये बुखार शाम को या रात को बढ़ जाता है। लोग इसे थकान या मौसम का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन यहीं देर हो जाती है और आपको टीबी अटैक कर चुका होता है। तीसरा लक्षण है इसका कि रात में आपको पसीना बहुत आएगा। टीबी के मरीज को रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इतना कि कपड़े और बिस्तर भीग जाएं। ये गर्मी की वजह से नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये शरीर में चल रहे संक्रमण की वजह से होता है। अगर ये लक्षण बार बार हो रहे हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। उसके बाद दोस्तों अगला लक्षण है वजन का तेजी से घटना। बिना किसी डाइटिंग, कसरत और अगर इन सब के बगैर आपका वजन तेजी से घट रहा है तो ये चिंता की बात है। टीबी में शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और शरीर की ऊर्जा बैक्टीरिया से लड़ने में खर्च होती रहती है, जिससे वजन आपका तेजी से गिरने लगता है। पांचवा लक्षण है भूख ना लगना। मरीज को खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती इसमें और खाना देखकर वो मुंह फेर लेता है। इसी वजह से कमजोरी और वजन घटना और तेज हो जाता है। यानी कि अगर आप ऐसे देखें, भाई हमारे भारत में ना एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग स्वस्थ रहने की जो है निशानी हम मोटापे को समझते हैं कि अगर इंसान मोटा है इसका मतलब वो स्वस्थ है, वो खुशहाल है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत में अधिकतर बीमारी जो है वो मोटापे से ही शुरू होती है और मोटापा एक उसका ही जो है सिम्टम होता है। लेकिन टीबी में दोस्तों उल्टा होता है। टीबी में आपका वजन जोर से घटता है, यानी बहुत स्पीड से घटता है। इसमें क्या होगा कि आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपको बिल्कुल भी खाना देख के आपका मन अजीब सा होने लग जाएगा। आप बिल्कुल भी खाने की तरह मतलब खाना आपको खाने का मन ही नहीं करेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप पतले भी होते जाते हैं। अब भाई अगर किसी मोटे इंसान को टीबी हुआ हो तो वो तो खुश हो जाएगा कि अच्छा हुआ हमारा वज़न घट रहा है। लेकिन अगर आपका वज़न घट रहा है और बहुत तेज़ से घट रहा है तो अगर आप चाहे मोटे हों चाहे पतले हों आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए क्योंकि इतनी तेज़ी से वज़न घटना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा छठा लक्षण है थकान और कमज़ोरी। टीबी के मरीज को बिना कोई काम किए भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। सुबह उठने के बाद भी ताजगी नहीं लगती है, शरीर में जैसे ऊर्जा अब बची ही नहीं है, आपकी एनर्जी बिल्कुल गायब लगती है। तो अगर ऐसी सारे लक्षण आपको आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जैसे कि फेफड़ों में जब जब संक्रमण होता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन समझ के मत जाने दीजिए। अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर टीबी फेफड़ों के अलावा किसी और अंग में भी हो तो लक्षण अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर टीबी हड्डियों में हो तो आपके पीठ और जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर
टीबी आपके दिमाग में हो तो आपको सर दर्द, उल्टी और कभी कभी दौरे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीबी लिम्फ नोड में हो, गले और बगल में गांठ भी महसूस हो सकती है। और अगर ये टीबी पेट का है तो पेट में दर्द, दस्त और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, एक बात तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टीबी के लक्षण अकेले अकेले और साथ साथ दोनों ही तरह आ सकते हैं। अगर इनमें से दो या तीन लक्षण भी एक साथ आ रहे हैं या दो हफ्तों से ज़्यादा आपको खांसी बनी हो रखी है तो आप तुरंत किसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं या फिर किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पे टीबी का मुफ्त जांच करवाएं। अब देखिए, हम इंडियंस फ्री की चीज़ों के पीछे तो कुछ ज़्यादा ही भागते हैं और फ्री की चीज़ें सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होती है और हमें यूज़ करने का मन भी करता है। तो भाई, क्या सरकारी सुविधाएँ क्यों नहीं, स्पेशली जब वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हों। अगर आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या सरकारी अस्पताल जाएं और वहां पे मुफ्त टीबी का चेकअप कराएं। तो दोस्तों, ये थी बात लक्षण की, लेकिन अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी इसके कारण क्या हैं ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि भाई देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी है और इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे इसके कारण क्या होता है, ये इसे ठीक कैसे करेंगे, तो हम ठीक कैसे होंगे, उसको हम जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको बने रहना है हमारे साथ अपने रेडियो FM, अपने फेवरेट वाले रेडियो FM, रेडियो ज्ञानासी 89.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि दिन है आज शनिवार और आज हम बात कर रहे हैं TB की। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि TB क्या होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी, यानी कि TB के कारण, यानी आखिर ये बीमारी होती क्या है, क्यों है, और किन लोगों को ज़्यादा इससे खतरा होता है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया हवा के जरिए फैलता है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया संपर्क में आना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए कुछ और कारण भी जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि लो इम्यूनिटी। दोस्तों, हमारा शरीर एक बेहतरीन मशीन है। जब भी कभी बैक्टीरिया अंदर जाता है तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन जब इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो तो क्या होगा, तो भाई ये बैक्टीरिया जीत जाएगा और आपकी बॉडी को बहुत बड़े संक्रमण में छोड़ देगा। HIV/AIDS के मरीज को TB का खतरा खासकर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV सीधे इम्यूनिटी को नष्ट करता है और इससे हमारी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये जीत जाता है। दुनिया भर में TB से होने वाली मौतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा HIV पॉजिटिव मरीजों का भी होता है। तो अगर आपको HIV है तो ज़रूर से लगातार कुछ, मतलब आप महीने में एक बार या दो महीने में अगर आपको लक्षण थोड़े से भी दिख रहे हैं तो ज़रूर जाके इसकी जांच करवाएं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके दूसरे कारण, यानी कि कुपोषण की। देखिए, भारत में TB के इतने मामले होने की भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो है कुपोषण। जब शरीर में ज़रूरी पोषण नहीं मिलता है या वो कुपोषित होता है, सही प्रोटीन नहीं होता है, विटामिन नहीं होते, मिनरल नहीं मिलते बॉडी को, तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और कमज़ोर इम्यूनिटी वाला शरीर TB के बैक्टीरिया को रोक नहीं पाता है। उसके बाद तीसरा कारण अगर हम उसकी बात करें तो वो है डायबिटीज़। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर घर में आपको 2 से 3 लोग जो हैं ये डायबिटीज़ के मिल ही जाएंगे और ये डायबिटीज़ डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में डायबिटीज़ एक बहुत आम बीमारी हो गई है और डायबिटीज़ के मरीज को TB होने का खतरा सामान्य लोगों से 2-3 गुना ज़्यादा ही होता है। शुगर की वजह से इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है और इसकी वजह से हमें TB हो सकती है अगर हमें डायबिटीज़ है। चौथा कारण है भीड़ भाड़ और ख़राब रहने की। दोस्तों, TB का बैक्टीरिया हवा में फैलता है और जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, कमरे छोटे हों, खिड़कियाँ बंद हों, हवा आती नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पे ये बैक्टीरिया घंटों तक जीवित रहता है और इसीलिए देखिए भाई, जो झुग्गी झोपड़ी होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, यहाँ पे TB को ज़्यादा ही फैलता है। पांचवा कारण है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ों को कि ये चीज़ ख़तरनाक है, लेकिन इसको हम हमेशा गले से लगा के रखते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है धूम्रपान और शराब। हर दीवार, हर इवन हम बात करें शराब की या फिर सिगरेट की, तो उसके पैकेट के पीछे खुद लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये जानलेवा है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये धूम्रपान और शराब का सेवन होता है। इवन जब कोविड टाइम पे जब लोग लड़ाई कर रहे थे अपनी ज़रूरतों की चीज़ की, खाने पीने की, वहाँ ही सरकार ने एक बहुत बड़ी लाइन शराब के ठेकों के सामने भी देखी, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे भारत के लिए। देखिए, ये जो शराब होता है ये आपको सिर्फ आपके ऑर्गन से फेल नहीं करता, बल्कि आपको बहुत बड़ी बीमारियों की चपेट में भी लाता है और TB उनमें से एक है। देखिए, ये जो सिगरेट होती है, सिगरेट पीने से आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और बैक्टीरिया के लिए आसान रास्ता बना देते हैं कि वो आपकी बॉडी में एंटर हो और अपना जो काम है वो करें। शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर आपको हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि जो धूम्रपान होता है और शराब होता है, ये अगर आप करते हैं तो आपको कैंसर ही नहीं, आपका ऑर्गन फेल ही नहीं, बल्कि आपको टीबी जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। उसके बाद छठा कारण की अगर हम बात करें तो अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते हैं या फिर कोई हैवी दवाई लेते हैं तो इससे भी आपको टीबी हो सकता है, या फिर हो सकता है इट मीन्स कि यही दवाई ही उसका कारण नहीं होती है। देखिए, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये आपकी इम्यूनिटी पर काम करती हैं। कुछ बीमारियों में डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देते हैं, जैसे अर्थराइटिस है आपको, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर उसके बाद जो दवाई चलती है उसमें स्टेरॉइड भी होती है। ये दवाएं जो होती हैं ये इम्यूनिटी को कम करती हैं जिससे टीबी का खतरा बढ़ जाता है। तो भाई, ये थी कुछ ज़रूरी कारण जो हमें जानना चाहिए कि क्या होता है। हमें अपने दुश्मन की सारी इस जो खबर होती है वो हमारे पास होनी चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना ज़्यादा सक्रिय है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द शो, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तो कराना है ना। अगर हमें टीबी हो गया या फिर हम इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या डाइट ले सकते हैं आप, उन सभी पे बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। और आज हम बात कर रहे हैं टीबी पे। टीबी एक बहुत गंभीर बीमारी है, ये हमने जाना, इसके लक्षण जाने और इसके कारण भी जाने। लेकिन अब बात करते हैं ज़रूरी, यानी कि क्या इसका ट्रीटमेंट है और कैसे ये ठीक होगा। और हम सबसे बड़ी बात, हमारे जो पूर्वज कहते आते थे, दादी दादा नानी नाना सब, कि बेटा सबसे ज़्यादा दम है खान पान में। तो क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, कैसे आप इसका इससे बचाव कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन भाई, इस पे बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो आपको पता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ, पानी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इस गर्मी में लग चुका है नौतपा। नौतपा यानी 9 दिन जो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। किसकी? पानी की।

0: भाई गर्मी की, ऊपर से भगवान ऐसा लगता है कि आग के गोले बरसा रहे हैं, लेकिन इस आग के गोलों में बिल्कुल अपना ध्यान रखना ना भूलें। ध्यान रखने में सबसे तो ज़रूरी है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो कि आपको मिलेगा पानी से। देखिए इस नौ तपे के दौरान सभी आपको जो पंडित हैं वो भी कहेंगे, डॉक्टर्स भी आपको यही कहेंगे कि कोशिश करें कि आप 11 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे के बीच में अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको जाना ज़रूरी है तो इससे पहले या इसके बाद जो है अपना काम निपटा लें। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज से ड्रेन हो जाती है और आप जो है बेहोश हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की, यानी कि टीबी की ट्रीटमेंट की। तो ये जो आज का आखिरी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अब हम बात करने जा रहे हैं टीबी के इलाज और सही खान पान की। दोस्तों सबसे पहले एक बात बहुत साफ कर देती हूँ आपको कि टीबी को पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बस ज़रूरत है सही इलाज की, सही समय पर एक सही अनुशासन के साथ जीने वाली ज़िंदगी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलाज की, इलाज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी जो कि आपको डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं और आप इसके थ्रू अपना ये है प्रोसेस स्टार्ट भी करते हैं। भारत में टीबी का इलाज डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के ज़रिए होता है। इसमें मरीज को हर दिन एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की निगरानी में दवाएं दी जाती हैं और ये दवाएं पूरी तरीके से मुफ्त होती हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल और प्राथमिक सेवा केंद्र में आप जाएंगे, आपको ये दवाई और ये थेरेपी आपको मिल जाएगी। इलाज कितने समय तक होता है ये आपके मन में बहुत ही बड़ा सवाल ज़रूर आता होगा। देखिए साधारण टीबी का इलाज 6 महीने का होता है। पहले 2 महीने में 4 दवाएँ एक साथ दी जाती हैं और बाकी के 4 महीने में 2 दवाएं चलती हैं। एमडीआर टीबी यानी कि दवा प्रतिरोधक टीबी का इलाज 18 से 24 महीने तक का हो सकता है। दोस्तों एक बात आप बिल्कुल से गांठ बांध लें, वो ये है कि दवाएं कभी बीच में ना छोड़ें। 2 महीने में ही ठीक लगने लगता है अगर आप रेगुलर दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी गई। बैक्टीरिया अभी भी शरीर में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़िद्दी होता है, हाँ ज़िद्दी कह सकते हैं इसको, और ये जाने में थोड़ा सा वक्त लेता है। दवाई छोड़ने से वो दवा प्रतिरोधक बन जाते हैं और फिर इलाज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निश्चय पोषण योजना की। देखिए सरकार टीबी के मरीज को हर महीने 500 रुपये आर्थिक मदद के रूप में देती है, जिससे कि वो एक अच्छा खान पान अपना सके और इलाज भी इसका जारी रख सके। इसके लिए निश्चय पोर्टल पर रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं खान पान की, जो कि इस इलाज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। दोस्तों टीबी में शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए खाना ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ताकत दे, इम्यूनिटी बढ़ाए और दवाओं को काम करने में मदद करे। अब बात आती है आप सभी के जहन में कि आखिर क्या खाएं। देखिए सबसे पहले आपको प्रोटीन युक्त भोजन खाना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, अंडे, मछली, चिकन, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं और आप इनका सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन से टूटे हुए टिश्यू जुड़ते हैं और शरीर ठीक भी होता है। दूध और दूध से बने उत्पाद भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपको रिकवर होने में, जिसमें आप दही, पनीर, छाछ, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इनसे कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही मिलते हैं। ताज़े फल और सब्जियां खूब सारा खाएं। देखिए संतरा, आंवला, नींबू, अमरूद, इसमें क्या होता है विटामिन सी, और ये बिल्कुल विटामिन सी से बिल्कुल कह सकते हैं विटामिन सी के लड्डू होते हैं ये, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और इस समय आपको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद गाजर, पालक और हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है, जो कि फेफड़ों को ठीक करने में मदद करता है। अनाज और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी, दलिया, ये शरीर को ऊर्जा देती है। खूब पानी पिए, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे आपको और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना है और इसे अपनाना भी है, मतलब इस पर अमल भी करना है, वो है कि क्या नहीं खाना है। हम इंडियंस की ज़ुबान बड़ी चटोरी होती है दोस्तों, चाहे मैं हूँ आप हो बिल्कुल भाई, हम जैसे देखते हैं कि गर्मा गर्म आलू टिक्की महक रही है, हमें चाहिए, हमें समोसे चाहिए, हमें शाम के स्नैक में कुछ चटपटा चाहिए मसालेदार, और अगर बाहर का मिल जाए तो हो भाई बात ही बन जाए। लेकिन अगर आप टीवी के मरीज हैं तो इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने जो क्रेविंग्स है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तला भुना और जंक फूड आपको कम खाना है, इसको आप कम करें। शराब और धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें। बहुत मीठी चीज़ों का भी कम सेवन करें और बाहर का खाना अवॉइड करें। दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो ये हैं कि टीबी के मरीज को घर में अलग कमरे में रहना चाहिए, खासकर शुरुआती 2 हफ्तों में, जब तक दवाएं असर ना करें तब तक। खांसते या छींकते समय मुंह को ढक के रखना है, इधर उधर आपको थूकना नहीं है, टिशू का इस्तेमाल करना है। मरीज के परिवार को BCG वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। ये BCG जो वैक्सीन होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आपके घर में किसी को टीबी हो रखा हो, खासकर अगर आपके घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और अगर आपके आसपास कोई है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांस रहा है तो उसे प्यार से समझाएं, डराइए बिल्कुल भी नहीं, और उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। याद रखिए टीबी का इलाज मुफ्त है और टीबी ठीक हो सकती है। दोस्तों ये था आज का स्पेशल शो स्वास्थ्य संगनी, जी हाँ स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हमने बात की टीबी की। आशा करती हूँ कि आपने सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए सरकार और हम सभी का यही एक प्रण होना चाहिए कि इस भारत को, हमारे उभरते चमकते भारत को टीबी मुक्त बनाना है, क्योंकि अभी हमने जाना कि टीबी कितना ज़्यादा अपना प्रकोप दिखा रहा है भारत में। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारा आपसे विदा लेने का, मिलेंगे आपसे फिर अगले बुधवार और अगले शनिवार, जिसमें आता है आपका सेहत वाला कार्यक्रम यानी कि स्वास्थ्य संगनी, जिसमें बात होती है आपकी हेल्थ की, आपके अपनों के हेल्थ की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में पानी पीजिए और अपना और अपनों का खासकर ख्याल रखें।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूँ आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
2: बिल्कुल, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
2: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
2: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं नहीं, उससे भी पहले।
2: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
2: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
2: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
2: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल,
3: और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद आरजी जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
3: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
4: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
5: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुंचता है।
4: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
2: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
4: बिल्कुल सही कहा।
3: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
4: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को समान बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
2: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
4: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के समान लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
3: और किस तरह का जोखिम?
4: समय से पहले परसों हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और परसों के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
2: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
5: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
3: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
5: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
4: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
5: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
4: आपने बिल्कुल सही कहा।
3: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
4: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
2: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
5: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
4: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
5: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
4: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
4: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
2: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
5: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
3: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
4: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
2: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
5: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
3: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
2: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं, तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
3: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
2: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
5: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
4: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
3: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
2: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
4: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
5: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
6: आरजे अंशिका।
5: जी हाँ, तो बिल्कुल हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि दुरुस्त तंदुरुस्त और नहीं यही बोलते हैं ना,
6: चुस्त दुरुस्त,
5: क्या हो रहा है मेरे को, चुस्त तंदुरुस्त और दुरुस्त,
6: ये कुछ मतलब हो गया है।
5: कुछ हो गया, कुछ हो गया,
7: कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया,
5: हो गया
7: तुमने से देखा कि
5: कुछ हो गया। हाँ।
6: क्या हो गया,
5: लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा गा लेती हूँ,
6: बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा,
5: पर थोड़ा अच्छा नहीं कोशिश हुआ। अरे गाने से याद आया कि आज तो सैटरडे है भाई।
6: यस
5: सैटरडे, सैटरडे, यस
6: तेरे लिए
5: आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन हम करते हैं फुल मस्ती धमाल, अपनी लोकवाणी को हम लोग देते हैं आज विराम क्योंकि आज करते हैं हम थोड़ा सा आराम और साथ में देते हैं आपको थोड़ा सा गरम वाला मसाला और उसके साथ में देते हैं गर्मा गर्म चाय।
6: वाह, मतलब आराम,
5: थोड़ी
6: चाय,
5: थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ी कर लेते हैं, राइमिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ, मतलब सीख रही हूँ, बट हाँ कर लेती हूँ।
6: नहीं नहीं मैम, आप अच्छी वाली कर लेती हैं, ऐसा नहीं है।
5: जी तो चलिए, आज का पसंदीदा आपका शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
4: सुन सहेली
5: आरजे समता एंड
6: आरजे अंशिका।
5: और इस प्यारी सी दोपहर में, दोपहर तो इतनी है कि हम लोग बिल्कुल बेकाबू होके बैठे हैं आज कि हम लोग क्या ही बता दें, और इस दोपहर का आह्वान तो करना ही है भाई, क्योंकि 1:30 से 3 बजे तक जो भयंकर सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के हम लोग बैठ जाते हैं, यहाँ भूख लगती है, नींद आती है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में इतनी, प्यार को इतनी शिद्दत से करो कि ये दोनों चीज भूल जाएं, तो वही हम लोग करके आते हैं और करने आते हैं आपसे, तो इसी वजह से सब चीज को हम रखते हैं दरकिनार और आइए करते हैं आज की आह्वान अपनी धूप का और अपने आज के इस समय के शोज के लिए, और प्लस प्लस प्लस आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में, लेकिन इस प्यारी सी दोपहर में एक साथ एक ही फ्रेम में
6: शुभ दोपहरिया। तो शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आज मूड है जबरदस्त क्योंकि हम हैं मस्त। और मस्त क्यों है ये भी आपको पता है, जैसा मैम ने अभी आपको बताया। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्टार्टिंग वाली हमारी सेगमेंट की तरफ, जो की है प्यारी सी पोएट्री। और आज दिन सैटरडे, और सैटरडे को हम बात करते हैं लव के बारे में। तो वही प्यार है, इजहार है, इकरार है। इकरार कुछ आंखों से होता है, आपको पता है जब कोई इंसान प्यार में होता है तो कैसे पता चलता है कि अगला इंसान प्यार में है?
5: पता नहीं
6: कैसे पता चलता है मैम,
5: उनकी आंखों से पता चल रहा होगा।
6: आंखों से, यस, आंखों से पता चल जाता है। हम रहते कहीं और है, मतलब बॉडी कहीं और होती है, मन कहीं और होता है। हम कुछ
5: बॉडी यही रहती है, मन कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, जज्बात कहीं और होते हैं, ख्याल कहीं और होते हैं, सोच कहीं और होती है।
6: वाह,
5: और गाना भी कहीं और से
6: आता है, मिल जाता है। हम अच्छी अच्छी चीजों, अच्छा पता है एक और सिम्टम्स होते हैं, आप अच्छी अच्छी चीजों को ना खोज लेते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं।
5: हाँ।
6: और सब कुछ अच्छा लगता है,
5: सब कुछ अच्छा लगता है,
6: चाहे भले ही वो चीनी चाय में चीनी ज्यादा होगी लेकिन आपको वो चाय अच्छी लगेगी।
5: तो ये असर केवल और केवल इश्क का है, मैं बता दूं, ये उस इश्क मुश्क का है जो कि एक इंसान से ही होता है। तो ये इश्क मुश्क आप सभी को भी कभी ना कभी हुआ होगा, और भगवान करे हम लोगों को भी हो जाए, क्योंकि हम दोनों लोग इस पृथ्वी के वेल्ले इंसान हैं, तो हम दोनों को भी हो जाए किसी से इश्क मुश्क, तो हम लोग भी इस प्यारे से
6: काम के हो जाएंगे,
5: हम भी किसी काम के हो जाएंगे। और ये जो गाना अब मैं आपको सुनाऊंगी तो शायद कोई हमें फिर डेडिकेट भी करे ये गाना, शायद कोई डेडिकेट
6: करे। मेरा तो मुझे पता नहीं, मतलब अपने लिए तो मैं कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैम के लिए हो सकता है कोई डेडिकेट कर दे, कोई भेज दे, कोई हो सकता है, मैम के लिए हो सकता है।
5: हो गया ना, तो लव सीजन को आज हम आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में आइए इस प्यारी सी पोयम यानी लव पोयम को आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद में अभी जो एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग हमारे स्क्रीन पे आ गया है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। और आज गाने ज्यादा होंगे, बातें होंगी कम, क्योंकि आज है थोड़ा सा चीनी कम।
6: वाह,
5: पानी में चीनी कम, चाय में चीनी कम,
6: लाइफ में भरपूर है, बाकी पानी में कम, चाय में कम, उसमें कम है, लेकिन लाइफ में मिठास है।
5: तो प्यार, उम्मीद की एक नई किरण, अंधेरी रातों में जैसे भोर का तारा चमकता है, अंधेरी रातों में जैसे भोर का तारा चमकता है, प्यार की एक छुअन से हर मुरझाया दिल धड़कता है। जब टूटने लगती हैं उम्मीदें और राहें खो जाती हैं, प्यार की हल्की सी छाप, प्यार की हल्की सी थाप से मुश्किलें सो जाती हैं। ये वो रोशनी है जो बंद आंखों को ख्वाब देती है, डूबी हुई कश्ती को किनारों का जवाब देती है। जब कोई थामता है हाथ तो डर पीछे छूट जाता है, जिंदगी का हर पुराना बिखरा हुआ पन्ना जुड़ जाता है। प्यार सिर्फ जज्बात नहीं, जीने की नई शुरुआत है, प्यार सिर्फ जज्बात नहीं, जीने की नई शुरुआत है। पतझड़ के सूखे मौसम में इस सावन की पहली बरसात है। हाँ, यह सिखाता है फिर से मुस्कुराना, यह सिखाता है फिर से मुस्कुराना और खुद पर यकीन करना, हर हार के बाद उठना और नए आसमानों में उड़ना। चलो थाम ले इस डोर को जो कल को महकाती है, चलो थाम ले इस डोर को जो कल को महकाती है, प्यार ही वो उम्मीद है जो हर नई राह बनाती है।
6: ओ माय गॉड, वाह, इसके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी, मेरे मुंह से सिर्फ वाह ही निकल रही है। बहुत प्यारी पोयम थी मैम, और बिल्कुल लगता है ना किसी के दिल की जो फीलिंग्स हैं उन्हें शब्द मिल गए, तो कुछ
5: किताबों को उन किताबों के पन्नों को पलट पलट कर ये कविता निकाली गई है।
6: मतलब
5: जैसे कहते हैं ना कि किसी एक पन्ने से दो चार शब्द निकालो, किसी एक पन्ने से दो चार शब्द निकालो तो जाकर के एक पोयम बनती है।
6: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी थी ये पोयम और सुन के मजा आ गया। तो चलिए अब इस पोयम के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आजकल रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या है, और उसके बाद हम सॉन्ग सुनेंगे क्योंकि आज हमारे पास कोई खास सॉन्ग है आप सभी के लिए भी और किसी और के लिए भी। लेकिन उससे पहले रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बता देती हूँ। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज का ये कहता है कि सिर्फ अपनी आंखों से देखी हुई और अपने कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। हमेशा किसी के बारे में भी धारणा बनाने से पहले किसी और की सुनी हुई बातों पर नहीं, बल्कि आपने उस इंसान के बारे में क्या अनुभव किया है इस आधार पर अपनी धारणा बनाएं।
5: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आज का जो हम लोगों ने सुना। तो चलिए अंशिका, गर्मी बहुत है
6: जी,
5: और हम लेते हैं यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, नहीं आज हम लेंगे लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि आज हमारा सैटरडे के दिन, तो यार हम लोग कल कम
6: एक दिन तो
5: हैं।
6: आपको हमारी बकबक से छुटकारा हो।
5: हाँ, कम बोलते हैं और आपको सुनाते हैं ढेरों गाने। तो चलिए हम यहाँ आते हैं थोड़ी देर के बाद में, आप तब तक इंजॉय करिए ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स को।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम सीबीएसई

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
7: RJ अंशिका।
6: क्या हाल है भाई आप सभी का? और दो चार सॉन्ग सुनाने के बाद में, और मुझे लग रहा है कि आज सैटरडे है ना, और सैटरडे के दिन मुझे लगता है कि यार थोड़ा तो होना चाहिए ना, उस दिन गाने शाने ज्यादा होने चाहिए।
7: बिल्कुल भाई, हर दिन तो आप हमें सुनते हैं, हम अपनी कुछ कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, लेकिन एक दिन तो होना चाहिए ना कि सॉन्ग्स के थ्रू हम बातें करें,
6: सॉन्ग्स के थ्रू हम मैसेज कर सकें, सॉन्ग्स के थ्रू हम अपने दिल की बात कर सकें, कोई सॉन्ग्स भेजे, मैं उन्हें सॉन्ग्स भेजूं, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। लेकिन उन सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं आज के कुछ OTT सीरियल्स जो कि अंशिका लेके आई हैं। देन हम आपको बहुत सारा, अभी हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट बाकी है, तो वन बाय वन आइए फटाफट सुनते हैं आज की OTT सीरियल्स के बारे में।
7: OTT पे तो मैं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही अच्छा सा एक न्यू शो है जो कि आने वाला है, जिसमें होते हैं बहुत सारे झगड़े होते हैं, थोड़ी लड़ाई होती है, बहुत सारी मस्ती होती है, और बहुत सारी मस्ती के साथ आपको बहुत सारा ड्रामा भी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है कि जिसके लिए अंशिका मैम ने पहले ही वांट कर दिया कि लड़ना पड़ता है। तो भाई बताते हैं लेकिन कुछ हिंट देते हैं, क्योंकि ये शो ऐसा है ना कि कोई नहीं होगा जिसने ये शो नहीं देखा होगा। और जब हमारे दबंग यानी कि भाईजान सलमान खान होस्ट करते हैं भाई, तब तो फिर देखना बनता ही है। फिर तो आपने मुझे लगता है 100 में 200% देखा होगा। और 16 सीजन, मतलब इसका जो 16 सीजन आया था वो तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि सभी ने देखा था।
6: बिग बॉस,
7: यस
6: बिग बॉस के तो मैं बहुत दीवानी हूँ, सीजन 1 से लेकर के
7: yes, ma'am.
6: मैंने सारे देखे हैं बिग बॉस के। और पता है सबसे ज्यादा लोग कहते हैं ऐसा, उसकी TRP इतनी ज्यादा है, लेकिन लोगों का मानना ये होता है कि बिग बॉस देखने वाले ना बस उसमें खाली सिर्फ क्या होता है, हमेशा से लोग लड़ते हैं, लड़ाई होती है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है उसमें भाई। बिग बॉस का मतलब है कि हमें अनजान लोगों के साथ में कैसे हम अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। सोचो कोई हमें नहीं जानता है और 40 दिन तक, मतलब नहीं 40 दिन तक नहीं,
7: तीन से चार महीने,
6: मतलब 90 दिन का एक बार ही आया था, और एक बार आया था 120 दिन का। तो आप खुद सोचो कि कितने कितने दिन आपको रहना है बीच में, और बिल्कुल कमिटेड होता है कि आपको निकलना ही नहीं है बाहर, और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान। नो क्या कहते हैं मोबाइल फोन, नो टीवीज एंड नो न्यूज़पेपर, मतलब बाहर की कोई भी सोशल मीडिया की आपको खबर नहीं मिल सकती है। तो कितनी बड़ी बात है ना कि आप 3 महीने बिना मोबाइल के रह रहे हैं, बिना आप अपने अजीज की आवाज़ सुने बिना रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, इसलिए भी लोग लड़ते हैं कि अगर हम ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो हमें जल्दी से निकाल के फेंक दिया जाएगा बाहर, है ना। पर ऐसा नहीं है, जो ज्यादा लड़ते हैं उनको टीआरपी ज्यादा मिलती है।
7: बिल्कुल। तो भाई बिग बॉस अपने नए सीजन के साथ एंट्री मारने वाला है, आने वाला है, शुरू होने वाला है, तो आप सभी इसे देखने के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए।
6: बिल्कुल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा ओटीटी सीरियल्स क्या है?
7: और नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है कि जिन्हें म्यूजिक पसंद है ये उनके लिए, जियो हॉटस्टार पे डांस दीवाने, वोट ऐप पे भी आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी इसके ऑडिशन शुरू होने वाले हैं, जल्द ही ये अपने मानसून सीजन के साथ आएगा और आप सभी देखें, इंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें और सिंगिंग में नई नई चीज़ों को इंजॉय करते रहें और उसके साथ डांस को भी, क्योंकि इस बार डांस दीवाने जो वापस आ रहा है वो नए अंदाज में वापस आ रहा है। और नया अंदाज ये है कि इस बार सिंगर्स लाइव गाएंगे और पार्टिसिपेंट्स उन पर डांस करेंगे।
6: ओह माय गॉड, मतलब ये तो एक ना ट्विस्ट हो गया, एक सोने पर सुहागा वाली बात हो गई कि सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है और बहुत बड़ा मस्ती एंड फन भी है।
7: बहुत सारा मस्ती है, बहुत सारा फन है, तो आप जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे पास सिर्फ 2 शोज और हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि भाई प्यार का दिन है और अगर प्यार वाले यानी रोमांटिक वाले शो की बात नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो रोमांटिक शो है जो कि आप देख सकते हैं Z5 ऐप पे, जिसका नाम है जब से तुमसे नैना मिले। बहुत ही प्यारा सा शो है ये, और इसमें ऐसा होता है ना कि आप देखेंगे कि कुछ भी मैटर नहीं करता है, मतलब आप किस कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे दो लोगों की कहानी है कि एक आसमान है तो दूसरा ज़मीन। एक बहुत अच्छी ब्रॉड अच्छी फैमिली से शहर से बिलोंग करता है, तो जो लड़की होती है मैम वो गांव से बिलोंग करती है, मतलब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आती है और फिर उससे मिलती है और फिर कैसे प्यार होता है, कैसे लव स्टोरी होती है, कैसे परवान चढ़ती है, ये तो आप देखेंगे ना। अगर सब मैं बता दूंगी तो फिर देखने का क्या मजा।
6: हाँ, और कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना सीरियल्स को देखने के लिए, और जैसे मूवीज हो गया सीरियल्स हो गया, तो जब तक हम उसमें कुछ सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं ना तो भी लगता है कि यार सब तो बता ही दिया गया, अब हम लोग क्या ही देखें। तो लिसनर्स मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर बार हर वीक में हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया OTT सीरियल्स मूवीज को लेकर के आते हैं, तो आपको सुन करके क्या हम लोगों से थोड़ा सा हेल्प मिलती है जो शौकीन हैं TV के और अपने OTT सीरियल्स के लिए जो कि मोबाइल में देखते हैं या फिर आप अपने घर की स्क्रीन पे देखते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को भी और अच्छा लगता है तो कुछ ऐसा सुझाव हमें और दिया करिए आप।
7: तो चलिए अब बहुत हो गया रोमांटिक, अब खतरों से कुछ खेल लेते हैं।
6: खतरों के खिलाड़ी?
7: यस भाई, हम तो ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी हैं, हर दिन नए नए खतरों से खेलते हैं, जीतते हैं और आपको फिर यही मिलते हैं वापस। तो ऐसा ही कुछ है कि जिन्हें भी ये स्टंट्स बहुत पसंद है, स्पेशली आजकल जो जेंजी हैं यानी कि यूथ्स हैं, उनको बड़ा मजा आता है, मुझे भी बड़ा मजा आता है, हालांकि जब बहुत खतरनाक वाला होता है तो मैं भी घर बैठे बैठे डर जाती
6: हूं। यहाँ पर जेंजी की बात हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो है ना,
7: मतलब, जी आई नो,
6: मेरे बाद आप हैं तो फिर
7: हाँ
6: भाई, मैं तो आप मुझे बोलती हूँ आप बुजुर्ग की लाइन में,
7: तो मतलब मैम के कहने का सेंस ये है कि मैं भी
6: नो वे, अगर आप अपने आप को जिंजी विंजी बोल रहे हैं तो मतलब मैं तो फिर यूथ में हो गई ना, कहने का मतलब ये है।
7: अरे आप यूथ में हैं मैम, आपको हम बस ऐसे चिढ़ाने के लिए, जब मुझे पता है मुझे क्या मजा आता है जब मैं कहती हूँ मैम बड़े बुजुर्गों में, तो मैम जब चिढ़ती है ना फिर मुझे कहती है बड़ी बुजुर्ग नहीं हूँ मैं, वो मुझे मजा आता है इसलिए मैं कहती हूँ,
6: वो सुनने में मजा आता है,
7: सुनने में मजा आता है,
6: फेस एक्सप्रेशन सुनने में मजा आता
7: है, बाकी कोई नहीं, हमारी मैम कोई वो नहीं है, मतलब बुजुर्ग बुजुर्ग
6: नहीं, मैं हूँ तो मुझे कोई शर्म भी नहीं है कहने।
7: अच्छा सर, वो वाला एक फॉर्मूला है तो मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनने में।
6: सिंदूर की कीमत
7: तुम क्या जानो,
6: पता नहीं क्या लिखते रहते हैं नागेश्वर जी और सबलू जी,
7: तो चलिए बता
6: क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत।
7: नेक्स्ट बता देते हैं आपको कि 1 अगस्त से यानी कि आज से शनिवार रविवार रात 9 बजे शुरू हो रहा है वो टैप पे, तो जरूर देखिए खतरों के खिलाड़ी इस बार भी एक से एक आएंगे और खतरों से खेलकर देखते हैं कौन बनता है खिलाड़ी। तो देखिएगा, एंजॉय करिएगा और हाँ डरिएगा नहीं, डराइएगा
6: जी, बिल्कुल।
7: तो चलिए अब मुझे लगता है काफी चीजें हमने बता दी मैम, अब एक अच्छे से सॉन्ग की बारी हो जाए।
6: हाँ, वैसे भी हम लोग सैटरडे के दिन बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं, बाकी दिनों में भी हम काम ज्यादा ही करते हैं, लेकिन आज के एक दिन होता है कि
7: आज के दिन करना बनता है,
6: आप लोगों को गाना ज्यादा सुनने को मिलता है और हमारी जो बकबक है वो कम सुनने को मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, एंड देन फिर हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में है
6: आरजे अंशिका।
5: तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज की लव राशिफल की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले भी सॉन्ग के बीच में गेम भी शुरू कर दो, आज एक घंटे का गेम हो जाए। पता नहीं कैसे नागेश्वर जी आपको सब पता चल जाता है, आज हम लोगों ने कुछ ऐसा ही प्लान भी किया हुआ है, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि तबिश खान एंड जो भी हैं सुन सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से नमस्ते। धर्मेंद्र जी नमस्ते। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो मैं आपको आज गेम सिर्फ 10 मिनट का ही खिलवाऊंगी। तो रानी गुप्ता, तबिश एंड रानी गुप्ता ही मतलब बहुत ज़्यादा आपस में बात कर रहे हैं, और अब हमें बातों का अगर एक भी मैसेज आया तो मैं उनके सॉन्ग्स को नहीं लूँगी। ये मेरा बिल्कुल आज के दिन आपको बिल्कुल साफ एंड सुरीला वाला कमिटमेंट है। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल, बहुत ही साफ सुथरा कमिटमेंट, और एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते, इसलिए आप सुन लें कि आपको बातें नहीं करनी है।
5: क्योंकि एक कारण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ना फिर मैसेजेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारा दिया हुआ जो नंबरिंग हम लोग करते हैं या फिर आपको अक्षर देते हैं तो वो ऊपर स्क्रॉल हो जाता है।
6: बिल्कुल, और अगर आप सॉन्ग्स भेजेंगे तो वो भी ऊपर हो जाएंगे, फिर आप ही कहेंगे कि मेरा सॉन्ग नहीं चला, मेरा सॉन्ग नहीं चला। तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ सॉन्ग्स लिखिए, या फिर अगर आपको कोई उस पर प्रतिक्रिया देनी है तो आप वो दीजिए, बातें नहीं करिए। बातें करने के लिए अच्छे से आपके पास एक यंत्र है जो आजकल हम सभी इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है फोन, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अगर
5: रानी गुप्ता एंड तबिश खान, आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्या चाहते हैं? मेरे पास लास्ट ऑप्शन के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा फिर तो। प्लीज़ आप लोग फिर अलग अलग आईडीज से आते रहिएगा। तो मेरा मैसेज अब ये, अब इसके बाद में आप लोगों के केवल और केवल सॉन्ग्स के ही मैसेजेस आएंगे, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं आएगा। तो ये और गेम स्टार्ट नाउ। तो पहला वर्ड मैं आपको देने जा रही हूँ जो कि है र। तो पहला वर्ड आपको मैंने दिया है र, और तब तक हम लोग आपको एक राशिफल भी सुनाएंगे और साथ में आप लोग अपना एक सॉन्ग भी लिखें।
6: तो चलिए सबसे पहले आता है लव राशिफल। तो सबसे पहले जिस राशि की बारी है वो है मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए है कि आज पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें, छोटी सी बात पर बहस हो सकती है जिससे आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। शांत रहकर स्थिति को संभालें और साथी की भावनाओं का आदर करें। तो भाई थोड़ा सा शांत रहना है आज आपको। तो अब आते हैं अगली राशि की तरफ जो है वृषभ राशि वालों के लिए, कि आज आपकी लव लाइफ में आज का दिन बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। कुछ रोमांटिक पल बिताएंगे आप अपने पार्टनर के साथ और इससे आपका आपसी समझ और तालमेल बढ़ेगा। शाम को पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह पर घूमने का भी मौका मिल सकता है। ओ वाओ
5: जी।
6: अब आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए है कि आज आपका पार्टनर आपको कोई खूबसूरत सरप्राइज देगा जिससे आपका दिन बन जाएगा, और जो लोग जिनकी भी शादी नहीं हुई है वो आज के दिन उनकी लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। अपने दिल की बात खुलकर साझा करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। अरे वाह। और अब आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों के लिए है, पिछले कुछ समय से चल रही पुरानी गलतफहमियां आज बातचीत के जरिए दूर हो जाएंगी, रिश्ते में फिर एक बार नज़दीकी आएगी और आप फिर से वही आपसी भरोसे के साथ अपने रिश्ते को निभाएंगे और एक दूसरे पर भरोसा जताएंगे और पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे।
5: एग्जैक्टली। तो चलिए अब हम बाकी जो राशियाँ हैं हम उनको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी सॉन्ग सुना देते हैं जो कि सॉन्ग भेजा है कमल नयन जी ने, और सबलू सावन जी ने दोनों एक ही सॉन्ग की लिख रहे हैं। तो चलिए हम सॉन्ग लेते हैं। और मैंने आपसे कहा था रानी जी, अगर आप हम लोगों को मजबूर करेंगे तो हम कोई ना कोई एक्शन ज़रूर उठाएंगे। तो अगर आपको सॉन्ग्स के अलावा अब कोई भी चैट बॉक्स में बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, हम लोग फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग खुद कहते हैं कि हमारा सॉन्ग नहीं प्ले हुआ, तो प्लीज़ आप हमारी बात को समझें। तो आइए दोनों के सॉन्ग्स को सुनते हैं, यानी कमल नयन जी और सबलू जी। तो ये प्यारा सा सॉन्ग जो है वो है राह में उनसे मुलाकात होगी।

प्रीति जी, अब आपका सॉन्ग आया है, क्योंकि इसके पहले का जो सॉन्ग था वो पहले कमल नयन जी का सॉन्ग था, और अभी मैंने आपके सॉन्ग को प्ले किया। एक नेक्स्ट वर्ड हम आपको चैट बॉक्स में देंगे।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं बाकी राशियों के बारे में। और बाकी राशि यानी कि सिंह राशि को आइए देखते हैं आज का दिन उनके लिए कैसा है। आज आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा ध्यान देना होगा और अहंकार को रिश्ते के बीच में आने से रोकना होगा। साथी की बातों को और उनकी ज़रूरतों को अनसुना ना करें बल्कि उनकी राय का भी सम्मान करें। थोड़ा सा झुकना आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। नेक्स्ट राशि हमारी आती है कन्या राशि वालों के लिए है। सिंगल्स के लिए आज का दिन बहुत भाग्यशाली होने वाला है। किसी खास मित्र की तरफ से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनका प्रेम जीवन बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा आज के दिन। नेक्स्ट राशि हमारी आती है तुला राशि वालों के लिए है कि आज आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान कर सकते हैं। साथ में बिताया गया हर समय आपके संबंधों को एक नई गहराई और मजबूती देगा। आपसी संवाद से भविष्य की योजनाएं भी साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आज किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके और पार्टनर के बीच थोड़ा सा तनाव या अंधविश्वास पैदा हो सकता है। किसी भी बात पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया ना दें, आपस में बैठकर शांति से बात को सुलझाएं, संयम से काम लें। तो भाई ये थी चार राशियां और बाकी बची चार राशियों को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि इस गाने को सुन लेंगे जो कि नागेश्वर जी ने भेजा है। आइए सुनते हैं और नेक्स्ट वर्ड भी हम आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प। तो नेक्स्ट वर्ड आइए हम प से सॉन्ग को भी सुनेंगे। जल्दी से आप लोग लिख करके भेजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है प।

0: तो चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं बाकी बचे हुए लव राशिफल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको आपका वर्ड दे देती हूँ मैं, जो कि है माँ। आपका नेक्स्ट वर्ड है माँ, तो आपको फटाफट से माँ वर्ड से सॉन्ग लिख करके भेजना है। नेक्स्ट वर्ड इज माँ। तो आइए अब चलते हैं बची हुई राशियों की तरफ, जो कि है धन राशि। तो धन राशि वालों के लिए है कि
1: हाँ जी, और अभी एक शिकायत मिली कि प्लीज मेरा गाना बजा दीजिए। तो धर्मेंद्र जी, प्लीज आप अपना म से लिख करके भेजें, मैं आपके सॉन्ग को ज़रूर से प्ले करके जाऊंगी, क्योंकि ना आपने पहले भी ये गाना लिखा तो ये ज़्यादा मैसेजेस आने के कारण से ऐसा देखिए स्क्रॉल हो जाता है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, है ना। मैं इसीलिए देखो मना कर रही थी, तो कोई बात नहीं, आप म से गाना लिख के भेजें धर्मेंद्र जी। और आशु जी ने भी भेजा है अभी, लेकिन धर्मेंद्र जी आप सॉन्ग लिख करके भेजें म से।
0: तो आइए चलिए बताते हैं धनुराशि वालों के लिए है कि आपका लव पार्टनर जो है वो आज के दिन हंसी मजाक और बेहतरीन यादों के साथ आपके दिन को बहुत ही प्यारा बनाएगा। साथ ही साथ में मन में चल रही सारी हलचल और बातों को आप शेयर कर पाएंगे, जिससे आपके बीच में आपसी जुड़ाव बना रहेगा। अब आते हैं मकर राशि वालों के लिए है कि काम की बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण आज आप चाहकर भी अपने साथी को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो भी थोड़ा समय आप उसके साथ बिताएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। फ़ोन और मैसेज के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहें और अपने रिश्ते में उदासी को बिल्कुल भी ना आने दें। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए है, आपके प्रेम संबंधों में आज एक नयापन आएगा और नई एनर्जी देखने को मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका पार्टनर आपको पूरा पूरा इमोशनल सपोर्ट करेगा। रिश्ते में आया यह ठहराव आपको बहुत सुकून देने वाला है और साथ ही साथ में आपकी लव लाइफ में प्यार की नई शुरुआत हो गई है।
1: जी हो गई है
0: जी। तो बढ़ते हैं लास्ट वाली राशि की तरफ, जो है मीन राशि वालों के लिए कि अपनी दबी हुई भावनाओं को आज अपने पार्टनर के सामने कहने के लिए सबसे अच्छा दिन है। अपनी सच्चाई और सरलता को देखकर साथ ही आपके प्रति आपसी भरोसा और प्यार को और ज़्यादा गहरा होगा। लव लाइफ के लिए हर दिन अनुकूल नहीं होता, इसलिए आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अनुकूल है, यानी कि आप आज के दिन अपनी बातों को कह सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई मुझे तो लगता है मैम सभी के लव राशिफल बहुत ही अच्छे थे।
1: हाँ, इस आज के पूरे राशिफल मतलब बहुत ही बेहतरीन थे। तो चलिए हम लोग बिना ब्रेक के अब फटाफट खेलेंगे गेम, और सभी की राशियों के भी हो गए हैं फटाफट। तो अभी मुझे मिला है धर्मेंद्र जी का सॉन्ग और उसके

जी बिल्कुल, कागज कलम दवादना और अंशिका को दे दिया है मैंने 2 मिनट का ब्रेक, वो आएंगी सीधे आपसे मिलने कॉलर ट्यून में। लेकिन आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड प्रमुख जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं किसी से नाराज वराज नहीं होती हूँ। चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, बट एनीवे ऐसी कोई बात नहीं है, आपका प्रोग्राम है, आप आएँ बातें करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपका जो आप मन है आप सॉन्ग सुनिए बातें करें। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि हम लोग भी आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके आते हैं, है ना, तो बस इसीलिए, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हम मिलेंगे आपसे मंडे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

मौसम कैसा खुमार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम, बहार बन के। और बहार बन के आ गया है आपका अपना पसंदीदा कॉलिंग वाला प्रोग्राम जो कि है कॉल ट्यून गोंडा, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस प्यारे से संगीत वाले सफ़र को जिसमें कि आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें हमें देते हैं और हम आपकी फरमाइशों को आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला फरमाइश आज हमारे पास किसकी है और क्या है। सबसे पहली फरमाइश बताने से पहले बता दूं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर वो भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का सॉन्ग, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो फटाफट से चलते हैं पहली फरमाइश की तरफ, पर उससे पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आपके अपने पसंदीदा शो में आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ जो कि है देवी प्रसाद जी की, और देवी प्रसाद जी को सॉन्ग सुनना है वो बड़ा ही प्यारा है, जिस दिन मैं भुला दूँ जिस दिन तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। तो आइए चलिए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। Stay tuned.

बिल्कुल सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी राजू जी ने। और इससे पहले आपने जो सॉन्ग सुना मैं तेरे नाल खड़ा हूँ तेरे, वो फरमाइश थी साक्षी जी की। आइए अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि होगी रेनू जी की, और रेनू जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी प्रेमनाथ शुक्ला जी के सॉन्ग की। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप बनी रहिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में स्टेडियो।

बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग में निकला वो गड्डी लेकर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी हमारे प्रेमनाथ शुक्ला जी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश है निशा जी की। निशा जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे चांद बाबू जी के सॉन्ग को और उसके बाद बारी होगी मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग की। तो आइए चले सुनते हैं इन प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्यारे प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग तुमसे पहली बार मिले, जो कि है साजन मूवी का। तो आइए चलिए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं, जो कि फरमाइश है चांद बाबूजी की। और इसके बाद हम सुनेंगे मुमताज अंसारी जी के सॉन्ग को, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। और उसके बाद बारी होगी एहसान जी के सॉन्ग को, सॉन्ग की जो कि है 16 बरस की बाली उम्र। तो आइए चलिए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं प्यारे प्यारे।

तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। दीवाना मूवी का ये बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग। और आइए अब बारी है नेक्स्ट फरमाइश की, जो कि है एहसान जी की। और एहसान जी का सॉन्ग है 16 बरस की बाली उम्र। तो आइए चलिए सुनते हैं, और इस सॉन्ग के बाद में बारी होगी इरशाद जी के सॉन्ग की, और इरशाद जी के सॉन्ग के बाद बारी होगी धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग की। तो आइए चलिए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका।

बिल्कुल, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आया ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली हमारी फरमाइश की तरफ, जो कि है शानवी जी की। और शानवी जी का जो सॉन्ग है वो है आपकी याद आए तो दिल क्या करे। आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद में हम सुनेंगे रमेश जी के सॉन्ग को।

करम तू कर मुझ पर बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी रमेश जी ने, मेरा चांद मुझे आया नज़र, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है राकेश जी की, जिन्हें सुनना है सॉन्ग दामिनी ओ मेरी दामिनी। तो आइए सुनते हैं दामिनी मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और इसके बाद में बारी होगी धर्मेश त्रिपाठी जी के सॉन्ग की, जिनका की सॉन्ग बहुत ही प्यारा सा है जन्म जन्म जो साथ निभाए, और उन्होंने डेडिकेट किया है अनोखी जी को। तो आइए चलिए सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

बंधन बन जाओ। बिल्कुल, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी धर्मेश जी ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो की है दुर्गा जी की। और दुर्गा जी को सॉन्ग सुनना है विवाह मूवी का, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, और इसके बाद में हम सुनेंगे फरमाइश जो की है विकास जी की। विकास जी का सॉन्ग भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं और सुनते हैं दुर्गा जी के सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

बड़ी है मस्त मस्त। अभी आपने इंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी विकास जी की। तो आइए अब चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि जुड़े हुए हैं। तो बैकलाइन से मैं शुरू करूंगी और सबसे पहले मैं देख रही हूं जो कि हैं तबिश खान जी। तबिश खान जी और उन्हीं के साथ अनोखी शर्मा हैं हमारे साथ। अनोखी शर्मा जी के साथ धर्मेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, विकास तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगेन, धर्मेश त्रिपाठी जी और विकास तिवारी जी फिर से, और उसके बाद में अनोखी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनोखी जी, प्रमुख कुमार जी, तबिश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। और माफ़ी चाहूँगी कि आज शुरुआत में मैं आप सभी का स्वागत नहीं कर पाई क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा थी। तो आइए अब चलते हैं, हम मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से भी हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसी के साथ नागेश्वर जी अगेन जुड़े हुए हैं, अनोखी शर्मा जी और सो हमारे ये लिसनर्स कुछ, और कमल नयन जी भी हैं जो कि बहुत सारे स्टार्स भेज रहे हैं, हार्ट्स भेज रहे हैं। राजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू टेलर्स, उन्होंने भी हार्ट्स भेजे हैं। अगेन रमेश त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो में जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा। और जाते जाते आप सभी का स्वागत करने के लिए आज मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए लिसनर्स। कल फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट, सॉरी कल नहीं, अब मैं मिलूँगी सीधा आपसे मंडे सुन सहेली में। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहें, जबरदस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपने फेवरेट रेडियो 89.6 FM को। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आयुष श्रीवास्तव।
3: और मैं आयुषी,
2: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा के तहसील तरफगंज के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अयली परसोली सहित आस पास के गाँव में राहत एवं बचाव कार्यो को और अधिक प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से विशेष राहत एवं रेस्क्यू वाहन हनुमान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। यह विशेष वाहन अब बाढ़ के दौरान फंसे हुए लोगों तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाने तथा आवश्यकता अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में पूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर माननीय विधायक तरफगंज तथा माननीय विधायक सदर गोंडा श्री प्रतीक भूषण सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, माननीय MLC मंजू सिंह जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वाहन को हरी झंडी दिखाया। इस विशेष वाहन के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न, पेयजल, दवाइयाँ एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्री शीघ्रता के साथ पहुँच सकेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में भी यह वाहन अत्यंत उपयोगी रहेगा।
3: पूरे डाल करकरा गांव में बुधवार को करकरा तालाब में डूबने से 12 वर्षीय छात्र सुमित की मौत हो गई। सुमित कक्षा 5 में पढ़ता था। माँ रोशनी खेत में धान रोप रही थी, बच्चे को घर पर भेज दिया था, लौटते समय तालाब में वो गिर गया। गुरुवार सुबह उसका शव मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि 84 कोस मार्ग के लिए तालाब अवैध खुदाई हुई थी, लेखपाल ने 2 बार रोका था, फिर भी काम चल रहा था।
2: जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद गोंडा में कोविड के कारण अनाथ हुए एक बालक को करीब 10 लाख रुपए की सहायता चेक के माध्यम से प्रदान की। जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत कोविड के कारण माता पिता दोनों को खो चुके बच्चों के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट कराया गया है। इस वर्ष कनेलगंज विकास खंड क्षेत्र के एक बच्चे के 23 वर्ष पूर्ण होने तथा धनराशि 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। चेक पाकर बालक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि इस योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के रूप में जो सहयोग दिया है, यह भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। इस प्रयास ने आत्मनिर्भर बनने और समाज में एक सार्थक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है।
3: जिला पंचायत सभागार में DM प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में मिशन शक्ति संवाद हुआ। हलधरमऊ ब्लॉक के विद्युत सखियों को थर्मल प्रिंटर दिए गए। ये प्रिंटर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को काम की सुविधा के लिए दिए गए हैं। कार्यक्रम में अच्छी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। DM ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएं।
2: गोंडा में सर्किल रेट का पुनरीक्षण शुरू। 8 अगस्त तक दर्ज कराएं सुझाव व आपत्तियां। 15 अगस्त से लागू होगी नई सर्किल रेट सूची। प्रस्तावित दरों पर मांगे गए जन सुझाव। संपत्तियों की नई मूल्यांकन दर सूची पर जनता से राय। 10 व 12 अगस्त को होगी सुनवाई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जारी किया कार्यक्रम सर्किल रेट संशोधन पर 8 अगस्त तक दे सुझाव। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित दर सूची पर 8 अगस्त 2026 की सायंकाल तक संबंधित कार्यालय मौखिक अथवा लिखित रूप से सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले सुझाव पर आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3: गोंडा जिले में सांपों से खतरा बढ़ा। पिछले एक महीने में सर्पदंश से 5 से ज्यादा लोगों की मौत। सर्पमित्र अरुण बाबा और जयनाथ बंगली ने एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा सांप पकड़े। इनमें 10 अजगर, 40 कोबरा, 50 रसल वाइपर भी थे। सभी को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया और प्रशासन ने सफाई रखने की भी अपील लोगों से की है।
2: जनपद में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सुबह से ही आश्रम और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सिविल लाइन स्थित गायत्री शक्ति पीठ में गुरु पूर्णिमा पर सैकड़ों लोगों ने यज्ञ किया, गुरु दीक्षा करा। यहां चल रहे गायत्री महायज्ञ व देवी भागवत कथा का समापन हुआ। जिला समन्वयक ठाकुर प्रसाद तिवारी, राम तेज मिश्र, प्रकाश नारायण शुक्ला, जवाहरलाल मिश्रा आदि लोगों ने उपस्थिति देकर रूबरू कराया।
3: गोंडा लखनऊ हाईवे पर सकीहा मोड़ के पास तेज वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 54 वर्षीय बबलू की मौत। बबलू ईंट के भट्टे पर मुंशी था, ड्यूटी पे जा रहा था। टक्कर के बाद गंभीर घायल होकर अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी डेरी की थी, चालक फरार हो गया और पुलिस ने सीसीटीवी को भी खंगाला।
2: बीते दिनों जनपद गोंडा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार का अवसर मिला। मेले में कुल 135 अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिया, जिनमें से करीब 97 अभ्यर्थियों का पहले चरण में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जुलाई के तीसरे रोजगार मेले में सिस्का इलेक्ट्रिकल, स्टार ग्रुप व द इंडिया कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। सिस्का इलेक्ट्रिकल ने तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए साक्षात्कार लेकर 16,000 से 20,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन वाले पदों के लिए चयन किया है।
3: दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में गोंडा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। त्रिलोकीनाथ तिवारी और प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। 40 मिनट की नारेबाजी हुई, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।
2: कृषि विकास एवं किसान हितैषी योजनाओं की समीक्षा, सीडीओ गोंडा ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। बता दें कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद की अध्यक्षता में कृषि विभाग से संबंधित आत्मा गवर्निंग बोर्ड तथा किसान उत्पादन संगठन FPO की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, किसानों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय समन्वय को और अधिक सही बनाना तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना रहा। बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं किसान कल्याण से जुड़े प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी तथा गुणवत्ता युक्त बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन, कृषि यंत्रीकरण, फसल विविधीकरण, उद्यानिकी विकास तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों FPO को अधिक सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने, उनके माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर भी विचार विमर्श किया गया है।
3: घाघरा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एल्गिन ब्रिज का जल स्तर बढ़ चुका है। 2.66 लाख क्यूसेफ पानी छोड़ा गया है। तरबगंज करनैलगंज के गांव में बाढ़ का खतरा अब पहले से भी ज्यादा हो गया है। नवाबगंज के दत्तनगर में 10 बीघा जमीन और 2 मकान नदी में समाये, वीडियो हुआ वायरल।
2: ट्रासाइकिल के लिए करें आवेदन। बता दें कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी माधवी पांडे के मुताबिक जनपद के 7 विधानसभा क्षेत्रों में पैर से दिव्यांग करीब 140 छात्राओं को विभाग ट्रासाइकिल देगा। सभी क्षेत्रों में 20-20 आवेदन मांगे गए हैं। छात्रों की उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक और जनपद की मूल निवासी होना चाहिए। वर्तमान में उसका किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन करना अनिवार्य है। संबंधित संस्था अध्यक्ष द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
3: मैनौन के पास नहर कटने से उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ जलमग्न। पानी भरने से छुट्टी करनी पड़ी बच्चों की। जेसीबी भेजी गई, लेकिन तेज बहाव के कारण वो कोई भी उपयोग में नहीं आ सकी। 15 फुट की कटान हो गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आने जाने में दिक्कत हो रही है तथा ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत मरम्मत की मांग की है।
2: जनपद में 264 पात्रों में 28 लोगों की खुली किस्मत। मुख्यमंत्री स्वदेश गोसंवर्धन योजना में स्वदेशी नस्ल की गाय पालने को लेकर गोपालक में जबरदस्त उत्साह दिखा, लेकिन समित लक्ष्य के कारण अधिकांश आवेदकों की उम्मीदें टूट गई हैं। जनपद में मिले 290 आवेदनों में जांच के बाद 264 आवेदक पात्र पाए गए हैं, लेकिन लॉटरी में सिर्फ 28 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका है। विकास भवन सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी दयानंद प्रसाद की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई है।
3: मथुरा चौबे गांव में हर बरसात में हो रहा है जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से बच्चों और लोगों को हो रही है परेशानी। दुकानदारों का कहना है कि कई बार इस पानी भराव से कई हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नाली बन जाए तो ये सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
2: माँ पटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। निदेशक प्रोफेसर बीएन मिश्रा के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम की शुरुआत योग सत्र से हुई। प्रतिभागियों ने योगा अभ्यास कर स्वास्थ्य एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया।
3: तरबगंज डुमरिया डी 2 लेन मार्ग पर नारायणपुर के पास सड़क पर 3 महीने से एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। बारिश में गड्ढे पर पानी भर जाता है जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है इसमें रोज 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फंस जाते हैं। हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। शिव शंकर, मनोज, दिनेश, सुरेंद्र समेत कई ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी में जा करके इसकी मरम्मत की मांग की है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
2: जनपद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सत्र 2026 एवं 27 के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकी आधारित ट्रेडों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मनकापुर राजकीय ITI के प्राचार्य राकेश शुक्ला के मुताबिक संस्था में 8 ट्रेडों की 220 सीटों पर प्रवेश होना है।
3: धान्यपुर थाना क्षेत्र में एक महिला अपने 1 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। सोमवार दोपहर कपड़े सिलवाने के बहाने से वो घर से बाहर निकली और वहां से वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों में तलाश की लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। सास ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा चिंता उस 1 महीने छोटे मासूम बच्चे की है जो माँ के बिना घर पर है। गाँव में इस घटना पर लगातार चर्चा बनी हुई है।
2: के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष शहरी मॉक ड्रिल का हुआ सफल आयोजन। बता दें कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य अग्निकांड, शहरी बाढ़, मकान गिरने तथा अन्य संभावित शहरी आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती रिंकी जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट श्री पंकज वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। फायर एवं स्वास्थ्य विभाग ने बचाव कार्यों का किया सजीव प्रदर्शन। कार्यक्रम के दौरान फायर विभाग के अधिकारी श्री नितेश शुक्ला ने अग्निकांड की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानी एवं आग पर नियंत्रण पाने की तकनीकों तथा सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में घबराने की बजाय सूझबूझ और त्वरित सूचना देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया गया संदेश।
3: मुंडेरवा माफी स्थित पंडित कृपाल सहकारी समिति अक्सर बंद रहती है। इससे दर्जनों गांव के किसान को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। गन्ना, धान और अन्य फसलों के लिए किसानों को समय से यूरिया नहीं मिल पा रहा है। मुंडेरवा, चिलबिला समेत कई गांवों में किसानों ने बताया कि समिति सचिव अक्सर मिलते ही नहीं हैं। सचिव राधेश्याम तिवारी का कहना है कि खाद आती है तभी वितरण उसका हो जाता है लेकिन किसानों का कहना है कि समय पर खाद न मिलने से उनकी फसल भी खराब हो रही है।
2: जिला प्रोबेशन अधिकारी के तत्वावधान में महिला कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर पर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवजात बच्ची की मां के हाथ से केक काट कर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बेटियां आंगन की शोभा हैं, उनको उचित शिक्षा देकर योग बनाया जा सकता है। लैंगिक असमानता दूर करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर ने बताया कि बेटा व बेटी में असमानता नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें समान भाव से शिक्षा व प्यार देना चाहिए। कन्या जन्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना। श्री आर ने बताया कि विभाग द्वारा बेटियों के उत्थान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: गोंडा बलरामपुर राजमार्ग के पास जयनगरा स्थित धर्मकांटा के पास रोज ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है। खाद, सीमेंट, गेहूं से लदे ट्रकों के कारण सड़क दोनों तरफ से जाम हो जाती है। इसमें स्कूली वाहन, एम्बुलेंस और आम लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। रामू यादव, सुनील वर्मा, राजेश त्रिपाठी समेत स्थानीय लोगों ने कहा है कि समस्या आजकल रोज की हो गई है। ये ट्रक चालकों ने भी कहा है कि धर्मकांटा में देरी के कारण लाइन लग जाती है।
2: जनपद में ड्यूटी से नदारद मिले 6 सफाई कर्मचारी। बता दें कि पंचायत विभाग ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 6 सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई किया है। जिला पंचायत राजाधिकारी JD जैन ने बिना सूचना कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर एक सफाई कर्मचारी का एक दिन का वेतन रोक दिया है, जबकि 5 अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
3: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोंडा बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन ने संयुक्त सम्मान समारोह किया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और गुरुजनों को माला पहनाई गई और अंगवस्त्र भी दिए गए। अंगवस्त्र देकर उन्हें लोगों ने सम्मानित किया। बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी और सिविल बार अध्यक्ष विजय तिवारी ने कहा है कि गुरु ही शिष्य को ज्ञान और न्याय का मार्ग दिखाते हैं।
2: जनपद में गोरखधाम एक्सप्रेस में यात्री की हुई मौत। गोरखधाम एक्सप्रेस में सफर के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक यात्री की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन RPF व GRP की टीम गोंडा स्टेशन पहुंची। शव को ट्रेन से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
3: गोंडा लखनऊ हाईवे पर देर रात 6 फीट लंबा अजगर का बच्चा निगल जाने से हड़कंप मच गया। वाहन तेज रफ्तार में थे, हादसे का खतरा भी वहां पर बना हुआ था। स्थानीय ग्रामीणों ने लाठी की मदद से अजगर को बोरे में डालकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लोगों ने वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले यहां पर 10 फीट लंबा अजगर भी देखा गया था। वन विभाग ने तब रेस्क्यू किया था, लेकिन अब यहां पे फिर से अजगर देखने का मामला सामने आ जा रहा है।
2: प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालय के शिक्षा मित्र व अन्वेषक को अधिक दिया गया मानदेय समायोजित किया जाएगा। बता दें कि जून में 15 दिन गर्मी की छुट्टी रही, लेकिन उन्हें पूरे महीने का मानदेय जारी कर दिया गया था। अब इसे जुलाई के मानदेय में समायोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त में जो मानदेय जारी होगा वह 15 दिनों का काट कर आएगा। UP में 1.48 लाख शिक्षा मित्रों को 18,000 रूपए मासिक व 24,000 रूपए से अधिक अनुदेशकों को 17,000 रूपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब इनके मानदेय में कटौती की जाएगी।
3: गोंडा के मनकापुर केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। बता दें कि झांसी में हुई नेशनल स्पोर्ट मीट में संतोष यादव ने बॉक्सिंग में सिल्वर और शिवा वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों वाराणसी टीम से खेले थे और शानदार प्रदर्शन भी किया। इस उपलब्धि में पूरे स्कूल और क्षेत्र में खुशी फैल गई है। प्राचार्य और शिक्षकों ने बच्चों को बधाई दी है। स्कूल प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि ये छात्र आगे भी जिले का नाम रोशन करेंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की संयुक्त बैठक बुधवार को हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही दोनों मांग पत्रों का 2 वर्षीय प्रांतीय सम्मेलन व महाधिवेशन 22 और 23 अगस्त 2026 को कराने पर सहमति बनी। महाअधिवेशन के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए SP सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: नमस्कार, सांचे विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मोनिका। सांचे विरासत के माध्यम से हम लॉस्ट इंडियन फोक आर्ट्स को एक बार फिर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया के महानतम चित्रकारों में शामिल स्विस जर्मन चित्रकार पॉल क्ली ने कला पर एक बातचीत में कहा था कि हम में अभी भी अंतिम शक्ति की कमी है, क्योंकि हमें संपोषित करने वाली कोई संस्कृति नहीं है। पॉल क्ली के वक्तव्य की पृष्ठभूमि अलग थी, उसका संदर्भ अलग था। बावजूद इसके उनका वक्तव्य न केवल भारतीय आधुनिक कलाओं बल्कि लोक कलाओं की वर्तमान स्थिति पर भी सटीक बैठता है। बिहार की मंजूषा कला भी उनमें से एक है। मंजूषा पेंटिंग्स। मंजूषा पेंटिंग भारत की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। इस कला का विशेष प्रभाव प्रदेश की पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है, जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा कला अंग प्रदेश की एक बहुत बड़ी विरासतों में से एक है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की तरह मंजूषा कला भी है। इस कला को भी कपड़ों पर उकेरा जाता है। मंजूषा कला भारत की एक ऐसी अनोखी लोक कला है जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा अंग प्रदेश की बहुत बड़ी विरासतों में से एक। वैदिक इतिहासकारों की माने तो मंजूषा कला पर सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार ये कला प्राचीन अंग महाजनपद को इतिहास को उकेरती है। साथ ही ये पेंटिंग्स बिहुला विषहरी की कहानी को भी दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग्स एक ऐसी लोक कला है जो भारत के अंग क्षेत्र में विकसित हुई। इन्हें अक्सर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। उनके चमकीले रंग और उत्त कारीगरी चित्रों को अलग बनाती है। मंजूषा पेंटिंग बेहद प्राचीन कालीन पेंटिंग है जो लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इस कला को वैश्विक पहचान भी मिली है। इस पेंटिंग को GI टैग तो मिला, फिर भी इस पेंटिंग को विशेष पहचान न मिल पाई। मंजूषा आर्ट इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्नेक पेंटिंग्स बाय फॉरेनर्स एज स्वर्लिंग स्नेक्स इन द आर्ट डिपिक्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इन बिहुला'स टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। मंजूषा आर्ट इज अ मैग्निफिशिएंट सागा ऑफ हाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अंग महाजनपद। अगर हम मंजूषा कला के स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो मंजूषा अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस कला रूप का पता 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता था, लेकिन 1931 के आसपास यानी करीब 1931 से 1948 के बीच के वर्षों में ये कला फली फूली। मंजूषा पेंटिंग की उत्पत्ति प्राचीन अंग प्रदेश से हुई जिसमें वर्तमान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मंजूषा कला की शुरुआत भागलपुर क्षेत्र के आसपास मौजूद वनस्पति और जीव के चित्रण के रूप में हुई थी। विहुला विषहरी कहानी ये भी कहते हैं। ये कहानी बताती है कि सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए जो आयुर्वेद के महत्व को छूता है। पहले इस कला का निर्माण केवल दो परिवारों द्वारा किया जाता था। कुंभकार समुदाय बर्तन या कलश बनाते थे और उन्हें मंजूषा चित्रों से सजाते थे, जबकि मालाकार मंजूषा संरचनाएं बनाते थे और उन्हें मंजूषा रूपांकनों से सजाते

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ, संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
10: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्यार भरा सलाम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद योर आरजे बीना इन योर फेवरेट शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। जी हाँ, जो महसूस कर रहे हो उसी के साथ कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आरजे बीना तो हर दिल के साथ अपनी ट्यून में ला ही लेती है। और खास बात यह है कि आज की शाम थोड़ी गुलाबी होने वाली है, थोड़ी शरारती होने वाली है और हम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि आज हम मनाने वाले हैं नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे। भाई, गर्लफ्रेंड बनाई क्या? ऐसा सवाल कोई अगर पूछे तो कितना मज़ा आए। कभी मम्मी पापा ऐसे पूछें कि अभी तक तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कैसे लड़के हो, तो समझ लेना कि आपके दिन अच्छे आ गए हैं। अगर आपके जीवन में गर्लफ्रेंड ना होते हुए भी कोई आपके लिए एप्लीकेशन डाल दे, I want to be your girlfriend, तो समझ लीजिए दिन अच्छे आ गए हैं। और अगर आपकी एक गर्लफ्रेंड चली जाए और दूसरी ये जानते हुए भी आ जाए कि आपकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिन आ गए हैं। तो फिलहाल के लिए घबराइए मत, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी चैन से बैठिए, आज का शो आपके लिए ही है। क्योंकि जिनकी गर्लफ्रेंड है उन्हें तो भाई गिफ्ट की टेंशन है, और जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है उनकी बनेगी गर्लफ्रेंड ना कि टेंशन। मतलब क्या आप लोग, मतलब टेंशन बोल दिया तो आप लोग टेंशन पे अटक गए ना, ये नहीं सोचा कि गर्लफ्रेंड भी है, फ़ोन से बात करने के लिए भी कोई है, रिचार्ज करवाने के लिए भी कोई है। ऐसा नहीं आजकल गर्लफ्रेंडें रिचार्ज करती भी हैं, ये बात मत बोलना कि लड़कियाँ रिचार्ज कराती हैं ना, लड़कियाँ रिचार्ज करती भी हैं अपना और अपने बॉयफ्रेंड का। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। वैसे आजकल प्यार की सबसे बड़ी निशानी क्या है, आपको क्या लगता है? ऑनलाइन देखकर रिप्लाई का इंतज़ार करना। जी हाँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ऑनलाइन देख के आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रही है, तो समझ लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बेहद प्यार करती है। और अगर आपका रिप्लाई सिर्फ हूँ मैं आ रहा है आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ से, तो समझ लीजिए कि आपके रोमांस का अक्षर अधूरा हो चुका है। फिलहाल आगे बातें करेंगे और आप लोगों से तब तक के लिए एक सवाल मैं पूछ के जाती हूँ कि डॉक्टर लव के आने से पहले फटाफट से सब लोग अपनी अपनी कमेंट कर दो, किसकी किसकी गर्लफ्रेंड है और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र में नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ, मेरी तो उम्र ही नहीं है। तो भाई ये गाना तो सुना ही होगा, दांत से रेशमी डोर कटते नहीं। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके भी दिन है, आप भी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। और भाई फेसबुक पे तो सभी गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हैं, कोई जाहिर ही ऐसा हो जिसने गर्लफ्रेंड ना बनाई हो, नाम बदल के फेस बदल के। कोई बात नहीं यार, देखो यही तो ज़िंदगी है, जी लो जी भर के। तभी तो बनाया है आपके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म, टिंडर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, कि आप गर्लफ्रेंड के लिए मतलब अप्रोच करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। यू कैन गो एंड बैंग देयर। कुछ लोग तो भाई shaadi.com पे गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पता है आपको? पता है नहीं पता है ना? तो चलिए अभी हम लोग एक प्यारी सी प्लेलिस्ट सुनते हैं और उसको इन्जॉय करते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर लव का भी इंतज़ार ही कर लिया जाए, हो सकता है वो भी अपने किसी गर्लफ्रेंड को सेट करने गए, क्योंकि उनको तो पता है कि गर्लफ्रेंड बनाई और शादी कर ली, भाई सब सेट ही सेट है उनका। भाई कोई बात नहीं, आपकी भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, आपकी भी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। अगर नहीं है तो आज नंबर आपको डायल करने के लिए मिला है ना, 6393331642 9, आप ही का नंबर है, डायल करिए और गर्लफ्रेंड के लिए अप्लाई करिए। हैप्पी नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे। यार इतना स्पेशल डे, आहा सुन के अच्छी वाइब आ रही है, आहा बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ। तब तक के लिए कहीं मत जाना, बजा दे रहे 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं कुछ बेहतर, तो डेफिनेटली आरजे बीना के साथ सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। स्टे ट्यून्ड।

ये बताइए कि कोई कोई ये बताइए कि इतनी तारीफें कैसे कर सकता है कर सकता है। अगर उसके पास गर्लफ्रेंड हो तो वो डेफिनेटली इतनी तारीफें करके कवि, गज़लकार, गीतकार बन सकता है। इसीलिए तो ये गाने बने हैं। गुड इवनिंग तबिश, कैसे हैं?

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन। कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है, अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है, यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
5: बालकों से अनुरोध।

0: सो डॉक्टर लव आ चुके हैं अपने कार्य को अंजाम देके। क्यों डॉक्टर लव?
1: जी बिल्कुल एकदम अंजाम देकर आ रहे।
0: सो सबसे पहले तो हमारे साथ देखिए चैट रूम में अनिल जी कैसे हैं। शुभ संध्या अनिल जी। धर्मेंद्र जी ने मार फूलों की बरसात कर दी है भाई। फूलों की नहीं, यहाँ बूंदों की जरूरत है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, क्या लाइन थी?
1: काली मेघा
0: नहीं, पानी तो बरसाओ बूंदों की, वो तो नहीं कुछ किसी के तलवार चलाओ, मुझे लिरिक्स भूल गई है। वो तो लगा मूवी में जाके पता करना पड़ेगा सलमान से, अपने कौन भाई, आमिर खान भाई से। और हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, संगीत बहुत अच्छा चल रहा है, क्या बात है। तबिश खान है हमारे साथ, धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ, पार्थ है हमारे साथ। क्या गजब के नाम है आप लोग के, मतलब नाम भी क्या कहने। तो जैसा कि ये सब वो लोग हैं जिनकी प्रेमिकाएं हैं और आज राष्ट्रीय प्रेमिका दिवस है, गर्लफ्रेंड्स डे, नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे। तो जैसा कि आपने बताया था आज वहाँ पे क्या कहते हैं क्लिनिक पे ही, कि आज आप जाएंगे एक गुलाब लेके खड़े हो जाएंगे राब्ता करने के लिए। अगर आपका किसी से राब्ता बैठेगा तो ठीक, नहीं तो आ जाएंगे। मतलब 30 को 31 बनाने की तैयारी थी, लेकिन क्या करें मामला सेट नहीं हुआ।
1: नहीं, मामला सेट ये हुआ कि तीन इकट्ठे आ गए, हम समझ नहीं पाए कि किसको और गुलाब एक। प्रॉब्लम यहाँ
0: कोई बात नहीं।
1: मैंने आपसे कहा था कंपाउंडर साहिबा कि कम से कम 5 गुलाब खरीद लाइए, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने कहा भाई एक ही पर्याप्त है।
0: एक बात ये बताइए, मतलब एक आदमी है, एक आदमी है जिसको भूख लगी
1: है
0: और 5-6-10 आदमी आ रहे हैं, उनको भी भूख लगी,
1: दिमाग लगाए।
0: एक आदमी मेरे पास, मेरे मतलब या जो क्या कहते हैं अन्नपूर्णा भंडार वाला है, उसके पास क्या कहते हैं 10 रोटियां। वो 10 रोटियां एक को खिलाए कि दो दो ठो पांचों को देते। तो वैसे ही गुलाब की दुकान पे भी लिमिटेड गुलाब है और आप ही को अकेले नहीं देना है।
1: अच्छा ये बात है, तो लिमिटेड गुलाब है तो आपको गुलाब देना नहीं चाहिए था, आपने कहा ले करके खड़े हो।
0: और आजकल थोड़ा सा मतलब देसी गुलाब की खेती भी कम चली, नहीं तो हम देसी वाला भी 2-4 पकड़ के ले आए।
1: हाँ वही बात है, लेकिन
0: वही जो बिना खुशबू वाला चलता है आजकल वही लड़कियां पसंद करती हैं।
1: अच्छा ये बात है, ये हमको पता नहीं था। अच्छा तो इसको लगता है हमारे वाले में आपने परफ्यूम छिड़क दिया था।
0: ये बताइए वैलेंटाइन डे जो आता है, भले आप उसको बेलन से जोड़े या टाई से जोड़े, जिससे मर्जी जुड़िए, लेकिन गुलाब की दुकान पे गुलाब वही बिकता है जो लगता है कि हाँ गुलाब है।
1: गुलाब है
0: आपके क्यारे में और मेरे क्यारे में जो गुलाब होता है वो सिर्फ झड़ने के लिए बना होता है।
1: हाँ, अच्छा ये बात है।
0: ये वाले गुलाब जो है वैलेंटाइन वाले वो झड़ते नहीं है।
1: अच्छा,
0: आप ऐसे रख दीजिएगा, बहुत फेविक्विक का जोड़ रहता है, उनकी पंखुड़ियां गिरबे नहीं करती जल्दी।
1: अरे वाह, मतलब एनालिसिस किया है आपने।
0: अरे बॉटनी से एमएससी ऐसे थोड़े कर लिया है।
1: सब बॉटनी से एमएससी किया है तो कहीं आपने जूलॉजी नहीं किया है? तो आप
0: जूलॉजी से मतलब ऐसा नहीं, जूलॉजी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे जीवों का मतलब अध्ययन किया है, आंतरिक अध्ययन किया है, एनाटॉमी पढ़ा है, कीड़ फाड़ की है, उनकी नर्वस सिस्टम पढ़ा है। उनका नर्वस सिस्टम आप किसी कीमत पे देखना पसंद भी नहीं करेंगे, उसका भी नर्वस सिस्टम निकाल के चिथड़े उड़ा के देख लिया है। गुड इवनिंग सबलू सावंत जी, कैसे हैं आप जनाब? आजकल बिहार विराज रहे हैं।
1: हाँ, बिहार विराज रहे हैं। ये बिहार इनको विराजना नहीं चाहिए।
0: तो सबसे पहला सवाल आज का, आज की शाम का, आज की शाम को जिंदा रखने वाला सवाल आपके लिए ये है,
1: हमारे लिए,
0: कि गर्लफ्रेंड की परिभाषा क्या है जनाब?
1: अच्छा मतलब
0: हुम वी कॉल गर्लफ्रेंड और प्रेमिका,
1: मतलब हम किसे गर्लफ्रेंड कह सकते हैं
0: या कह सकते हैं? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गर्लफ्रेंड?
1: व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्लफ्रेंड?
0: क्योंकि गर्लफ्रेंड क्या है इससे किसी को मतलब नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मेरी वाली जो है वो गर्लफ्रेंड है या मेरा खाली बैंक बैलेंस खाली कर रही है। लड़कों को ऐसे मतलब डाउट रहते, मैं तो मन की बातें पढ़ने का प्रयास कर रही हूं।
1: अच्छा ये बात है, मतलब किसको हम गर्लफ्रेंड कहेंगे?
0: हां
1: हां, तो पहली चीज तो गर्लफ्रेंड होने के लिए उसका गर्ल होना आवश्यक है।
0: वाह क्या बात है, इस बात पे तो किसी ने गौर ही नहीं फरमाया।
1: हाँ भाई, तो सबसे जरूरी बात यह है गर्लफ्रेंड होने के लिए कि पहले वो गर्ल हो। अब अगर वो गर्ल कैसे हो?
0: देखिए अभाव इस प्रकार है कि आजकल गर्लफ्रेंड की जगह बॉयफ्रेंड को ही गर्लफ्रेंड बना के काम चलाया जा रहा
1: है। यही मैं कह रहा हूँ कि पहले तय कर लीजिए कि मतलब वो गर्ल है या नहीं है।
0: कोई तय कर कैसे ले?
1: अब तय कैसे किया जाए
0: भाई, जिसको नहीं मिल रही है गर्लफ्रेंड।
1: हाँ, उसके लिए उपचार है।
0: परी नहीं तो सड़ी ही परी है।
1: सड़ी ही परी नहीं, हम तो सोचते ऐसा ना हो कुछ दिन बाद पला भी होने लगे। अभी पापा की परी सुना है, पापा का पला नहीं सुना है।
0: क्या आपने क्या पढ़ा? मतलब अंग्रेजी के ज्ञाता भी बनते हैं, कहते हैं हमने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है।
1: हाँ।
0: ये बताइए, मस्कुलिन फेमिनिन हमने पढ़ा।
1: हाँ।
0: लेकिन परी का नहीं पढ़ा।
1: परी का नहीं पढ़ा? नहीं, परी का पढ़ा, फेरी का, एंजल।
0: एंजल तो यहाँ लड़कियों के साथ एंजल प्रिया मिलती रहती है फेसबुक पे।
1: तो नहीं, अब देखिए अब उनके कम जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने नहीं पढ़ा ऑक्सफोर्ड से।
0: काहे आधे ज्यादा जितने लड़के दिख रहे हैं इनके फेसबुक की आईडी में इनकी सहेली कोई एंजल आकांक्षा, एंजल प्रिया, एंजल पूजा, एंजल ऐसे करके होंगे। हाँ, हो सकता है एंजल बीना भी हो,
1: हो सकता है किसी का नाम हो वैसे हमने।
0: लेकिन क्यों कोई एंजल? मैंने नहीं देखा कि एंजल धर्मेंद्र हो या एंजल अनिल हो, ऐसा तो नहीं देखा। आपने गलत पढ़ा है।
1: अच्छा, इसका मतलब
0: पर्यायवाची है परी का?
1: नहीं,

0: करिए, क्या लिसनर्स आपने कभी देखा है कि एंजल राहुल आपके फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे? मैंने तो यही देखा है, एंजल प्रिया, एंजल आकांक्षा, एंजल पूजा, एंजल बीना, एंजल फलाना धकाना। लड़कियां मिलेंगी, लड़के नहीं मिलेंगे। आपने पढ़ाया नहीं या तो मतलब आप जैसे, मतलब आप जैसे मास्टर हो या डॉक्टर हो, आप लोगों ने मतलब आज तो ये तो कहो मैंने सवाल कर लिया,
1: मैं तो सवाल और इतना बड़ा सवाल कर लिया,
0: मुझे नहीं पता था एंजल फीमेल को बोलते हैं। हम सोचते हैं एंजल लड़की है,
1: नहीं एंजल मेल को
0: सब कहते हैं, एंजल आएगी,
1: फेरी आएगी, एंजल कहाँ बोलते हैं।
0: मैंने तो नहीं, आप जैसे आपको जानकारी रही होगी, हो सकता है
1: जानकारी,
0: देखिए अमेरिका अमेरिका में चलता होगा, इंडिया में एंजल अभी भी लड़कियों को ही कहा जाएगा। मेरी एक सहेली का ही नाम था एंजल।
1: अच्छा,
0: क्रिश्चियन थी हाँ? तो उसका नाम एंजल था।
1: हाँ तो फरिश्ता रही होगी,
0: फरिश्ती
1: कोई वर्ड ही नहीं होता।
0: तो ये क्या बात हुई, हमने ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं।
1: कंफ्यूज क्या कर रहे हैं,
0: वी आर कंफ्यूजिंग विद दिस कॉन्सेप्ट।
1: अच्छा, यू आर कंफ्यूजिंग है।
0: यस हमारे कान में और दिमाग में दोनों में खुजली होने लगी इस एंजल शब्द से। डिलीट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, अपनी मेमोरी में पीछे जाना पड़ेगा। एनीवे आप तो बता रहे थे कि हाँ, क्या गर्लफ्रेंड के गुण दुर्गुण?
1: हाँ, तो पहले जो है
0: गुण,
1: हाँ गुण जान लीजिए। जब कभी भी आपको ये चेक करना हो कि वो गर्ल है या नहीं है, तो सामने गाय को लाकर खड़ा कर दीजिए। मतलब लड़की है आप जिसको गर्लफ्रेंड,
0: आप एक्सपेरिमेंट ना बताइए, आप गुण बताइए।
1: नहीं, गुण हम गुण ही बता रहे हैं, कैसे पहचाने कि भाई सबसे पहले तो दिमाग से पहचाना जाएगा, तो पहले दिमाग की जांच कर लेनी चाहिए।
0: सबलू जी कह रहे हैं कि सच्चा प्यार किसी को नसीब में नहीं हुआ है आज तक, लेकिन आजकल का प्यार जो है टाइम पास है।
1: जी बिल्कुल, ये बात
0: आप
1: तो
0: गुण बताइए, हम तब तक जरा पानी पी लेते हैं।
1: नहीं आप पानी पी लीजिए,
0: क्योंकि गुड़ खा लिया ना।
1: नहीं गुड़ आपने खा लिया, बताइए अब इनको कौन समझाए, हमारी कंपाउंडर साहिबा है, अब इनसे हम कैसे कह दें कि एंजल और जो है ये फेरी, ये क्या मामला बड़ा गड़बड़ है। आज तो राष्ट्रीय जो है गर्लफ्रेंड दिवस है, नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे, मतलब ऐसा भी दिन हो सकता है, सोचिए बताइए। अभी तक हम लोग अपने ज़माने में राष्ट्रीय पर्व जानते थे, धार्मिक पर्व जानते थे, अब ये नए नए पर्व जुड़ते हुए चले जा रहे हैं कि मतलब गर्लफ्रेंड डे, फिर बॉयफ्रेंड डे।
0: अच्छा ये बताइए, गर्लफ्रेंड को लेके दुख किसको ज्यादा हो सकता है?
1: बॉयफ्रेंड को
0: ऑफ कोर्स, क्योंकि लड़कियों को तो गर्लफ्रेंड मिल ही जाती है आराम से,
1: बड़े आराम से। मतलब जब तक ईश्वर आपको सुखी रखना चाहता है, तब तक आपको गर्लफ्रेंड नहीं देता है।
0: आप गलत फहमी में जी रहे हैं महाराज।
1: अच्छा, तो खुश फहमी बता,
0: उन लड़कों से पूछिए जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है वो लड़के।
1: अच्छा,
0: आप क्या जाने। माँ बाप भी आजकल ताने मारने लगे, जेन जी के जो माँ बाप है, एक जेन जी है और कौन सी अल्फा,
1: जेन अल्फा,
0: जेन अल्फा चल रही है, अल्फा और बीटा गामा सबके हम लोग की
1: बीटा वाला भी टाइम नहीं है बीटा,
0: बाकी अल्फा और ये जेन जी वालों के पेरेंट्स धिक्कारने लगे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनको एक टाइम खाना नहीं मिलता है। क्या यार तुम किसी लायक नहीं, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड नहीं है।
1: अच्छा,
0: ये वाला हाल है। पूछ लीजिए इसी चैट रूम में भरी सभा में आप सवाल उठा सकते हैं।
1: पास हम सवाल उठा रहे हैं कि कौन से ऐसे हमारे श्रोता है जिनको उनके माँ बाप धिक्कारते हैं कि लानत है तुम पर, तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है।
0: तो चलिए पहला कॉल देखते हैं किसका।
1: जी
0: हेलो,
2: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, श्री देवी प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं श्री देवी जी?
2: हम अच्छे हैं, आप दोनों लोग कैसे हैं, डॉक्टर लोग?
0: ठीक है, आज सवाल हम आपसे करेंगे, ये बताइए आपके पास गर्लफ्रेंड है?
2: पहले बताइए टॉपिक कौन सा चल रहा है, तब हम बताएंगे।
0: आज राष्ट्रीय गर्लफ्रेंड दिवस है, उसी उपलक्ष में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका गर्लफ्रेंड है कि नहीं।
2: पहले तो थी, अब तो इस समय ज्यादा दिन हो गया किसी से बात हुआ नहीं गर्लफ्रेंड से, तो क्या बताए कि है कि नहीं है।
0: पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही जुदा।
2: लगभग अब

0: चार महीना एक साल पहले थी,
1: तीन चार महीना के
0: उसके बाद में छोड़ दिया था।
1: किसने? उसने की आपने?
0: जी
1: आपने छोड़ दिया था, उसने छोड़ दिया था।
0: आप समझ लीजिए दोनों में तालमेल गड़बड़ हो गया, मैंने छोड़ दिया।
1: हो गया, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से हम थे गुजरे। क्या बात, कोई बात नहीं,
0: मैंने बता दिया एक सैड वर्जन गा के।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: तेरे ही गलियों में रखेंगे ना कदम आज के बाद। तो मैंने ऐसा ही किया।
1: ऐसा नहीं है ऐसे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, फिर आज के बाद रखेंगे, आज नहीं रखेंगे।
0: नहीं रखेंगे आज के बाद रखेंगे।
1: आपके जिगर कलेजे में और दिमाग में, तीनों में पूछ रही हूँ, सवाल है कोई आज?
0: सवाल?
1: लेकिन
0: सवाल तो हमारे पास में तो कोई नहीं है, बस यही है कि अब गर्लफ्रेंड बनेगी तो बनाएंगे कहीं पर।
1: अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही, ये दुख है आपको?
0: जी
1: डॉक्टर साहब कुछ दीजिए इनको,
2: कुछ दें आप
1: हिमगोली, हजमोला, खट्टा मीठा कुछ दीजिए।
2: दीजिए मतलब आपको गर्लफ्रेंड बनाना आवश्यक है?
0: जी गर्लफ्रेंड की आवश्यकता है।
1: समाज में इज्जत नहीं है, आपके पास चार बीघा खेत ना हो चलेगा, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप समझ लीजिए समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये जान लीजिए। जमाना
0: ये बात स्पष्ट आप कह रही है।
1: ये मैं कह नहीं रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। अगर मैं कहती तो बात तो सही थी, लेकिन ये मैं सुन रही हूँ। आस पास लोग अब जलील करने लगे हैं लड़कों को कि भाई तो हर गर्लफ्रेंड नहीं है, बड़ी बेइज्जती।
0: हाँ ये तो बात है, बेइज्जती करते हैं।
1: देखे
2: तो मतलब आपकी हो गई?
0: हमारी अभी कहाँ गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन ही नहीं पा रही है। आप बताएंगे उपाय तो बन जाएगी, तो बन जाएगी।
2: हेलो
0: जी,
2: आज शनिवार है।
1: वाह क्या दिन,
2: समझ पा रहे हैं?
0: जी
2: आज शनिवार है ना?
0: हाँ शनिवार है।
2: 2 लीटर सरसों का तेल खरीदिए।
0: 2 लीटर सरसों का तेल कि 2 किलो?
2: 2 लीटर।
0: लीटर,
2: लीटर।
0: अच्छा एक डब्बा में हो जाएगा जो मिलेगा।
2: 2 लीटर
1: बैल कोल्हू वाला,
2: बैल कोल्हू रविंद्रा जो कुछ भी आप खरीदिए,
1: नहीं तो हमारे पास
0: रविंद्रा चलेगा।
1: हमारे पास एक जुगाड़ है, आप चाहिए कि नहीं आप बताइए तो हम बताएं। 220 रुपए लीटर सरसों का तेल है, 440 रुपए का अभी चूना लगावा देंगे हम आपको, आइडिया बता रहे हैं, सुनेंगे?
0: जी आइडिया बताइए आप।
1: आज गोंडा में के गोंडा शहर में नहीं ज्यादा तो मेरी इंद्रियां जो बता पा रही हैं 10 से ज्यादा शनि मंदिर हैं। सब तेल चढ़ाने जाते हैं, आप तेल उठाने चले जाइए। एक एक गिलासा अगर सब जगह से उठाएंगे तो आपका 2 लीटर हो जाएगा।
0: 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगा अगर एक एक गिलासा उठाएंगे तो?
1: अरे मान लीजिए अब हर जगह जाने की हिम्मत रखे हैं, जाइए घूमिए तब
2: हमें। नहीं, जहाँ 2 लीटर पूरा हो जाए वहीं से लोग,
1: जहाँ 2 लीटर हो जाए वहीं पे काम तमाम।
0: किसी भी चीज से हिम्मत हारने से काम थोड़े बनेगा।
1: और क्या, देखो 440 वोल्ट का झटका लगे वो ठीक है, लेकिन 440 रुपए का झटका लगे वो नहीं ठीक है।
0: वो नहीं ठीक है, ये बात सही कह रही हैं आप।
2: तो बस आप फिलहाल तुरंत निकलिए और जहाँ जहाँ तेल चढ़ाया जा रहा हो वहाँ वहाँ से बटोल लीजिए, और बटोलने के पश्चात 2 लीटर तेल को अपने मूड में सुखवा लीजिए, इतना मालिश कीजिए कि सुखा जाए।
1: ऐसे तनी तनी डालिएगा, थोड़ा डालेंगे तो पेट के अंदर पूरा तेल सिझ जाएगा,
2: चला जाएगा
0: जी।
2: चार चार बूंद नाक के अंदर
0: डालिए, क्या होगा?
2: फिर कान में डालिए, मतलब कहीं भी डालिए, लेकिन 2 लीटर तेल आपके शरीर में खप जाए।
0: मतलब 2 लीटर तेल खपत करना है,
2: खपत करना है आपकी बॉडी को,
1: आपके शरीर के अंदर जाना।
2: अब आप पी लीजिए,
1: मालिश नहीं करनी है शरीर में,
2: अंदर जाना।
1: आप जैसे नाक के थ्रू सुरक सकते हैं, कान के थ्रू पी सकते हैं,
0: मुंह के द्वारा,
1: और बाकी मुंह से तो आप जितना पाए
2: उतना। बस खाली 2 लीटर आज पीकर देखिए, अगले शनिवार तक आपको,
1: अगले शनिवार तक भगवान ने चाहा, शनिदेव ने चाहा तो एक नहीं 2 गर्लफ्रेंड होंगे, भगवान ने चाहा। बोलो शनि
0: गर्लफ्रेंड।
2: जय
1: भगवान ने चाहा तो एक नहीं तो दो गर्लफ्रेंड तो हो ही जाएंगे।
0: दो हो जाएगी,
1: इसीलिए दो लीटर, जैसे कहते हैं ना कि एक से भले दो, इसलिए डॉक्टर लब ने वैसे एक लीटर ही बताते हैं, लेकिन जैसे कि आपकी आवश्यकता बहुत अर्जेंट में है, भी आपके पास प्लेटफॉर्म पे एक भी गर्लफ्रेंड आपके पास नहीं है, वैसे किसी के पास होती है लेकिन धोखेबाज होती है या जाने वाली होती है या शादी तय हो गई होती, तो उसके लिए एक लीटर वाला देता देते हैं, लेकिन जैसे आपके पास
0: एक छोरे का तो शादी तय हो गई, हो ही गई।
1: शादी हुई कि नहीं अभी?
0: इसी महीने में था शादी, जुलाई में
1: बारात गए थे, न्योता लिखवाए थे,
0: अब तो आज अगस्त लग गया है।
1: हाँ चलिए कोई बात नहीं, शादी तो होती रहेगी, भगवान ने चाहा तो अगले अगस्त तक आपके भी लाल गोपाल होंगे।
0: जी एक का छोड़ के दुई का धावे।
1: तो भाई देवी प्रसाद जी की समस्या का तो समाधान मिल गया, और साथ ही देखिए मैंने सहयोग भी किया, ए ना कहते ना हींग लगे ना
2: फिटकरी रंग चोखा।
1: आहा हा क्या बात है, तो रंग को चोखा किया जाए और अगले कॉल को ऑन एयर कर दिया जाए, देखते हैं किसकी आवाज है। गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
3: निशा जी।
1: अरे निशा कैसी हैं आप?
3: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, क्या पूछ रही थी दर्शन के बारे में?
1: किसके बारे में?
3: आप गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी किसी से?
1: आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं ये बताइए।
3: किसके पास?
1: आपके पास निशा जी, ऐसा थोड़े कि लड़के ही गर्लफ्रेंड हो जाते हैं।
3: गर्लफ्रेंड है लेकिन कॉल उठाते नहीं है।
1: कॉल उठाती नहीं, तो इसके लिए डॉक्टर लव आपके पास सुझाव के साथ मौजूद है।
3: मैम बात हुआ थी, नहीं उठा रहे, नाराज हो गए हैं, कॉल नहीं उठाते हैं।
2: सिंपल मैम, फोन नहीं उठाती, हमने आपको पिछली बार तरीका बताया था, तब आपकी नेटवर्क आपके नेटवर्क का
3: इशू था,
2: वो समाप्त हो गया।
3: सर कार्ड देते हैं।
2: अच्छा सर कार्ड देते हैं, सर कार्ड देंगे तो आदमी मर जाएगा जी?
3: उठाते भी नहीं है, उठाते हैं कार्ड देते हैं।
2: सोचिए उठाते नहीं है, उठाते हैं तो कार्ड देते हैं, क्या बात है
3: जी?
2: ये किस चीज पर लागू होता है कि वो
3: क्या पता नाराज
2: है? है तो काट देती है
3: जी। सर
2: जी कोई बात नहीं, हम उसे कह देंगे वो उठा ले, काटे ना,
3: हम चाहते हैं कि उठा ले।
2: हाँ उठा ले हम।
3: तो कोई समस्या है?
2: नहीं कोई समस्या नहीं, हम कहेंगे कि आप उठा लीजिए, नहीं तो आपको कोई और उठा लेगा। हाँ
3: अब उठ जाएंगे,
2: अब उठ जाएंगे। आपका फोन उठ जाएगा
1: क्योंकि समस्या यही से जुड़ी है ना, जहाँ समस्या के पास बैठे हैं तो वहीं बैठ के समस्या को ही सही कर देंगे।
2: जी जी तो ये तो बात एकदम सही है।
1: तो डॉक्टर लव क्यों ना एक गाना सुन
2: जाए? बिल्कुल सुन लिया जाए, मतलब बहुत जरूरी हो चुका है
1: क्योंकि आज है प्रेमिका दिवस और प्रेमिकाओं को गाने।
2: अच्छा एक पिक्चर कोई हाफ गर्लफ्रेंड भी आई थी क्या?
1: हाँ गर्लफ्रेंड आई थी, लेकिन मैं चलूंगी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को छुड़वाने।
2: अच्छा,
1: और यूपी वाली गर्लफ्रेंड बनवाने।
2: दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड,
1: दिल्ली की गर्लफ्रेंड छोड़ लीजिए क्योंकि दिल्ली है दूर, इसीलिए बनाइए गर्लफ्रेंड यूपी में, और अगर आप हैं दिल्ली में तो दिल्ली की गर्लफ्रेंड बनाइए, यूपी में है तो यूपी की गर्लफ्रेंड बनाइए,
2: लेकिन
1: गर्लफ्रेंड बनाइए तो लोकल बनाइए,
2: लोकल बनाइए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग की गर्लफ्रेंड को समर्पित, आरजे बीना के द्वारा आप लोग के लिए।

0: और मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
1: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल ले
2: दिला दीजिए ना।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सभी सम्मानित
5: वापस से आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी शाम में जहां हो रही थी बात गर्लफ्रेंड। So, देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ लाइव। कमल नयन, धर्मेंद्र जी, सविता दुबे, अनिल जी लिखते हैं बिना मैं मुझे याद नहीं। आपको क्या नहीं याद है, किसके बिना नहीं याद है कि आज प्रेमिका दिवस है। काश कोई मेरी भी प्रेमिका होती। डॉक्टर लव जरूर पूछिए, आपको प्रेमिका चाहिए तो मैं एप्लीकेशन आपकी डाल दूँ।
6: नहीं, प्रेमिका नहीं है। मैं सजेशन देना चाहूँगा कि भाई जिनकी पत्नियाँ हैं आज के दिन वो अपनी पत्नियों को ही गर्लफ्रेंड मान लें।
5: क्या बात है, आप बहुत आज पॉजिटिव दे रहे हैं। मतलब जवाब
6: तो निगेटिव क्यों दें हम?
5: क्यों कोई अगर बनाना चाहे मैं तो यही कहूँगी दिल तो बच्चा है जी। गुड इवनिंग अनूप जी हमारे साथ हैं, चलिए कॉल लेते हैं, देखते किसका। हेलो,
7: शुभ संध्या मैम।
5: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
7: सबलू सावंत, मोतिहारी, बिहार।
5: सबलू जी कैसे हैं? सबसे पहले तो अपना हाल चाल बताइए, कैसा है हाल बिहार का?
7: मैं मस्त हूँ और बढ़िया हूँ। और रही बात बिहार का, तो बिहार में बारिश का मौसम यहाँ पर भी चल ही रहा है। कभी थोड़ा थोड़ा बारिश है तो कभी कभी धूप उग जा रहा है।
5: क्या बात है, तो डॉक्टर लव से क्या सवाल कीजिएगा?
7: डॉक्टर लव से पहले तो उनको नमस्कार है मेरा।
6: जी नमस्कार।
7: सर आप ही से तो एक सवाल किए थे, आप जब बोल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना सही है या ना नहीं है,
6: मतलब अगर आप
7: तो कहते हैं कि देखिए प्यार प्यार करना कोई अच्छी नहीं है, लेकिन किसी का प्यार करके दामन थाम लेना ये सबसे बड़ी बात है।
6: सही बात है
7: जी। तो आपने... कहते हैं कि लव इज लाइफ, लाइफ इज लव, देयर इज लव। तो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया प्यार पे ही टिका हुआ है, कुछ नहीं है। चाहे वो मेरी मॉम हो या डैड हो, उनसे भी हम प्यार करते हैं, लेकिन एक परिवार जो है गर्लफ्रेंड से प्यार, वो सच्चा प्यार होना चाहिए। आजकल देखते हैं हम फोन पर ज्यादा, कहीं ना कहीं लड़का लड़की को फोन प्यार को डिस्टर्बिंग, दिन भर फोन में लगना और कहीं ना कहीं प्यार को कहीं ना कहीं दूरी करना, चैटिंग या बात थोड़ा थोड़ा पर विषय करते हुए हम लोग देखे हैं प्यार में, ये भी प्यार को दूर करता है। अब बताइए कि हम किस तरह बोले कि लड़का धोखेबाज होता है या लड़की धोखेबाज होता है? सब समय के वजह से लड़की भी मजबूर होता है, या तो फैमिली के मैटर में आ जाए तो, या तो लड़का कुछ मजबूरी में उससे धोखा दे देता हो।
6: ये बात सही है, लेकिन
5: सबलू जी, लेकिन ये धोखे वाली बात से हम सहमत थोड़े कम हैं, क्योंकि आजकल धोखा देने के कई प्रकार की वजह हो चुकी है।
7: जी जी बिल्कुल बता सकते हैं जी।
5: जैसे आजकल कहते ना कि पहली बात तो सच्चा प्यार ही नहीं होता है, जब सच्चा प्यार नहीं होता धोखे के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक बार दिल किसी पे आया तो दूसरा दिन दिल किसी और पे आ गया, तो धोखा का चांसेस वहाँ।
7: देखिए देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है आजकल का प्यार पैसे के आगे भी चल रहा है, कुछ स्मार्ट के आगे भी चल रहा है। जो लड़का स्मार्ट दिखा उसके पीछे लड़की लग गई, ऐसा भी है ना?
5: ये बात सही है, इसीलिए शायद प्यार स्थिर नहीं है।
6: लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप स्मार्ट भी हैं और पैसा भी है।
7: ऐसा बात नहीं है सर, मैं नॉर्मल परिवार से हूँ। अगर कभी आपके ज्ञान स्थली में मैं पधारूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस परिवार से है और किस तरीके से है। मैंने भी गरीबी देखा है सर।
6: पैसे का धनी होना नहीं बल्कि दिल का धनी होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो आप
7: बिल्कुल, हम गरीबी परिवार से भी सर गुजरे हुए, ऐसा बात नहीं है कि मेरे पिताजी
6: तो
7: एक किसान।
6: तो सबलू जी आपसे एक बात पूछे कि आप जो है सुखी हैं या विवाहित हैं?
7: जी जी, मैंने तो अब क्या बोले, आप लोग तो दिल के पेटारा खोल देते हैं ऑन एयर भी, इन मजबूरन बताना पड़ता है कि हमने जिससे लव किए उससे शादी अरेंज मैरिज कर लिए।
6: अच्छा, मतलब पहले आपने लव किया फिर लव को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया?
7: जी सर, हमने तो बता दिए कि हम उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो मेरी फैमिली मान गए।
6: वाह क्या बात है, मतलब
5: लेकिन फैमिली को आपने ये नहीं बताया कि आप पहले प्रेम भी करते थे?
6: लेकिन आज आप समझिए,
7: मेरा फैमिली जानते थे कि उस लड़की से मैं प्रेम करता था, लेकिन बाद में उन्हें बोले कि मुझे उस लड़की से शादी करना है।
6: करता था कि करता हूँ ये
5: था ये, क्यों बोला आपने?
7: करते थे वही ना बोला है सर,
6: करते थे बोला है आपने, मतलब इस समय आप नहीं कर रहे हैं?
7: नहीं नहीं, अब इसके लिए तो आपको ऑन एयर मेरी वाइफ को लाना पड़ेगा।
6: हाँ नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम आपको एक खुशखबरी दें कि आज भारतीय गर्लफ्रेंड्स डे है, तो आज
7: सबसे बड़ी बात हमको यह लगता है कि अपना प्यार जो है यूपी और बिहार में जो है कहीं ना कहीं सच्चा प्यार है। हमारे मुंबई में पधारी
6: और एक लड़की आ रही है, वो कह रही है कि दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ, वो गोंडा में तो नहीं लूट पाई बिहार, क्योंकि हम गोंडा में हम थे बचा लिया, बिहार की जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं सब मुझे। अगर बिहार में गई वो कहीं लूट आई तो समझ लीजिएगा कि हम कहेंगे
7: यानी सब मुझे बिहार की रक्षा नहीं करते। हाँ
6: हाँ, तो वही तो
7: मतलब
6: अब लूटने मत दीजिएगा, जान लीजिए
5: नहीं तो सच्चा प्यार कहीं और चला जाएगा,
6: बिहार की इज्जत आपके हाथ।
5: अरे सबलू जी हैं तो डरने की क्या बात,
6: डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है जब सबलू जी अपने साथ है।
5: क्या बात है, इनकी कविताएं सबको प्रेरणा से भरपूर कर देंगी, क्या
6: कर देंगी। और सबलू जी आज आप अपनी पत्नी में अपनी गर्लफ्रेंड को देखिए।
7: जी जी, कविता तो हमारे मंडे को होता ही है, लेकिन अगर अर्जुन मीना का आदेश हो तो दो लाइन
5: दो पंक्तियां, लेकिन गर्लफ्रेंड के उपलक्ष में हो, गर्लफ्रेंड के लिए हो, प्रेमिका के लिए हो, बस ऐसे ही हो,
7: गर्लफ्रेंड के ही ऊपर हो।
5: स्वागत स्वागत।
7: केहू से दिलवा लगौले बाड़ू का, केहू के आपन बनौले बाड़ू का, एक बार मिलतू तो सवाल पूछती तो से, का हमरो से ज्यादा चाहे वाला पौले बाड़ू का।
6: क्या बात
5: और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई सवाल एक प्रेमिका के लिए हो
6: नहीं सकता। मतलब क्या बात है, आप विवाह करके भी प्रसन्न है और ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है।
7: बिल्कुल छुटना चाहेंगे, नमस्कार विना जी,
5: बहुत बहुत शुक्रिया। सबलू जी ने समा तो बांध ही दिया और प्यार की परिभाषा भी बता दी, तो प्रेम ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि आपस प्रेमिकाएं बनाते जाएं लाइन से, प्रेमिकाओं के साथ ईमानदारी से रहें, और प्रेमिकाओं को भी मैं ये संदेश दूंगी थोड़ा सा प्रेम को तवज्जो दें। और गुड इवनिंग सोनिया जी, गुड इवनिंग अनूप जी के फ्रैक्चर हमारे पैर में हो गया है, कैसे हैं अनूप जी आप? अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सा लापरवाही कम बरतिए, क्योंकि अगर बार बार अब अगर आप अपने आप को परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर पे जो है ना असर नेगेटिव होगा। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं। हेलो
8: हेलो हेलो
6: हेलो,
8: हाँ सर आदाब
6: आदाब,
7: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
6: क्या आवाज है, उस बुलंद आवाज को तो हम पहचानते ही हैं।
7: मैं आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ।
6: और हम दोनों आपका तहे दिल से इस्तकबाल स्वीकार करते हैं।
5: कैसे हैं?
7: जी
6: जी जी के बाद एच
7: सर, कुछ कहना चाहते हैं?
6: बिल्कुल कहिए, आज का दिन कहने वाला ही है।
7: कहने वाला ही है।
6: हाँ,
7: दर्द कितनी तेरी चाहत से मिले हैं मुझको।
6: ये पुराने जख्म उभर कर आ रहे हैं।
7: दर्द कितनी तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूँ के कहूँ तुझसे मगर जाने दे। और कुछ मेरी तमन्ना नहीं है इसके सिवा, राख बनकर मुझे राहों में बिखर जाने दे।
6: क्या क्या बात है, क्या डेडिकेशन है आपका, क्या समर्पण दिखाया आपने।
7: दूसरा अर्ज करें सर?
6: जी अर्ज करें।
5: स्वागत है, स्वागत।
7: मोहब्बत यही है, अकीदत यही है। और तुझे देख लेना इबादत यही है। तेरी जुफ्तजू में जो गुम मेरी हसरत, खुदा की कसम मेरी हसरत तुही है।
6: क्या बात है, क्या बात है।
7: और नजर झुका के आप दोनों का अदब और एहतराम करता हूँ। है नाम आपका मनु, और जो लेडीज है उनको मैं सलाम करता हूँ।
6: ये मनु तो कौन है तो हमको नहीं पता, लेकिन
5: डॉक्टर लव आपके साथ हैं, उन्हीं को आप सलाम कीजिए।
6: हाँ भाई, वो मनु आएंगे तो उनको आप सलाम कर लीजिएगा। वो कब आते हैं?
5: रात्रि में 9:30 बजे।
6: उनको कोई काम नहीं
7: है? 9:30 बजे मिलेंगे।
6: 9:30 बजे मिलते हैं, उनको कोई काम नहीं है। 9 बजे तक लोग खा पी के सो जाते हैं। कैसा प्राणी है कि
5: एक्चुअली वो दिन भर पान खाते हैं, शाम को आते हैं तो अपनी।
6: जी
7: मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
6: जी आप दो कहिए।
7: हमारे आपके बीच का मामला है।
6: नहीं हमारे, हाँ ठीक है।
7: ये फूल खिलना चाहता है पर कलियाँ खिलने नहीं देती। और दिल से दिल मिलना चाहता है, मजबूरियाँ मिलने नहीं देती।
6: बताइए उस मजबूरी को एकदम खत्म करें और तुरंत मिलाएं। फलसा फुलहारी लेकर जाइए, चले आए एकदम।
7: जी सर।
6: हाँ एकदम चला जाएगा, हम लोग उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
7: ठीक है सर, अगले को मौका देते हैं।
6: अगले को मौका दीजिए।
5: क्या बात, क्या बात, आपने दिल के जख्म एकदम आंसुओं से धो लिए।
6: दिल के अलमन रहा में बह गए।
5: हेलो।
8: हेलो,
5: नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आपका
8: नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श।
6: जी नमस्कार।
8: नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रणाम, चरण स्पर्श। क्या हाल है?
6: ऐसा मत कहिए, मतलब नमस्कार ही कहिए आप।
8: क्यों क्यों,
6: आप हमसे काफी बुजुर्ग हैं और आप चरण स्पर्श करेंगे तो बताइए हम कहाँ।
8: ऐसा नहीं, बुजुर्ग नहीं।
5: अब आप ये बताइए आपके पास प्रेमिका है कि नहीं। ये बुजुर्ग बुजुर्ग की बातें तो चलती
6: है। हाँ, चलती है।
8: ये क्या होता है बहन जी?
6: जैसे विवाह के पहले की वह अवस्था जब लड़का किसी लड़की के साथ पाया जाता है, उसे प्रेमिका कहते हैं।
8: अरे नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। थी वो पहले, अब नहीं।
5: थी
6: मतलब थी
8: थी
6: थी मतलब तो अब उसकी शादी कहीं अलग हो गई।
8: उसकी हो गई, वो गई।
6: अच्छा, उसकी शादी पर आपने कौन सा गाना गाया?
8: अरे क्या हम बताएं, अब हमें अब गाना नहीं सुना पाएंगे। बहुत

0: दीवाना। क्यों ऐसा ही था ना?
1: मुबारक हो सबको, समय ये सुहाना।
2: नहीं ये गाना तो हमने नहीं गाया था, क्योंकि हमको खुशी तो थी नहीं, हमें कष्ट था।
1: कष्ट बहुत था आपको, आपका कष्ट हम महसूस कर रहे हैं यहाँ।
0: इन्होंने गाया होगा जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना।
1: ये वाला गाया था,
2: ये गाया था।
0: तन्हा ही जी लेंगे हम, लेकिन है तन्हा बिल्कुल भी नहीं मरना, इसीलिए शादी कर ली।
1: हाँ शादी कर ली आपने?
2: उसके बाद नहीं रह गया तो हमने भी कर लिया, क्या
0: और क्या।
1: और क्या, जब तुम नहीं हमारे तब हम कहाँ तुम्हारे।
0: चलो तब किनारे किनारे।
1: हाँ चलो तब किनारे किनारे।
0: तो विजय जी समस्या क्या है, प्रेमिका चाहिए या पत्नी को प्रेमिका के रूप में देखना चाहते हैं?
2: हम पत्नी को प्रेमिका के रूप में देखना चाहते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या बात है, ये बहुत शानदार बात कही आपने। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे?
2: क्योंकि पत्नी को पत्नी के रूप में देखें तो हमको खर्चा ज्यादा लगेगा, प्रेमिका के रूप में देखेंगे तो खर्चा कम लगेगा।
1: ये गलत बात है, पत्नी के रूप में देखेंगे तो खर्चा कम लगेगा, प्रेमिका के रूप में देखेंगे तो
0: है ना पॉकेट मनी की सेविंग भी हो जाएगी, और प्रेमिका के रूप में देखेंगे ना तो आपकी पॉकेट मनी भी होती है ये चीज ही गुम जाएगी।
2: ये बात तो सही, हमने सोच नहीं पाया भाई।
1: आप अपने विवाह की सीडी होगी आपके पास, यह है कि नहीं है? जब शादी आपकी हुई थी तो फोटो वगैरह खींचा गया था कि नहीं खींचा गया था?
2: अरे तब फोटो कहाँ खींचते थे, फोटो तो अब खींचने लगे।
1: तब फोटो नहीं खींचते थे?
0: तो समय को रिक्रिएट करिए, आजकल रिक्रिएशन का समय चल रहा है।
1: और अपनी पत्नी से कहिए कि मान लो अब मैं रात में तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ घोड़ी चढ़ करके, और तुम जो है वो दुल्हन बनी बैठी हो, उसी माहौल को जिंदा कीजिए एक बार। आप
2: कहेंगे आज
1: क्या क्या कहेंगे? और गाना गाइए उनके साथ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए एकदम।
2: अरे बड़ी बड़ी खूंखार है डॉक्टर साहब।
1: खूंखार है,
2: बहुत खूंखार
1: है। जो
2: बिल्कुल बनी बनाई शेरनी।
1: पत्नी खूंखार होती है, सबकी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
0: आपकी पत्नी मुझे लगता है रेडियो सुनती नहीं है तभी।
2: सुनती है
1: पत्नी, मतलब हिंदी में संत विच्छेद की तो पत्नी, जो पति पर रहे तनी वही पत्नी।
2: हाँ, इसीलिए खोखार
1: है। हाँ, तो भाई जो तनी नहीं है वो पत्नी हो ही नहीं सकती।
2: तो आप डॉक्टर साहब
1: आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास अपनी एक निजी पत्नी है।
2: अरे जब वो नाराज हो जाती है तो क्या बताए।
1: नाराज होती है?
2: बहुत
1: कसके, बहुत
2: एकदम एकदम से तन जाती है।
1: एकदम बस जान लिए तब तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। जो पत्नियां अपने पतियों से नाराज होती हैं उनकी मोहब्बत बहुत गहरी होती है।
2: हाँ ये बात सही, मोहब्बत फिर बाद में बहुत दुगनी हो जाती है।
1: दुगनी हो जाती है तो थोड़ा बहुत जो है वो तनना जरूरी है। जब वो नाराज हो जाए तो आप उनसे कह कीजिए कि तुम जब नाराज होती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। क्यूट लगती हो तो फिर वो नाराज होना बंद कर देंगी, क्योंकि पत्नी पति को हंसता हुआ नहीं देख सकती।
2: ये क्यों?
1: हाँ जैसे आप घर में कभी मुस्कुराते हुए हंसते हुए गाते हुए आइए तो पत्नी क्या कहेगी, क्या बात है आप बहुत खुश लग रहे हैं, कोई बात है क्या, कहीं कोई बाहर कुछ मैटर है क्या। तो घर में जब घुसिए तो देखिए शादीशुदा पुरुष की पहचान क्या होती है और महिला की पहचान, महिला के गले में मंगलसूत्र लटका होता है और पुरुष का मुंह लटका होता है। तो जिस पुरुष का मुंह लटका होता है वो विवाहित होता है, और जिस स्त्री के गले में मंगलसूत्र लटका होता है वो विवाहिता होती है।
2: अच्छा
1: तो इसलिए अगर आप विवाहित हैं तो मुस्कुराइए मत, घर पर पहुँचिए मुँह लटका के पहुँचिए।
2: एक बार ऐसा हुआ डॉक्टर साहब
1: जी,
2: हम बाहर से बहुत खुश आए।
1: हाँ।
2: तो नाराज हो के आज कोई मिल
1: गया बस ये तो। हम भी जब घर में जाते हैं तो मुंह लटका करके क्या बताएं, बड़ा समस्या।
2: सबसे भैया घर में घुसते हैं तो मुंह लटका के घुसते हैं
1: बस, ये इसको इस सावधानी हटी तो घटना घटी। आप अंदर से कितने भी खुश हो, रसगुल्ला फूट रहा हो, लेकिन जब घुसिए घर में तो एकदम तमतमाए हुए चेहरे के साथ मुंह लटका करके ताकि वो कुछ बोल ना पाए।
2: और देखिए आपके पीछे वो है
1: जी,
2: जैसी आपकी पत्नियां हैं वैसे सभी को मिले।
1: अरे हमारी वाली ही आप ले जाइए, हम दूसरी खोल लेंगे।
2: अरे नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं
1: चलिए
2: भैया, हमने अगर अगर आपको जरूरत हो तो हमारी ले जाइए।
1: मतलब ये आप अगर कह रहे हैं तो मैं भी जो है वो यहाँ से जेसीबी भेज देंगे,
2: लेकिन बनी में शेरनी है भैया, ये समझ लेना।
1: ठीक, हमने बहुत सी शेरनियों को चूहिया बना दिया है।
2: अरे तो ठीक, आप ले जाइए।
1: ठीक है, हम आ रहे हैं जेसीबी के साथ।
2: आइए आइए,
1: घर सही उठा जाते हैं। तो भाई विजय पाल जी, क्या चलना है इनकी पत्नी को लेने? कंपाउंडर साहिबा, हमारा वाहन तैयार किया जाए।
2: बहन जी को भी साथ लिया ना?
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही हमारी जेसीबी चलाती
0: है। संदेह नहीं, संदेह। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपकी परेशानी को समझने के बाद मुझे ये लगा कि आप कुछ समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ लेते हैं, क्या बात है। तो भाई विजय जी की बातों को सुन के ये लगा कि हाँ भाई, बहुत परेशानियों के हल ये खुद ही जानते हैं। अनूप जी हमारे साथ हैं, हमारे नागेश्वर जी, बुजुर्गों के पास प्रेमिका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बुढ़े इश्क करते हैं लेकिन कोई शक नहीं करता। क्या बात है, बड़ा एक्सपीरियंस है, आप भी बुढ़े हैं क्या? अरे वाह। सविता जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सविता शास्त्री जी। सबके साथ बातें करते करते शाम कितनी बेहतरीन हो जाती है, क्या कह रहे हैं। अनूप जी आजकल दर्द में है तो इनको, इनके दर्द के से दिल को आबाद करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भी प्रेमिका बना देनी चाहिए।
1: नहीं, वही जो पत्नी है उसी को प्रेमिका के रूप में देखें।
0: अरे देखिए, दर्द में इंसान क्या करता है, प्रेमिका के पास, पत्नी के पास काम है हजारों भाई। इनका फ्रैक्चर हुआ है दुनिया भर का हेन देन पैर में, तो प्रेमिका रहेगी आराम से, इधर चैटिंग चल रही है, इधर से चाय पे चाय आ रहा है, नाश्ता आ रहा है, तो अपना एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। इंसान अपनी चोट से ज्यादा ध्यान उस चैट पे करेगा।
1: मतलब आप जो है वो
0: नहीं हम बस सहयोग कर रहे हैं।
1: नहीं, सहयोग नहीं,
0: कोई एंजल प्रिया ये भी अपना ट्राई करें। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, नवीन जी लिखते हैं, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, परफ्यूम है क्या, हवा बनकर आपकी सांसों में समा जाएंगे, ऑक्सीजन है क्या, धड़कन बनकर आपके दिल में उधर जाएंगे। ओहो क्या बात,
1: पेसमेकर लगाया है क्या?
0: पेसमेकर है क्या? जरा महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहकर भी पास नजर आएंगे। क्यों, मोबाइल फोन है क्या?
1: या व्हाट्सएप कॉलिंग चल रही है?
0: क्या बात है, हंसते मुस्कुराते ये शाम बेहतरीन हो गई है। और सब बुढ़े जवानों के लिए गाना मेरी तरफ से सुन लिए। और
1: मेरा मानना है कि बुढ़ा कोई होता नहीं है पीना,
0: बुढ़ा होगा
1: नहीं
0: बाप,
1: नहीं बुढ़ा नहीं, जितने भी बुढ़े हैं,
0: एज बिगिंस एट 40।
1: हाँ नहीं, सब भूत, सब जो बुजुर्ग हैं वो सब भूतपूर्व नौजवान हैं।
0: हाँ बिल्कुल, जवान तो थे ना।
1: हाँ बस वही,
0: जैसे सास भी कभी बहू थी, बुढ़ा भी कभी।
1: अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी बुढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान होता है?
0: बुढ़ा नहीं होता, सोचना पड़ेगा, पहले गाना सुनिए।
1: अच्छा सोच के बताइए।

0: क्या बात है, दिन नहीं शाम चढ़ी है, गाना बज रहा है दिन चढ़िया। फिलहाल हमारे साथ अब जाने की तैयारी करते हुए डॉक्टर लव, क्योंकि आज इनको अपनी प्रेमिका को गुलाब देना ही है, वो भी किसी भी कीमत पे। 31वीं पत्नी और 31वीं जो कहते हैं ना एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं वो। 31वीं मतलब कि नंबर ऑफ एनिवर्सरी, जैसे साल में 30 मनाते हैं तो 31वीं भी एक ऐड करना चाहते हैं। तो डॉक्टर लव के लिए हम शुभकामनाएं देंगे, और जैसा कि समय हो चुका है आप लोगों से दूर जाने का। नागेश्वर लिख रहे हैं, शायद दिल कभी बुढ़ा नहीं होता, दिल जवान रहता है, इंसान बुढ़ा हो सकता है। देखिए काया बुढ़ी होती है, दिल तो जैसा था वैसा ही है। दिल अगर बुढ़ा जाता तो कब के हम लोग ऊपर चले गए होते। क्यों दिल बुढ़ा नहीं होता, सही बात है। हाँ, आप खाएं पिए अपना सही रखें तो दिल कभी आपका साथ भी नहीं छोड़ेगा, दिल आपके साथ रहेगा, ठीक है। और कहते हैं मरने के बाद काफ़ी समय तक दिल ही है जो धड़कता रहता है, और मतलब बहुत अच्छा साथी है आपका। तो दिल की सुनिए और डॉक्टर लव को बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए कि ये भी अपनी एक प्रेमिका बनाने में सफल हो जाए। क्योंकि देखिए प्रेमिका एक ही होती है, 10-12 नहीं होती पत्नियां। आप 500-600, एक हमारे लिसनर कह रहे थे कि भगवान कृष्ण की इतनी पटरानियां थी। मैंने कहा पटरानियां पत्नियां कितनी भी हो सकती हैं, उन्होंने आधे से ज़्यादा शादियाँ तो मतलब कल्याण जन कल्याण में कर दिए। कोई मतलब क्यों कल्याण की, प्रभु मेरी बेटी को अपनी पत्नी बना दीजिए। क्यों कल्याण की, प्रभु मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। क्यों पिछले जन्म हमें पत्नी बना लो, मतलब आधे तो जन कल्याण में शादियाँ हुई हैं भगवान की। भगवान है भाई, भगवान है भाई, भगवान बन के तो शादी कर नहीं सकते, जब मनुष्य रूप धारण करेंगे तभी शादी कर पाएंगे। तो बाकी प्रेमिका वाला सिस्टम उनका एक ही था। तो वही प्रेमिका बनाने के लिए डॉक्टर लव अपनी 30 पत्नियों को तो अनुमति दे नहीं सकते, क्योंकि 30 प्रेमिकाएं तो हो नहीं सकती, ऐसा हमारा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ लव। तो इसी के साथ डॉक्टर लव को हम देते हैं शुभकामनाएं, और आपको भी देते हैं शुभकामनाएं। जिसने अभी तक ना बनाई वो बना ले, और जो ना बना पाए वो डॉक्टर लव के क्लिनिक आके कल मिल ले, क्योंकि तारीख ज़रूर बदलेगी लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा प्रबल है,
1: प्रबल रहेगी,
0: इनफाइनाइट है, साक्षात है, और वो अनंत समय तक चलती रहेगी। तो इसी के साथ आरजे बीना और डॉक्टर लव को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए अपना वाला फेवरेट रेडियो स्टेशन 99.65, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट डॉक्टर
1: लव।

are just simple who is not so simple. वैसे हम enjoy तो कर रहे हैं मेरे दिल के सबसे करीब रहने वाले सिंगर कैलाश खेर का नगमा, लेकिन क्या चाहते हैं आप कि मैं इसको स्विच करूं? Now let's go to the next.

पर। सो ये है सैटरडे नाइट स्पेशल वाली फरमाइशी की महफिल। नो रोना धोना, ओनली एंजॉय करना।

पूछे थे ना दोस्तों कि पहले मूड बनना होता है, वाइब बननी होती है, तभी तो वाइब से वाइब मैच होती है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से एक और बहुत खूबसूरत सा एनर्जी से भरपूर नगमा एंजॉय करें, फिर मिलते हैं हमारी अपनी फरमाइशी महफिल में उसी वाइब के साथ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

भी सुकून का चाहिए होगा तो डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा हमारी हमारी हमारी और आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। सो नमस्कार आदा मैं सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात जरूर बताना। मेरी बातों से तो पता चल गया होगा कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सो इसी खुशी को बरकरार रखेंगे आप और मैं दोनों मिलके, क्योंकि दोस्तों अगर अगर इस खुशी को बरकरार रखना है तो खुशियों वाले गीत बजवाने पड़ेंगे, और अगर आपने मुझे सैडनेस की तरफ ढकेला, उसकी तरफ रेलगाड़ी लेके गए, तब तो भैया आपकी आज सिंपल को भी नहीं पता कि ये मूड स्विंग कैसे होएगा, ऐसे होएगा ऐसे होएगा कि पूरी की पूरी सैटरडे नाइट स्पेशल वाली ये तड़कती भड़कती सी एनर्जी मेरी बस सोने चली जाएगी। सो क्या आप सभी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो आप लोग भी जगो और अपनी आज सिंपल को भी जगा के रखो दोस्तों, कहे की बार बार ये दिन नहीं आता, हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। ये कहने की बातें होती है सिर्फ गानों में, अच्छा लगता है कि हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, लेकिन नहीं ब्रो, एक ही है, एक ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता मेरे जेंजीज। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल ये बताइएगा जरूर। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से खोलो ना अपनी फरमाइशी की गठरी को, टटोलो ना एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जो आज की महफिल से एकदम मैच खाता हो, और लेके आ जाओ हमारे चैट बॉक्स में और लगा दो हाय हाय हजारों लाखों अनगिनत करोड़ों चांद जो सिर्फ आप लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लगा सकते हैं। सो चलिए एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले दोस्तों स्वागत है आपका राजू विश्वास सीतापुर से, अनुष्का श्रावस्ती से, सबलू सावंत मुंबई से, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, नागेश्वर धाकर इंडिया से, कार्तिक कश्यप, रितेश साहू, शिवम तिवारी सत्या आपका भी स्वागत है, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, और अभी रुको ना थमो ना सबलू सावंत जी मुंबई से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, तबिश खान लखनऊ से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी चौक से, निबरजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, निशा पटेल नगर गोंडा से, रईस जी गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से वेलकम वेलकम वेलकम। और चले एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। सो पहली फरमाइश हमारे पास में अनुष्का की श्रावस्ती से, अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना धन धन भाग। सो एंजॉय करते हैं सोहर आय हाय। सो फाइनली आज किसी का आगमन हुआ है या फिर इसी सावन में किसी का आगमन हुआ है, और उनके आगमन पर हम ये सोहर गीत एंजॉय करने जा रहे हैं। सो अनुष्का किसका आगमन हुआ है ये भी चैट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी जैसी भी बातें हो लेकिन रियलिटी चेक कराने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ज्यादा हो गया ना। स्टे ट्यून्ड।

लंदन भाग ललनवा। हमने एंजॉय किया है ये सोहर अनुष्का जी की फरमाइश पे, जो कि है श्रावस्ती से। और मैंने पूछा था ना कि किसका आगमन हुआ है, तो हमारे एक लिसनर का कहना है कि अनुष्का जी के घर नन्हे मुन्हे बच्चे का आगमन हुआ है, वो माँ बन गई हैं। अरे वाह, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारे विशेज आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से। लव यू सो मच अनुष्का जी, और आपके नन्हे मुन्ने बच्चे को भी बहुत सारा ढेर सारा इन्ना सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से। मेरी भी उम्र उसको लग जाए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की मुंबई से, उनको सुनना है गाना आई एम इन लव। अच्छा, आप प्यार में हैं। हम तो जब से जन्म लेते हैं, मेरा तो यही मानना है कि हम जब से जन्म लेते हैं, जब तक यहाँ रहते हैं, तब तक हम प्यार में ही रहते हैं। कभी किसी के प्यार में, कभी किसी के प्यार में, कभी किसी के प्यार में, क्योंकि बिना प्यार के इस ज़िंदगी में बैलेंस होना, आई मीन इस पृथ्वी पे बैलेंस होना इम्पॉसिबल है दोस्तों। आई थिंक सो। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

लव, हमने एंजॉय किया ये लव डब वाला गाना आज की सैटरडे नाइट स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में झनकार बीट्स के साथ में। एंड यू नो गाइस व्हाट, इसकी फरमाइश आई भी थी सबरी सावंत जी की तरफ से जो कि है मुंबई से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन दोस्तों, मेरे खुशियों का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि मेरे बहुत ही पुराने लिसनर ने अभी ज्वाइन किया है बहुत दिनों बाद। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनूप मिश्रा जी, आपका स्वागत है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। और आपकी फरमाइशी गीत का आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को बेसब्री से इंतजार है। और इनका कहना है कि शुभ संध्या सिंपल, होप यू आर फाइन। सो जहाँ होप है वहाँ सब कुछ है ना, तो मैं एकदम से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हूँ हमेशा की तरह। लेकिन आपकी मौजूदगी ने सच में और ज्यादा खुशियां भर दी आज के इस दिन में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना तुना तुना ता तुन्ना। सो एंजॉय करते हैं अमित कुमार अरुण बख्शी की आवाज में ये फिर से अतरंगी सा यूनिक सा नगमा अधर्म मूवी का, सिर्फ और सिर्फ हमारे अतरंगी से धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और गिरते को बढ़के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। लव यू सो मच धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवाज विकास गोंडा। आपका ये नगमा भाई चुम्मेश्वरी फरमाइश थी है। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। आई लव दिस सॉन्ग रियली, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी लिसनर्स को अच्छा लगा होगा ये बहुत ही अतरंगी सा नगमा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे लिसनर्स के हिसाब से मैं तो हमेशा सही रहती हूँ। आपको पता है क्या, आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे सर पे चढ़ा रखा है। आप लोग हैं मुझे सर पे चढ़ा रखे और मैं फिर उसके बाद में घर पे जाके भाव दिखाती हूँ आप लोगों के सर पे चढ़ाने की वजह से। अब उनको मैं क्या बताऊं कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो कि मेरे भाव इतने ज्यादा बढ़ गए जिसका कोई पता ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। आप लोगों के प्यार दुलार ने मुझे सच में बिगाड़ दिया है दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की। उनको सुनना है गाना कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में एंजॉय करते हैं राजा हिंदुस्तानी का ये सुपर डुपर हिट नगमा। लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कुछ कहना भी है दोस्तों, लिसन। इनका कहना है कि दिल ने कहा थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, गमों को भी कभी भुला दिया करो, जिंदगी चार दिन की मेहमान है। अच्छा, हाँ हाँ, जिंदगी चार दिन की मेहमान है, हर दिन को त्योहार बना लिया करो। और हर दिन को त्योहार बनाओ चाहे ना बनो, लेकिन पूरे के पूरे सावन को इतना एंजॉय करो कि हर एक दिन त्योहार जैसा लगे। सुबह शाम रात हर एक टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिले, खुशियां मिले, खुशियां मिले। मैं तो यही चाहूंगी, फिलहाल एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आहा, एक के बाद एक इतने प्यारे प्यारे नगमे।

आपने बनाया जी, कभी देखता रहूं। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजा हिंदुस्तानी का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले ये फरमाइश आई हुई थी धर्मेश त्रिपाठी की, और धर्मेश त्रिपाठी का मैसेज आया है कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया कि फरमाइश पूरी कर दिल को मुस्कुराने का पैगाम दे दिया। आरजे सिंपल आपकी आवाज ने हर एहसास को प्यार का नाम दे दिया। शुक्रिया उस पल के लिए जो हमेशा यादों में महकता रहेगा। हर धड़कन अब आपकी इस मोहब्बत भरी पेशकश को सलाम करता रहेगा। आपका लिसनर धर्मेश त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है लता मंगेशकर जी की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान का गाना, हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड मेलोडियस सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी हमने एंजॉय की। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले किसी का कहना है, मेरे लिसनर का कहना है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। उसको भूलकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको भूलकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की, उनको सुनना है गाना सैया ले गई जिया। सो एंजॉय करते हैं एक फूल दो माली का ये नगमा आशा जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो दोस्तों, ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी सोनिया तिवारी की तरफ से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है, सबलू सावंत जी का मुंबई से कहना है कि सूखे गुलाब तो बस बंद किताबों में मिलेंगे, बड़े लोगों के बड़े ख्वाब यहाँ ही मिलेंगे। दिल की किताब के हर पन्ने पर नाम तुम्हारा था, दिल की किताब के हर पन्ने पर नाम तुम्हारा था, जैसे कली के बदन पर गुलाब का साया हमारा था। संभाल कर रखी है वो किताब मैंने आज भी, जिसमें महकता हुआ तेरा दिया गुलाब रखा है आज भी। सो ये लाइंस थी सबलू सावंत की तरफ से। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना एक था गुल और एक थी बुलबुल। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड नगमा जब जब फूल खिले मूवी का, हमारे ओल्ड इज गोल्ड नागेश्वर।

तारीख थी बुलबुल, हमने एंजॉय किया ये नंगमा नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना, बहुत जताते हो प्यार हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे, ऐ दिल आए हाय। आई लव दिस सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक मोहम्मद अजीज की आवाज में ये बहुत ही अजीज सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कमल नयन, आपका स्वागत है तबिश खान लखनऊ से। और इसी के साथ में जिशान और अलीशा आपका भी स्वागत है महेंद्र राजस्थान से। वेलकम इन योर शो स्टेट।

जब जब ये गाना मैं सुनती हूँ मेरा एक मन करता है कि काश मुझे ट्रक चलाना आता होता तो मैं ट्रक चलाते हुए इस गाने को ज़रूर सुनती और एक वीडियो बना लेती जिसको मैं हमेशा देखा करती। वाह है ना, लेकिन मुझे तो नहीं चलाना आता ना ट्रक, और कौन मुझे ट्रक अपना देगा चलाने को।

चाहे ना चले, लेकिन वफा के रंगों में सबको ढलना चाहिए। बिना वफा के रंग में ढले कोई भी रिश्ता मुकम्मल नहीं होता मेरे मित्र, मेरे दोस्त। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना लाइफ बन जाएगी। सो एंजॉय करते हैं हम राज का ये रोमांटिक सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सारे नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी. हमने एंजॉय किया है ये नगमा. मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ. अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शिवम तिवारी सत्या की. उनको सुनना है गाना झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई. सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा हम सबके दिलों में बसने वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ शिवम तिवारी सत्या की फरमाइश पर. स्टेज ही

और बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रितेश साहू की, उनको सुनना है गाना आरंभ है प्रचंड। सो एंजॉय करेंगे ये नगमा और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा। और जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है वो जाके फटाफट से पेट पूजा भी कर लेना, क्योंकि पेट भरा रहता है ना तो आनंद कुछ ज्यादा ही आता है, ये सबने नोटिस किया होगा। और वैसे भी सबके दिल का रास्ता तो पेट ही से होके गुजरता है ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, मिलते हैं सीधे 9 बजे और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार।

0: दया का भाव, या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या की पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को

0: दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193.95 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
6: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
5: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमने एंजॉय किया है ये नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। और एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने जो फरमाइशी में आपके अपने आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। उनको सुनना है काजल मूवी का गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में। तो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी साउदी से। स्टे ट्यून्ड।

बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। हमने एंजॉय किया है ये नगमा मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइशी गीत हमारे पास में है दोस्तों राजस्थान से महेंद्र की है फरमाइश। एक मासूम सा चेहरा, तो उदित नारायण की आवाज में एंजॉय करते हैं एक मासूम सा चेहरा नगमा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

चेहरा। हम एंजॉय किया है ये नगमा महेंद्र की फरमाइश पर, जो की है राजस्थान से। बढ़ते अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना मोहब्बत से ज्यादा, मोहब्बत से दिल से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं गुमनाम का ये नगमा उदित नारायण और श्रेया घोषाल जी की आवाज़।

से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, हमने एंजॉय किया है ये नगमा दोस्तों। निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से, बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ और दिल को थाम लीजिए क्योंकि आ रहा है आपकी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल का बहुत ही पसंदीदा बेवफाई वाला नगमा। बेवफा सनम का सोनू निगम की आवाज में हम गाना एंजॉय करेंगे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से, और ये है गाना तूने मिल के रखी वो संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां और तुझको शर्म ना आया न देखी मेरी मजबूरियां। Oh my God, I really love this song. So enjoy करते हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पे ये वाला नगमा। Stay tuned everyone.

सवाई क्या ये बेवफाई वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पे जो कि गोंडा से लव यू मुमताज अंसारी जी ये गाना मेरे दिल के बेहद करीब है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से उनको सुनना है गाना मैं 16 बरस की तू 17 का। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार लता जी की आवाज में ये कर्ज का ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कुछ हो जाए तो ना कहना हमने एंजॉय किया। ये नगमा निब्बर जी की फरमाइश पर चलते हैं हमारी अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में मुस्तफा जी की सऊदी से, उनको सुनना है गाना बाय बाय मिस गुड नाइट। सो बाय बाय एवरीवन, चलती हूँ। ये है आखिरी फरमाइशी गीत, आखिरी फरमाइशी नगमा, और इसके साथ लेती हूँ अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा हमेशा हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस, सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू-बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है क्योंकि कल है संडे, संडे मींस पंडे, पंडे मींस हॉलीडे, कल मैं नहीं आने वाली हूँ, कल मेरी है छुट्टी, तो मुझे बहुत मिस करना। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर से मंडे को। इतनी दिन में भूल मत जाना, जानती हूँ लंबा गैप है, कल हम मिलेंगे नहीं, वैसे फरमाइशी के टाइम पे, आप लोगों से मिलने के टाइम पे, ट्रस्ट मी मेरा भी मन नहीं लगता, मेरा मन होता है कि क्या

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454583546।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके।

0: और शनिवार के इस प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। और भाई आज का कार्यक्रम होता है गजलें हमारी, गीत आपके। तो गजल हमने आपको सुना दी है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जी हाँ, गजलें हमारी बच चुकी हैं और अब एक गजल हमने आपको सुनाई है, गीत आपसे सुनेंगे, फिर एक गजल सुनाएंगे, फिर एक गीत सुनेंगे। फिलहाल जी अब बगैर देरी किए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं भाई आज के इस कार्यक्रम की नींव कौन रखता है। हमारे साथ सविता जी दिखाई पड़ रही हैं चरण स्पर्श आपको, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी होंगी। जी हाँ, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: अरे दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है भैया,
0: स्वस्थ हैं?
1: हाँ।
0: तो मतलब आज के इस कार्यक्रम की मतलब बोहनी आप करने जा रहे हैं?
1: हाँ, अरे चलो टाइम से आ गए तो हमने कहा चलो, तो पता नहीं मौका मिले ना मिले।
0: नहीं नहीं, मौका जरूर मिलेगा, मौका कैसे नहीं मिलेगा। तो आज हम अपने दर्द कुमार जी से कोई दर्द सुनेंगे या कुछ रोमांटिक सुनेंगे?
1: दर्द ये है, रोमांटिक बहुत है, मगर चलो एक गद्य फूल खिले का है।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वही तो नहीं, यहाँ मैं अजनबी हूँ।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, क्या गीत है भाई, हमारी पसंद के गीत है ये। तेरे ऊंचे महल में मही नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकार। क्या बात है, तो शुरू करते हैं।
1: कभी पहले

शहर ये कहाँ दिन रात मेरे बहुत रुसवा हुए हैं, यहाँ जज्बात मेरे नई तहजीब है, ये नया है ये जमाना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना, मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना मेरी गुस्साखियों को, खुदा रा माफ करना, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें,

0: मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है ये वहीं पे वो खिलेगा। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा सिकारा, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ।
1: धन्यवाद।
2: क्या बात है भाई, इसी अंदाज में एकदम हमको लगा कि जब जब फूल खिले देख रहे हैं, सामने शशि कपूर जी हैं और आवाज़ बैकग्राउंड से आ रही है, क्या बात है। और धर्मेंद्र मोहन जी ने लिखा है कि सर जी दर्द कुमार रंजो गम के गायक हैं, क्या बात है। देखिए आपको उपाधि भी मिल गई, मतलब आप
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
2: आपके गले से दर्द बहुत अच्छा निकलता है।
1: थैंक यू मेरे भाई,
2: क्या बात है। अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम और चरण स्पर्श आपको।
1: थैंक यू।

0: नमस्कार
1: जी प्रणाम जी। हाँ तो जब जब फूल खिलेगा ये प्यारा सा गीत हमने सुना, गजलें हमारी, गीत आपके, और कार्यक्रम की आधारशिला और कार्यक्रम की नींव रख दी गई हमारे दर्द कुमार और सुरेश कुमार जी के द्वारा। और अब गीत हो चुका है, अब चलिए फिर आप चलते हैं, ले चलते हैं आपको एक गज़ल की ओर, और गज़ल से फिर मुड़ेंगे गीतों की ओर। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार, कर रहे हैं आप सबकी प्रतीक्षा। जी हाँ, अपने अपने लिरिक्स निकाल लीजिए भाई, अपनी जो आपकी कथा है, जो रचना में ढाली गई है, उसको आप कहीं सिंचित कर लें, और इस प्यारी सी गज़ल के बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। सुनते रहिए और रेडियो गाना 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते। क्या बात है, कहीं ना कहीं मिलन के बाद विछोह का भी अपना एक अलग सा सुख है, एक अलग सा मजा है। और जी हाँ, इसी के साथ मेरे पास कोई फोन पर आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: ओहो, हाँ जी सर नमस्कार। ये केवल एक व्यक्ति बोलते हैं और हम पहचान जाते हैं आवाज से कि हम ये दुनिया के सबसे गहरे सागर बोल रहे हैं।
1: जी नहीं, नहीं सर, आप पहचानने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी है सर।
0: नहीं नहीं, मतलब आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि हम मजबूर हो जाते हैं पहचानने के लिए। वो कोई भी आपको सुन लेगा तो पहचान लेगा।
1: नहीं नहीं सर, बिल्कुल।
0: और कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं?
0: आपका आशीर्वाद।
1: चलिए सर, आज हम आपको एक गाना सुनाने वाले हैं।
0: जी,
1: उदित नारायण जी का गाया हुआ।
0: हाँ क्या बात है, तो हम रियल उदित नारायण को सुन लेंगे।
1: अरे सर, हम कोशिश करेंगे।
0: नहीं, कोशिश आपकी हमेशा कामयाब होती है।
1: जी जी सर, स्टार्ट कर रहे हैं सर।
0: जी जी, निसंदेह शुरू करें।
1: ओ क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। ओ हो, छुप छुप के रोया करते थे। ओ क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के,

ओ तुमको ही मांगा करते थे, ओ माना जुदाई का मौसम बुरा था,

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, आपने उदित नारायण जी को ही नहीं, आपने तो राधा पौडवाल को भी कॉपी कर दिया। हाँ, ये जहाँ तक मुझको याद आ रहा है लाल दुपट्टा मलमल का ना
0: शायद।
1: हाँ हाँ, उसी का गीत है ये। और अनुराधा पौडवाल की आवाज सविता जी के मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की आवाज बहुत अच्छी है।
1: हाँ, मतलब वो जो एकदम अनुराधा पौडवाल जी बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं लाती थी, सीधा सीधा। लेकिन जैसे आरती वगैरह देखिए आप, तो हमको लगता है कि अनुराधा पौडवाल जी से बढ़िया आरती का स्वर मुझे, मतलब जहाँ तक मेरी अपनी बात है, वो नहीं लगता है। तो उदित नारायण जी के अलावा भी हम किसी को सुन सकते हैं आज?
0: उदित नारायण के अलावा दरअसल हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना सर,
1: कि
0: हमें लाइनें याद नहीं रहती।
1: क्या बात, मतलब इसको आपने लिरिक्स निकाली होगी तो गाया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। लेकिन
0: फिर भी कोशिश करेंगे कि एक गाना आपको सुना दें।
1: जी
0: जी

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। मुझे लगता है कि ये गीत किशोर कुमार की आवाज में है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और धर्मेंद्र जी लिखते हैं कि आप चाहे जो गा दें वो बेस्ट हो जाता है। सेठक ने लिखा है भाई बहुत अच्छा गाया आपने और बहुत तारीफ की आपने आपकी।
0: भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का
1: जी। मतलब और आप भी चैट बॉक्स में आकर भाई हम तो ये चाहेंगे कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। कल आप आइए तो फिर हम आप देखते हैं आपके सेल फोन में क्या समस्या है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो कल आपकी रहेगी प्रतीक्षा ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर आएंगे
1: जी। अच्छा प्रणाम और धन्यवाद आपको।
0: प्रणाम प्रणाम सर
1: जी। हाँ भाई हमारे पास धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास। उन्होंने लिखता है कि सर जी कभी दर्द कुमार जी मिले तो उनसे कहिएगा कि हम उनसे गाना सुनना चाहते हैं। अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। लेकिन देखिए एक बार फिर कोई कल मेरे पास जुट के देखते हैं कौन मैसा। हेलो
2: हेलो सर नमस्ते।
1: जी नमस्कार
2: सर, मैं अर्चना।
1: हाँ अर्चना जी कैसी हैं आप?
2: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
1: बहारे गजल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत और वंदन है।
2: थैंक यू सर।
1: क्या बात है। तो बहुत प्यारी सी आवाज में हम आपसे क्या सुनने वाले हैं आज?
2: एक गजल है, रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात।
1: हाँ क्या बात है भाई, बहारे गजल में आज गजल सुन रहे हैं। क्या बात है, रस्मे वफा निभाना
2: गैरत की बात।
1: क्या बात है, मतलब क्या। और ये आवाज किसकी है?
2: रस्में
1: वफा निभाना तो गैरत की बात है। जी तो इसी को सुनते हैं आपसे।
2: जी

0: क्या
1: बात है भाई अर्चना जी, दिल छू लिया आपने।
0: थैंक यू सो मच
1: वास्तव में
0: सर।
1: बहुत प्यारी गजल है ये, और जहाँ तक मुझको याद आ रहा है किसी मुशायरे में मैंने सुना है ये नुजहत अंजुम की लिखी हुई गजल है
0: हाँ जी, नुजहत
1: ना।
0: अंजुम
1: मेरे दिमाग में नाम आ रहा था कि वो है कौन, और एकदम आपने कापी कर दिया उसको, एकदम कापी पेश लगता है
0: जी।
1: कि
0: थैंक
1: कर
0: यू सो
1: गया।
0: मच सर।
1: क्या बात है, बहुत धन्यवाद। तो आपके साथ क्या वो
0: थैंक
1: भी है
0: यू
1: जिनको आंखों में लगा लिया जाता है?
0: सर। वो फिलहाल आज अपने घर चली गई
1: जी
0: है।
1: कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा है। और हम चाहेंगे कि आप अगर गोंडा में हैं तो कल प्रशांत जी भी आ रहे हैं, उनकी बेटी भी आ रही है, तो आप भी आ जाइए और ओपन माइक का हिस्सा बन जाइए,
0: जी बिल्कुल
1: तो प्रतीक्षा रहेगी आपकी।
0: जी। थैंक
1: उम्मीद है
0: यू
1: कि
0: सो
1: आप
0: मच
1: हमको
0: सर।
1: निराश नहीं करेंगी। धर्मेंद्र मोहन ने लिखा बहुत खूब अर्चना जी, और सविता जी ने लिख दिया वाह क्या बात है।
0: जरूर आएंगे सर कल। जी
1: चलिए, ईश्वर ने चाहा तो मुलाकात होती है।
0: शुभरात्रि सर।
1: जी शुभरात्रि, प्रणाम जी। अब देखते हैं कौन हमारे साथ फिर। और जी हाँ भाई, क्या बात है भाई, अर्चना जी की आवाज की और जो गीत उन्होंने चुना वो गीत काबिले तारीफ है भाई। लवली सिंह जी भी हैं गोंडा से, और उन्होंने लिखा है कि भाई सविता शास्त्री जी आपकी आवाज़ सुने हुए बहुत दिन हो गए। जी ये तो बात है, और धर्मेंद्र मोहन जी की भी आवाज़ को सुने हुए काबनी नहीं, हमने बुधवार को सुना है, याद आ गया मुझको। और अब देखते हैं भाई कि इस दर्द कुमार से फरमाइश की जा रही है कि अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, और देखते हैं कि ये पुकार शायद सुन ली गई है। हेलो,
2: हाँ नमस्कार भैया।
1: अरे नमस्कार भाई। अरे दर्द कुमार जी, एक आपके लिए पैगाम आया है कि
2: हाँ
1: अगर दर्द कुमार जी आए तो बता दीजिएगा कि अपना है तू बेगाना नहीं।
2: अच्छा, अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने
1: क्या
2: तुझे पहचाना नहीं,
1: बात है, क्या बात है।
2: अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, ये सच है अफसाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, आखे जाने दिल जानता है, रंग लहू का लहू पहचानता है, रंग लहू का लहू पहचानता है, ये पर्दा उठ जाए शायद याद आ जाए, रुक जा जरा अभी जाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, जब देखूं तुझको लगता है ऐसे तू मेरे दिल का कोई टुकड़ा है, जैसे मेरे दिल का कोई टुकड़ा है, जैसे बातें हैं बेगानी नजरें हैं अनजानी, चेहरा मगर अनजाना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं, अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, बस खत्म होती है ये कहानी, दे चला हूँ तुझे अपनी शान, मैं दे चला हूँ तुझे अपनी शान, दिल को ना तड़पाना, मुझको भूल न जाना, लेकिन लेकिन मुझे याद आना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं, अपना हूँ मैं बेगाना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं, ये सच है अफसाना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं।
3: धन्यवाद सर।
1: अरे क्या बात है भाई, इसे कहते हैं महान लोग। धर्मेंद्र मोहन जी ने आपसे प्रार्थना की और आपने तुरंत ही उनकी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया और बिना एक भी शब्द का हेर फेर के इतने लंबे गीत को इतने सुरीले अंदाज में गाया कि वास्तव में लगा कि क्या बात है, कहीं कोई टूटा हुआ सितारा इस गीत को गा रहा है। बहुत
3: भाई
1: धर्मेंद्र मोहन जी भी आपके आपको धन्यवाद देते हैं और उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात आपने रख ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और वो जानते थे को खुश रखे
1: और हाँ। वो बात जानते थे धर्मेंद्र मोहन जी कि इस गीत को शायद आप ही निभा पाएंगे।
3: ऐसे धर्मेंद्र मोहन भाई भगवान आपको खुश रखे, आप लोगों जी की दुआएं हैं कि जो थोड़ा बहुत याद आ जाता है।
1: अरे नहीं क्या गाया है, मतलब बहुत अच्छा।
3: थैंक यू।
1: अच्छा चल स्पर्श प्रणाम। या भाई अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि कुछ वक्त हमारे पास और है, हम चाहते हैं कि ये वक्त आपके साथ कट जाए भाई, और चाहे जो हमको चैट बॉक्स में दिखाई पड़ रहे हैं वो लोग, चाहे वो सविता जी हों चाहे धर्मेंद्र मोहन जी हो, भाई कुछ मिनट बाकी हैं तो अगर आप चाहें तो इस पल का सदुपयोग कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर नहीं तो फिर चलते चलते आपको एक प्यारी सी गज़ल हम सुनाएंगे। तो फिलहाल आपकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, अगर दूरभाष क्रमांक आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर जान लीजिए 6393316429 6399 6493 6429 यह आपका दूरभाष क्रमांक है भाई। और अभी हमने देखा कि इस पर जब फोन आ रहा था वो गीत गा रहे थे सुरेश जी, तो किसी का फोन भी आ रहा था, तो अब भाई जो उनका फ़ोन आ रहा था वो अब हमको कॉल कर सकते हैं, और इतना समय बचा हुआ है हमारे पास कि हम एक गीत सुन सकते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी हाँ जुड़ चुके हैं।
4: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
1: हेलो
5: हेलो हेलो
1: हेलो
5: जी नमस्कार, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ सविता।
1: अरे चल स्पर्श आपको।
5: खुश रहिए खुश रहिए।
1: कैसी हैं आप?
5: ठीक है अच्छे हैं, आप बताइए।
1: जी जी आज अधूरी हैं।
5: नहीं आज ये मीटिंग में गए हैं, लौट रहे हैं, रास्ते में हैं अभी।
1: हाँ, तुमने वही कहा कि फिलहाल अधूरी है। कुछ देर के बाद
5: पूरी हो जाएगी, बुधवार को पूरी हो जाएगी फिर।
1: हाँ नहीं, मतलब इस समय आप अपने आप को भी अधूरा महसूस कर रही होंगी, वो नहीं है, लौट रहे हैं तो?
5: नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, हमेशा लगता है मेरे हृदय के पास है वो।
1: क्या बात है, ये होती है भारतीय नारी, और बिल्कुल इसी जवाब की प्रतीक्षा थी हमको कि दिले तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुकाई मुलाकात कर ली।
5: जो लोग थोड़ी देर पहले बात हुई है उनसे फोन में,
1: हाँ, जो हृदय में बसते हैं उनकी उससे दूरी जान नहीं पड़ती है। क्या बात है, यह आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और आपसे लोगों को सीखना चाहिए। तो फिलहाल हम क्या सुनने वाले हैं आज आपसे?
5: आज मैं कोशिश कर रही हूँ ये लगाना, तेरे बिना जिंदगी से सिकुआ नहीं।
1: अरे वाह क्या बात है,
5: वो सुनाना चाहती हूँ।
1: जी जी,
5: तो शुरू करें?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: धन्यवाद।
1: क्या बात है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और लेकिन क्या अगली लाइन क्या खूब कही, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। क्या बात है, एक दो पंक्तियों में कितनी गहरी बात छुपी हुई है। और आप एकदम
0: अपने अपने हृदय के निचोड़ है दो पंक्तियों में।
1: क्या, हाँ, हृदय का निचोड़। भावनाओं को अगर हम एहसास का निचोड़ कहें तो वास्तव में बिल्कुल सही कहा आपने, ये भावनाओं का निचोड़ ही है भाई। ऑल इज वेल इफ फीन्स वेल कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। आपने कार्यक्रम में आकर चांद चांद लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चरण स्पर्श आपको। जी हाँ भाई, हमारे पास मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, उन्होंने उनको बहुत पसंद आया भाई। और धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं कि भाई लगता है मुशायरों का शौक आपको भी है भाई। जो साहित्य से जुड़ा हुआ इंसान है उसे बिल्कुल शौक रहेगा ही। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 1 बजे आपसे मिलेंगे आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। अगर आप भी हैं गोंडा में तो आइए हमारे उस शो का एक हिस्सा बनिए। फिलहाल चाहिए आपसे अनुमति, सुनते रहिए और रेडियो का नस्ल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

प्यारे श्रोतागण, 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरी, आपका पसंदीदा शो। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट लेट नाइट आरजे। रात का ये वक्त है जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा उतर आता है, जब लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब कुछ कहानियां जागती है, कुछ अनकहीं दास्तानें और कुछ अधूरी रूहें। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो पुरानी यादों की धूल से निकलकर हमारे सामने आई है। ये कहानी है चंदन नगर की एक रहस्यमयी हवेली नूर महल की। इस कहानी की नायिका है मीरा। मीरा अपने परिवार के साथ चंदन नगर की एक सदियों पुरानी हवेली में रहती है। ये हवेली इतनी पुरानी है कि उसकी दीवारों पर वक्त की परतें जमी हुई है। जगह जगह से प्लास्टर झड़ चुका है और लकड़ी के पुराने दरवाजे खोलने पर एक धीमी सी आवाज आती है, चर चर। ये हवेली उनके दादा परदादा के समय की है। कहा जाता है कभी ये हवेली बहुत रौनकदार हुआ करती थी। यहाँ बड़े बड़े दिए जलते थे, आंगों में मेहमानों की चहल पहल होती थी और शाम होते ही हवेली रोशनी से जगमगा उठती थी। लेकिन वक्त बदलता गया और हवेली धीरे धीरे एक अजीब से सन्नाटे में डूबती चली गई। मीरा अक्सर कहती थी, इस हवेली की दीवारों में एक अजीब सा एहसास बसता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा हो। कई बार देर रात जब हवेली के लंबे गलियारों में हवा चलती थी तो मीरा को ऐसा लगता था जैसे धीरे धीरे कोई कदम रखकर चल रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। शुरू शुरू में तो मीरा ने इसको अपना वहम समझा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया। एक रात की बात है, मीरा की सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस तेज चलने लगी और तुरंत उन्हें शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल के तीसरे फ्लोर के एक वार्ड में रखा। उस रात मीरा ने फैसला किया कि वो अपनी सास के साथ अस्पताल में ही रुकेगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अस्पताल के लंबे गलियारों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। वार्ड में ज्यादातर मरीज सो चुके थे। मीरा अपनी सास के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। समय काटने के लिए उसने पास रखी पुरानी फाइलों को पलटना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक बहुत पुरानी फाइल पर पड़ी। फाइल के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, नूर महल, चंदन नगर। मीरा एकदम चौंक गई, क्योंकि यही तो उसकी हवेली का नाम था। उसने धीरे से फाइल खोली। अंदर एक मरीज का रिकॉर्ड, उसमें लिखा था, मरीज को नूर महल हवेली से लाया गया। फाइल के नोट्स में एक अजीब बात लिखी थी, उस आदमी को जब अस्पताल लाया गया था तो वो बार बार एक बात दोहरा रहा था, लाल दरवाजा मत खोलना, जो कुछ भी हो जाए लाल दरवाजा मत खोलना। डॉक्टरों ने लिखा था कि वो मरीज बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो अचानक गायब हो गया। अस्पताल की रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में लापता। मीरा की उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगी। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी और सोचा, शायद ये सब कोई पुरानी घटना होगी और अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तभी अचानक ऊपर वाली फ्लोर से एक जोरदार आवाज आई,
धार धार धार, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। मीरा चौंक कर खड़ी हो गई। आवाज लगातार आ रही थी। अब उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज भी शामिल थी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर अंधेरे में उसे एक लाल रंग का पुराना दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा बेहद अजीब था। उस पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें लटक रही थी और कई भारी ताले लगे हुए थे। लेकिन तभी मीरा की सांस जैसे रुक गई। वो जंजीरें अपने आप हिल रही थी और पहले धीरे धीरे और फिर अचानक बहुत तेजी से, जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। धर धर धर, दरवाजा फिर जोर से हिला। मीरा का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई परछाई हिल रही है, जैसे कोई कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दरवाजे के पीछे से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मीरा का शरीर सुन्न हो गया। वो डर के मारे सीढ़ियों से नीचे भागी। नीचे अस्पताल के बरामदे में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने मीरा की घबराहट देखी। बिना कुछ पूछे उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा, फिर उसकी छोटी उंगली को हल्का सा दबाया और फिर बहुत धीमी आवाज में कुछ दुआ पढ़ी। जैसे ही उन्होंने दुआ पूरी की, मीरा के अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी धड़कन सामान्य होने लगी। उसे अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन असली रहस्य तो अगले दिन सामने आया। अगली सुबह मीरा ने अस्पताल की एक नर्स से उस लाल दरवाजे के बारे में पूछा। नर्स हैरान होकर बोली, कौन सा लाल दरवाजा? मीरा ने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ इशारा किया। नर्स कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैडम उस फ्लोर पर तो सालों से कोई जाता ही नहीं। मीरा ने कहा, लेकिन वहाँ तो एक लाल दरवाजा था, उस पे जंजीरें थी। नर्स की आंखों में अचानक डर उतर आया। वो धीरे से बोली, मैडम वहाँ कोई लाल दरवाजा है ही नहीं। उस पल मीरा की रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई कि जो कुछ उसने पिछली रात देखा था, अगर वो सच नहीं था तो फिर क्या था? वक्त की रेत अक्सर उन निशानों को मिटा देती है जिन्हें हम हकीकत समझते हैं। 89.6 FM के श्रोतागण, मैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त लेट नाइट आरजे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे। दोस्तों, अस्पताल की उस अजीब घटना के बाद मीरा कई दिनों तक बेचैन रही। उनके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा, अगर उस फ्लोर पर कोई लाल दरवाजा था ही नहीं फिर उसने क्या देखा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ दिनों बाद मीरा अपने सास को अस्पताल से घर ले आई। वो लौट आई अपनी उस पुरानी हवेली में, नूर महल। एक दिन रात का समय था, हवेली के लंबे बरामदों में हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। पुरानी खिड़कियाँ कभी कभी अपने आप हिल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे यह हवेली भी अपनी कोई पुरानी कहानी छुपा कर बैठी हो। नूर महल के ठीक सामने एक खाली प्लॉट था। मीरा को जानवरों से बहुत प्यार था। अक्सर गली के कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे प्लॉट पर आकर बैठ जाया करते थे। मीरा को उस पर तरस आता, इसलिए उन्होंने मिस्त्री बुलाकर उस प्लॉट के कोने में एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। एक साधारण सा कमरा, चार दीवारी, एक छोटा

पास हो जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। मीरा की नींद खुल गई। उसने खिड़की से झांका। खाली प्लॉट में हल्की चांदनी पड़ रही थी, लेकिन कुत्ते के बच्चे उस कमरे के दरवाजे के पास सिमट कर खड़े थे। वे अंदर जाने के बजाय कमरे से दूर हटने की कोशिश कर रहे थे। मीरा को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने टॉर्च उठाई और बाहर गई। देखा, कुत्ते के बच्चे बिल्कुल चुप हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उस छोटे कमरे की तरफ टिकी हुई थी। मीरा धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा अंदर से ठंडी होकर बाहर आ रही थी। मीरा ने टॉर्च चलाकर कमरे के अंदर रोशनी डाली और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। कमरे के अंदर जमीन से करीब 2 फीट ऊपर एक काली परछाई तैर रही थी। वो परछाई स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई धुएं का गुबार हवा में तैर रहा हो। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक अस्पताल की लाल दरवाजे वाली घटना याद आ गई। कुछ पल वो खड़ी रही, फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कमरे के अंदर सन्नाटा था। फिर वो परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। धीरे धीरे उसका आकार इंसान जैसा होने लगा और कुछ ही पलों में वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, मैं बस यहाँ आराम कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मीरा कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। मीरा ने चारों तरफ देखा। कमरा पूरी तरह से बंद था। ना कोई खिड़की, ना कोई पिछला दरवाजा, ना ही वहां से निकलने का कोई और रास्ता था। मीरा का दिमाग चकरा गया। वो तुरंत हवेली के अंदर लौट आई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन मीरा ने उस प्लॉट को बहुत ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर कमरे की पिछली दीवार पे पड़ी। वहां की मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी, जैसे वहां कुछ दबा हुआ हो। मीरा ने एक बुजुर्ग पड़ोसी से उस जगह के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटी, ये खाली प्लॉट पहले खाली नहीं था। मीरा हैरान होके सुनने लगी। बुजुर्ग बोले, कई साल पहले ये जगह भी नूर हवेली का हिस्सा थी। यहाँ हवेली का पुराना तहखाना हुआ था। मीरा की सांस रुक गई। बुजुर्ग ने आगे बताया, कहते हैं हवेली में एक लाल दरवाजा था, जिसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। ये सुनके मीरा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अस्पताल की फाइल में भी यही बात लिखी थी, लाल दरवाजा मत खोलना। और तभी मीरा को ऐसा लगा कि जैसे नूर महल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस जगह उसने कुत्तों का कमरा बनाया था, शायद वहीं नूर महल का छिपा हुआ राज था। और शायद वो राज अब धीरे धीरे जाग रहा था। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: कुछ समय बाद दोस्तों, मीरा ने फैसला किया कि अब नूर महल हवेली की मरम्मत कराई जानी चाहिए। हवेली बहुत पुरानी हो चुकी थी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी थी और कई हिस्से इतने जर्जर हो गए थे कि कभी भी गिर सकते थे। मीरा ने मिस्त्रियों को बुलाया, मरम्मत का काम शुरू किया। हवेली की पुरानी दीवारें जब तोड़ी जाने लगी तो कई जगह से पुराने पत्थर, लकड़ी के टुकड़े और कुछ बहुत पुरानी चीजें निकली। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कई पीढ़ियों से दबे हुए हैं। एक दिन मिस्त्री हवेली के पिछले हिस्से की एक मोटी दीवार तोड़ रहा था। ये वही हिस्सा था जो उस खाली प्लॉट की तरफ पड़ता था जहाँ मीरा ने कुत्तों के लिए एक छोटा कमरा बनवाया था। जैसे ही दीवार का बड़ा हिस्सा टूटा, अचानक अंदर से मिट्टी और ईंटों के साथ एक पुरानी पोटली नीचे गिर पड़ी। मिस्त्री भी चौंक गए। मीरा ने बढ़कर वो पोटली उठाई। वो बहुत पुरानी थी, कपड़ा बिल्कुल सड़ चुका था और उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। मीरा का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया था ये जगह पहले हवेली का तहखाना हुआ करता था। मीरा ने धीरे धीरे वो पोटली खोली। अंदर से निकला सोने की एक बेहद पुरानी अंगूठी। अंगूठी बहुत भारी थी, उस पर बेहद बारीक नक्काशी थी और बीच में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो अंगूठी किसी रानी या किसी खास शख्स की रही हो। जैसे ही मीरा ने अंगूठी हाथ में ली, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और अचानक उसके मन में एक अजीब सी तस्वीर उभरने लगी। जैसे इस हवेली की पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैर रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे वे देख रही हो कई साल पहले जब नूर महल अपनी पूरी शान पे था, लेकिन उसी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना भी था। कहते हैं उस तहखाने में एक लाल दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा कैद था जिससे हवेली के लोग भी डरते थे। कहानी के अनुसार हवेली के पुराने मालिक ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, उस पर भारी जंजीरें और ताले लगा दिए और सख्त हुक्म दिया गया, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। लेकिन समय बीतने के साथ लोग उस राज को भूल गए और फिर एक दिन हवेली का एक नौकर जिज्ञासा में आकर उस लाल दरवाजे को खोल बैठा। उसके बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती, किसी के रोने की आवाज आती, कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते और धीरे धीरे नूर महल की रौनक डर में बदलने लगी। कहते हैं उस समय एक आदमी अचानक बीमार पड़ गया और वो शहर के अस्पताल में ले जाया गया। वो बार बार यही बात दोहरा रहा था, लाल दरवाजा मत खोलना। लेकिन कुछ घंटों के बाद वो गायब हो गया और उसके बाद से नूर महल हवेली धीरे धीरे वीरान होती चली गई। मीरा के हाथ में पकड़ी वो अंगूठी शायद उसी समय की थी, शायद किसी ऐसे इंसान की जो उस तहखाने के रहस्य से जुड़ा था। मीरा कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, सोचती रही, फिर उसने फैसला किया कि अगर इस हवेली में कोई अधूरी आत्माएं भटक रही हैं, तो उन्हें शांति की जरूरत है। मीरा ने उस अंगूठी को बेचने का विचार छोड़ दिया और हवेली में एक बड़ा शांति पाठ और भंडारा करवाया। कुछ दिनों बाद हवेली के आंगन में पूजा की तैयारी शुरू हुई। पंडित बुलाए गए, मंत्रों के आवाज पूरे नूर महल में गूंजने लगे। घंटियों की ध्वनि और हवन की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। मीरा ने वो अंगूठी हवन कुंड के पास रखी। पूजा घंटों तक चली और जैसे जैसे मंत्र गूंजते रहे, हवेली का वातावरण बदलने लगा। जो हवेली कभी डर और सन्नाटे से भरी रहती थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उस रात कई वर्षों में पहली बार नूर महल की हवेली में एक अजीब सी सुकून भरी शांति थी। ना कोई अजीब आहट, ना कोई परछाई, ना कोई डर। मीरा कहती है कि उसके बाद से हवेली में कभी कोई भयानक घटना नहीं हुई। हाँ, कभी कभी देर रात उन्हें अपने कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज में अब डर नहीं होता, जैसे कोई भटकती आत्मा मीरा को धन्यवाद कह रही हो, क्योंकि शायद मीरा की समझदारी और दया ने नूर महल की भटकती रूहों को आखिरकार शांति दे दी। जल्दी मिलेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: तो दोस्तों, हर रूह का अपना एक घर होता है और हर घर की अपनी एक रूह। ये थी नूर महल की रहस्यमयी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक पुरानी हवेली का सन्नाटा था, एक बंद लाल दरवाजे का रहस्य था, एक गायब हो चुके मरीज की चेतावनी थी और उन रूहों की अधूरी पुकार थी जो बरसों से शांति की तलाश में भटक रही थी। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत पतला सा पर्दा होता है, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन कुछ जगह, कुछ घर और खासकर कुछ पुरानी इमारतें उस पर्दे के बहुत करीब होती हैं। नूर महल भी शायद ऐसी ही एक जगह थी जहां अतीत की परछाइयां आज भी हवा में तैरती थी, जहां पुराने तहखाने का राज सालों तक मिट्टी में दबा था और जहां एक छोटी सी सोने की अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी बल्कि एक संकेत थी, एक याद कि हर कहानी का अंत डर से नहीं होता, कभी कभी एक इंसान की समझदारी, दया और सही फैसला उन आत्माओं को सुकून दे सकता है जो सालों से भटक रही हों, जैसा कि मीरा ने किया। नूर महल की उस पुरानी हवेली के पास से अब भी जब कोई गुजरता है तो हवा के साथ एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसमें जैसे कोई कह रहा हो, अब हम शांत हैं। तो दोस्तों, रात गहरी होती जा रही है, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे अगले पहर की ओर बढ़ रही है। अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइटें धीमी कर लीजिए और चैन की नींद सो जाइए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे हैं 89.6 FM। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ और एक नए रहस्य के साथ और शायद किसी नई परछाई के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब खैर और डर से दोस्ती बनाए रखिए।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
3: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
4: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
3: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज के सफर में, हम इसी खूबसूरत सफर को लेकर के साथ में उनकी कई चीजों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफर होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बमक बम बमक बम बमक बम बमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोक गीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में, जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थी। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी। ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफी मजेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार एसडी वर्मन से जिद की, गाने की शुरुआत किसी वाग यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। ये सॉन्ग, ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी, तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबान गाने पर थिरकती थी, और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो जाना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं, जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी, हर अदा में जादू था, हर नजर में प्यार था, मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्योहार था, दर्द छुपा कर भी उन्होंने हंसना सीखा, हर किरदार में जीवन का रंग सजाया, वक्त ने बहुत कुछ छीना फिर भी वो मुस्कुराती रही, अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई, हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई, कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई, पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफर को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थीं जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थीं, तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थीं। जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थीं, तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।